0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आज ज्ञान से रूबरू इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है कुछ सुनहरे पल, जिसे ज्ञान के पिंजरों से छुड़ा कर लाई हूँ। तो क्यों ना आज ज्ञान की कुछ ऐसी बातें की जाए जिसकी परख शायद ही किसे होती है, किसी को नहीं होती है। तो आज का हमारा विषय है बुद्धि की परख शक्ति को बढ़ाए। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। ऐसे तो भारत देश एक महान तीर्थ स्थान भी कहते हैं है, क्योंकि भारत में ही देवी देवताओं का स्थान रहा है शुरू से, और आज अंत तक देवी देवताओं की पूजा इस भारत की धरा पे ही होती आ रही है, सदियों से होती आ रही। इस परंपरा को आज भी सभी भक्तगण बहुत श्रद्धा से निभा रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में देवियों का जो स्थान होता है, वो देवियों को अष्टभुजाएं दिखाई गई है। अष्टभुजाएं अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अष्ट शक्तियों की जरूरत पड़ती है। वे शक्तियां है परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहन शक्ति और संभालने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। इन सभी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति परखने की है। परखने की शक्ति जो है वो आती है पवित्रता की धारणा से। जितना मनसा वाचा कर्मणा, अगर आप और स्वप्न में भी अगर आप पवित्रता को धारण करते हैं और उसकी धारणा को अपनाते हैं, तो उतना सहज ही परखने की शक्ति आती जाती है। बुद्धि की स्वच्छता ही दिव्यता को बढ़ाता है और व्यर्थ विचार, संशय या संदेह की भावना बुद्धि को मलिन बना देती है। जितना पारदर्शी बनेंगे उतना बुद्धि का दिव्यकरण होगा। इससे किसी भी समय कैसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को परख कर निर्णय दे सकते हैं, धोखे से बच सकते हैं। अगर बार बार धोखा मिल रहा है, दुख की महसूसता हो रही है, तो बुद्धि को स्वच्छ करें। जितना बुद्धि शुद्ध होगी उतना कदम कदम पर सफलता को प्राप्त करेंगे। एक होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि परख शक्ति बढ़ाने के कुछ उपाय भी होते हैं, जैसे मनसा की पवित्रता। मन में अगर पवित्र भावना है, मन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थों के प्रति नकारात्मक भावना है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना है, तो मन को पवित्र नहीं कहा जाता है। मन में सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का विचार हो, समस्याएं कहीं से भी किसी भी रूप में आए, चाहे व्यक्ति निमित्त बने या प्राकृतिक आपदाएं, कैसी भी परिस्थिति में मन में अशुभ भाव उत्पन्न ना हो, तभी मन पवित्र हो सकता है। मन में शुद्ध विचारों की जो तरंगे प्रवाहित होती है, उनसे वातावरण भी और आत्माएं भी सकारात्मक हो जाती है। इसलिए विचारों की शक्ति को समझना और प्रयोग में लाना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है। जो कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य होंगे उनके मन में सबके प्रति सुखदायी शुभ भावना व शुभ कामना से भी के ही विचार चलते रहेंगे। तो अपने को यहाँ पर चेक करें कि मेरे मन में किसी भी प्रकार के विचार आते हैं। विचार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। विचार जो है एक सूक्ष्म क्रिया है। इसलिए कहा जाता है कि विचार भावना और दृष्टिकोण को कोई व्यक्ति छुपा नहीं सकता। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है बुद्धि की परख, शक्ति को बढ़ाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर लोग बोलने से पहले आज के युग में सोचते कम है, बोलते ज्यादा है, जबकि मनुष्य को चाहिए कि वो कुछ भी बोलने के पहले सोचे जरूर कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वाचा की भी पवित्रता होनी चाहिए। स्लोगन है कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोच समझ कर बोलो। जो मानव अपने मुख की मुख को वो मधुर बनाता है, वह सहज ही सबके दिलों में स्थान बना लेता है। सत्यवादी बनने के लिए अपने शब्दों पर लगाम दें। जो जितना शब्दों पर लगाम रखता है उसके शब्द उतने ही प्रभावशाली होते हैं। कर्म भी हमें करने वक्त ध्यान रखना है कि हमारे कर्म सुकर्म है या विकर्म है, तो कर्मों में भी पवित्रता हो जाएगी। तो हमें अपने कर्मों पर, अर्थात कर्म अर्थात क्या होता है, संबंध, संबंध संपर्क में सादगी शालीनता हो, मान शान की इच्छा और आकांक्षाएं संबंध संपर्क में भिन्नता लाती है। व्यक्तित्व को ऊंचा बनाने के लिए नम्रता निर्माणता के साथ संपर्क में आए तो संतुष्टता जीवन में स्वतः आ जाएगी और सबके माननीय वो प्रशंसनीय बन जाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि लोग स्वप्न में भी कभी कभी कुछ बुरे स्वप्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है स्वप्न में भी पवित्रता हो। स्वप्न की पवित्रता के लिए स्वप्न ही प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक पहचान होती है। जीवन को पारदर्शी बनाने की परख है स्वप्न। सत्व प्रधान, रजु प्रधान और तमो प्रधान, इन तीनों स्टेज में स्वयं को चेक करना है कि किस स्टेज का स्वप्न आता है। कर्मों की ध्वनि ही स्वप्न का रूप लेती है। मनसा वाचा और कर्मणा, किस प्रकार के कर्म करते हैं, चाहे कॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्थिति में, जागृत अथवा सुषुप्त अवस्था में यह स्वप्न सही मालूम पड़ता है। यदि डरावने या बुरे स्वप्न आते हैं तो अवश्य ही दुखदायी कर्म किए हुए हैं, भले ही व्यक्त रूप में न किए होंगे, परंतु विचार ही आधार है कर्म के। दो नेत्रों से हम पूरी दुनिया को नहीं देख सकते, परंतु मोबाइल हाथ में है तो कभी भी किसी भी समय पूरी दुनिया को देख सकते हैं। अच्छाई और बुराई सब चीजें इसमें है। हम जो भी देखते हैं सीधा मन और चित्त को प्रभावित करता है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि दृष्टि के माध्यम से मन और बुद्धि को किस प्रकार का भोजन दे रहे हैं। जैसे खराब भोजन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे ही जो देखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उससे मन और बुद्धि का पोषण होता है और वही स्वप्न संस्कार स्वभाव कर्म व्यवहार द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो यही है हमारे मन वचन कर्मों की जो गहराई है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। चलते हैं, हमारा आज का विषय है बुद्धि की परत शक्ति को बढ़ाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन में इंसान को इंसान के शरीर के लिए उसे भोजन की अति आवश्यकता है। तो भोजन कैसा होना चाहिए? जीवन का मूलभूत आधार है भोजन। अगर भोजन संतुलित न हो तो जीवन भी संतुलित नहीं हो सकता। अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक गर्म प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध जाता है। यदि खाद्य पदार्थ में आसक्ति से है तो उसमें दुख मिलता है। दुखों से बचना चाहते हैं तो क्षण भंगुर जीवा को उसके स्वाद रस के पीछे न जाकर जीवन जीने के लिए उपयुक्त आहार का उपयोग करें। योगी के लिए कहा गया है कि इंद्रियां रसों से मुक्त तभी

आध्यात्मिक लक्ष्य में उत्तीर्ण हो सकेंगे। व्यक्ति को आसक्तियां से मुक्त होना चाहिए। ये जो आसक्तियां हैं, किसी भी प्रकार की आकर्षण ही प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं और तत्परता से अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होना है ताकि समय से पूर्व मंजिल के करीब पहुंच सके। परख शक्ति को बढ़ाने के लिए बुद्धि को अंतर्मुखी बनाए। अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अंतर्मुखी बनकर स्वचिंतन में व्यस्त रहता है वही वामा आकर्षणों से बचा रहता है। बाह्य जो आकर्षण बुद्धि को शक्ति की जो उसकी होती है उसको नष्ट कर देते हैं। कभी कभी बुद्धि में धुंधलापन आ जाता है जिससे राइट रॉन्ग की यथार्थता को समझ नहीं सकते हैं। अगर बुद्धि को आत्मचिंतन परमात्मा के साथ परमात्म चिंतन और अपने श्रेष्ठ भाग्य के चिंतन में व्यस्त करें तो दैनिक जीवन में आने वाली हर रुकावट को सहज ही समाधान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मनसा वाचा और कर्मणा मन वचन कर्म से हमें कैसा बनना है। भोजन के प्रति भी हमारी पवित्रता होनी चाहिए, स्वप्न के प्रति भी पवित्रता, हमारी सोच में भी पवित्रता। तो पवित्रता ही जीवन की एक परख बन जाती है। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो real मायने में assertiveness होगा, क्योंकि assertiveness inner stability। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और stable भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर generate हुआ, चाहे वो suppress कर दिया, लेकिन हम stable नहीं होते हैं तब। यू नो, तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सेपरेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कितना आसान था ये सब कुछ समझना, लेकिन हम सोए हुए थे, हमें पता ही नहीं चला, हमने सारी जिंदगी निकाल दी और जान ही नहीं पाए कि ये छोटे छोटे चीजें ही तो थी जिन्हें बदलना था और जिंदगी बदल जाती। इतनी मुश्किलों से गुजरते रहे थे हम। आज एक बार फिर रिश्तों को नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं और घर से बाहर निकल चुके हैं, अब एक दूसरे परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, वो परिवार जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जहां हम काफी वक्त गुजारते हैं और हम अच्छा भी महसूस करना चाहते हैं। हम सिर्फ अचीव ही नहीं करना चाहते, हम वो हर पल जो वहां होते हैं वो खुश और सुखी होकर गुजारना चाहते हैं। तो क्या है वो गुरु मंत्र, क्या है वो छोटी छोटी बातें जो उन सिचुएशंस में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सुख जिसे हम तलाश रहे हैं अपने कर्म क्षेत्र में वो भी हमें मिल सकता है। हर बार की तरह इस सफर के हम सफर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को याद करें तो बहुत अच्छी आपने बात दी थी, मैं कहूंगी गुरु मंत्र था, कि एक परिवार से निकलकर अगर हम दूसरे परिवार पर जाने की, वहां पर जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर होता है, एक सुबह सुबह का जो प्रेशर होता है, जो हमने कहा था कि हफ्ते भर फिर another week, वो हट जाता है।
1: You look forward another week, you know, just the whole attitude changes to going back to the same place. Yeah.
0: And if I remember, हमने ये भी बात की थी कि अगर मुझे appreciate नहीं किया जाता, क्योंकि अब मैं परिवार में आ गई हूँ, एक नए परिवार में, एक ऐसा परिवार जो मेरा अपना ही choose किया हुआ है, हो सकता है वो लोग जिन्हें मैं अपने रिश्तेदार हैं और जो यहाँ जो है वो अलग हैं, लेकिन उनके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो मेरा रहेगा ही, और उन सिचुएशंस को अब मैं कैसे हैंडल करूंगी। तो एक सिचुएशन तो थी कि अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं किया मेरे बॉस ने, या कहीं कुछ जो मैं चाह रहा था कि मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा या मेरी अचीवमेंट होगी, आगे बढ़ूंगा, वो नहीं हो पाया, उसको भी कैसे हैंडल करें। एक और सिचुएशन जो आम देखी जाती है जब हम काम पर जाते हैं, वो ये कि जेलस फैक्टर, वो मुझसे बहुत चलते हैं, मैं जितना भी अच्छा कर लूं, वो मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरे कॉम्पिटिटर हैं, और हर बार मेरे खिलाफ मेरे बॉस के या लोगों के कान भरते हैं, उनको कैसे हैंडल करूं?
1: हमें समझना पड़ेगा कि जेलसी क्या होती है, ईर्ष्या क्या है, और कौन मेरे से ईर्ष्या करता है। नॉर्मली वी फील के ये जो ईर्ष्या कर रहे हैं कि यू नो इट्स सम काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, क्योंकि आपका मुझसे ईर्ष्या करना अर्थात आपका अपने काम पर कॉन्फिडेंस नहीं होना। यू नो समवेयर दैट मे बी आई कैन डू बेटर देन यू, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स जेलसी। सो इफ मुझे पता चल गया कि यू आर जेलस ऑफ मी, आपको ईर्ष्या है, तो मुझे अब उस पर परेशान होने की पहली बात कोई बात नहीं है। दूसरा, गुस्सा आप पर करना ये तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज्यादा पेन में है, यू नो आप बहुत ज्यादा पेन में है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डर में है, आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। तो अब अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा है या अगर मेरे अंदर वो कंपैशन है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि इफ यू आर जेलस एंड आप जेलसी वश कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं, कुछ लोगों से बोल रहे हैं, तो मुझे आपके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, क्योंकि यू नो नॉर्मली हमें नफरत आने लग जाती
0: है, इरिटेशन, यू डोंट लाइक, आई डोंट वांट टू बी यू नो विद द पर्सन हु इज जेलस,
1: राइट, बट यू विल हैव टू लुक एट दैट पर्सन एज अ वाउंडेड पर्सन, जिसे चोट लगी है, जो अपनी कैपेबिलिटी पर अब ध्यान नहीं देकर सारा ध्यान मेरे कैपेबिलिटी पर देखकर अंदर ही अंदर घुलता जा रहा है। अब आपके एंगल से अगर देखो, जिसको ईर्ष्या हो रही है, तो उसके लिए नुकसान ये हो रहा है कि उसकी जो, लेट्स से माय यू नो योर कैपेसिटी इज हियर एंड आपको लग रहा है कि माय कैपेसिटी इज लिटिल हियर या माय वर्क इज अ लिटिल बेटर, तो आप मेरे वर्क को देखते जा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि आप भी उधर तक पहुंचते जाए या मेरे जैसे करने लग जाए। नॉर्मली जेलसी में क्या होगा कि हम उनके जैसा करने लग जाएंगे कि वो कैसे करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे औरों को यू नो खुश रखते हैं, व्हाटएवर डिफरेंट वेज दैट वी वांट, तो हम इनके जैसा बनने की कोशिश करते रहते हैं। एंड क्योंकि ये नेचुरल है कि हम किसी की तरह बन तो सकते ही नहीं है, लेकिन हम अपने ऊपर ध्यान न देकर अपनी विशेषताएं, अपनी शक्तियों को सारा भूलकर,
0: अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं,
1: अपनी ब्यूटी उसको भूलकर इनके जैसा बनना शुरू कर देते हैं। एंड इनके जैसा तो बन नहीं सकते, लेकिन जो अपना था वो भी खो जाते हैं। एंड इन द प्रोसेस आई एम नीदर हियर नोर आई एम हियर एंड आई एब्सोल्युटली कोलैप्स। तो जेलेसी से जो हम औरों के प्रति वर्णन करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं और अंदर खुद ही खुद खुलते जाते हैं, तो हमारी जितनी कैपेसिटी थी हम उससे भी ज्यादा नीचे आ जाते हैं। तो हमें अगर किसी और के अंदर कोई कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है तो एक तो डरना नहीं, सी दैट इट इज दैट फियर विच ऑटोमेटिकली मेक्स मी यू नो स्टार्ट गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक। फियर सबसे बड़ा इंस्टिगेटर है गलत की तरफ जाने के लिए। लेकिन अगर मेरा फोकस बहुत क्लियर है कि मुझे खुशी चाहिए, वो मेरे जीवन का हिस्सा होगी इररिस्पेक्टिव के इस ऑफिस में कितने भी लोग आ जाएं। अब उस खुशी को मेंटेन करने के लिए अगर मुझे अपने परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना है, तो अब अगर मुझे लग रहा है कि somebody is better than me, maintaining my positivity, go and try and learn if you want to learn. उसके लिए हिम्मत चाहिए, requires lot of courage कि आप जाकर दूसरे से सीखते हैं। अगर वो कर ले तो नथिंग लाइक इट। जेलेसी तभी होती है जब सामने वाले के अंदर कोई ऐसी चीज है जो हमें फील कर रहा है कि हमारे अंदर नहीं है, और मुझे लगता है कि उस चीज के लिए लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, मुझे वो अप्रिसिएशन चाहिए और इसीलिए मुझे उनकी वो वाली चीज चाहिए, और क्योंकि मुझे उनकी वो वाली चीज नहीं मिलती तो मैं उनके बारे में,
0: अच्छा मेरे प्रति कोई जेलस है, मैंने तो गलती नहीं की, इट इज नॉट आई एम नॉट एट फॉल्ट। उनकी जेलसी ने मेरे लिए मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी कि मैं उस माहौल में ही नहीं रह पा रहा बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी।
1: राइट, अब अगर आपने जैसे कहा कि उनकी जेलसी है तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो सबसे पहले तो ये मेंटेन करना पड़ेगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा जिस तरह से चल रहा था वो ठीक था। तो अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे कुछ प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। क्योंकि ज्यादातर आप इमेजिन करिए एक सीन कि ऑफिस में बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, यू नो यू एंटर एंड यू सी पीपल टॉकिंग अबाउट यू, और यू कम टू नो कि यू नो सो एंड सो वाज सेइंग सो एंड सो थिंग अबाउट यू। तो अब हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम एक एक को जाकर अपनी पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एंड समटाइम्स हम भी उसी गेम में चले जाते हैं कि अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए
0: दूसरे को डाउन करेंगे,
1: दूसरे की यू नो बुराई करने की शुरू कर देते हैं। एंड इफ आई स्टार्ट डूइंग दैट, तो मैंने तो अपनी विशेषता को खो दिया। तो अगर आपको फेथ है कि जो आपके बारे में कहा जा रहा है दैट्स नॉट ट्रू, देन डोंट इवन बॉदर, डोंट बॉदर, बिकॉज यू आर स्पेशल, यू आर इम्पोर्टेंट, everybody wants your quality and that's why they're talking about it, don't bother, keep on working on that quality even more. bilkul bhi is cycle mein jana hi nahi chahiye, because hum kabhi bol kar apni baat ko sidh nahi kar sakte, aur jo baat again if it's the truth agar wo right hai to usko sidh karne ki koshish nahi kare. ek chhota sa phase aayega beech mein jahan aapko feel hoga कि आप अकेले पड़ गए
0: हैं। बहुत ये इसी में सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसी में आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसी को निकालना मुश्किल हो जाता है।
1: तो ये फेस तो आएगा, दैट्स ओके, बट सी अगेन क्योंकि आपके पास वो विशेषता है तभी तो सारे उस तरफ चले गए एंड दे आर सो कॉल्ड जेलस ऑफ व्हाट यू हैव। लेकिन इफ यू नो व्हाट यू हैव, मेंटेन इट। तो वो छोटा सा फेज आएगा, लेकिन हमें निश्चय रखना होगा कि ये सिर्फ एक छोटा सा फेज है। अब इस छोटे से फेज में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी स्टेप, ईगो नहीं, अगेन देयर इज अ वेरी थिन लाइन हियर, सेल्फ एस्टीम, ईगो। एक सेल्फ एस्टीम मेंटेन करके रखेंगे उस व्यक्ति की क्या निशानी होगी, सेल्फ एस्टीम हाई है, इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई नहीं है, कि ठीक है जैसा चल रहा है, मुझे जाकर एक एक को प्रूफ नहीं करना है कि पता है मैंने ऐसा नहीं किया था, वो गलत बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, मैंने, आई डोंट नीड टू डू ऑल दैट। और दूसरा, अगर सेल्फ एस्टीम हाई है तो मैं उस व्यक्ति के प्रति जो मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, या उन सारे लोगों के प्रति जो मेरे अगेंस्ट होकर एक दूसरी साइड पर हो गए, उनके प्रति कुछ नेगेटिव नहीं सोचूंगी। दैट विल बी द साइन ऑफ अ सोल विच हैज हाई सेल्फ एस्टीम, क्योंकि उस आत्मा को ये पता है कि ये खुद सब दर्द में है। तो जो खुद ही दर्द में है, जो खुद ही कमजोर है और डरे हुए हैं, उनको क्या डराना, वो ऑलरेडी इतने डरे हुए हैं, उनसे क्या नफरत करना या उनको क्या गुस्सा करना जो ऑलरेडी बाहर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है लेकिन इंटरनली वो बहुत डरे हुए हैं।
0: जिस तरह से आपने कहा कि वो एक फेज आएगा जब मैं अकेला पड़ जाऊंगा और उसके बाद फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ऐसे में जो अपॉर्चुनिटीज मिस हुई कहीं ना कहीं वो पूरे मेरी वर्किंग पे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं लोनलीनेस या एक मैं बार बार नहीं जा रहा अपने आप को प्रूव करने, तो मैं अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज ऐसा फील होता है कि मिस होती है।
1: अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं मिस होंगी लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे, जस्ट क्योंकि आप अपनी इनर स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे। उस समय लगेगा अगेन यू नो ये इल्यूजन सारे क्रिएट होंगे कि ये मेरे हाथ से जा रही है, ये अपॉर्चुनिटी मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इस समय सारे मेरे अगेंस्ट
0: है, मुझे नहीं बुलाया
1: तो ये मुझे नहीं दिया गया काम, ये किसी और को दिया गया। इट्स ओके, मेंटेन दैट पेशेंस वो थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो व्यक्ति ये मेंटेन कर पाएगा उसका नुकसान हो, ऐसा हो नहीं सकता। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा कि अगर आपने पॉजिटिविटी, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल नेगेटिविटी उन लोगों के प्रति, यू नो एक होता है, क्योंकि इसमें जो थिन लाइन आती है, एक है मेंटेनिंग इनर स्टेबिलिटी और दूसरा है विड्रॉ। ये विड्रॉ नहीं है, ये विड्रॉ नहीं है, आप वही हैं, आप सबके साथ ही हैं, आप इंटरनली सबके लिए वही शुभ भावना रख रहे हैं।
0: यू नॉट हेटिंग देम, यू नॉट डिसलाइकिंग देम,
1: दैट्स वेरी
0: इंपॉर्टेंट, दे आर बीइंग बैड टू मी, आई डोंट लाइक देम,
1: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कौन कर पाएगा जिसको ये फेथ होगा कि मैं राइट हूँ, जो मैंने किया वो राइट है, या जो मेरी विशेषता है वो है, इन लोगों को उस विशेषता से प्रॉब्लम हो रही है, मेरी विशेषता में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर डाउट अपने ऊपर जब आने लग जाता है, दैट इज लो सेल्फ एस्टीम। और वो लो सेल्फ एस्टीम किसको होगा, जो खुद को ही नहीं पहचानता और जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि सेल्फ एस्टीम क्रैश होने का कारण, अपने स्वमान क्रैश होने का कारण सिर्फ ये है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं आजकल, मेरा क्या इम्प्रेशन है सबके ऊपर, यू नो वी थ्रो दिस वर्ड इम्प्रेशन क्या है। तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, तो इफ आई एम ओके with that quality, just carry on. And if I'm okay and I come to know कि there is a negative undercurrent, never mind. I feel compassion कि कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा. In fact, मैं indirectly भी उनको वो जो चीज है जो वो शायद सीखना चाहते हैं या चाहते हैं, I can share even if they don't ask. Normally withdraw हम कर लेते हैं, अपनी विशेषता को अपने तक सीमित रखते हैं एंड हम कोशिश करते हैं कि ये चीज मैं किसी को नहीं बताऊंगे। यू नो एक होती है विशेषता, एक होती है कोई स्किल, आपके अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है जो आप औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप औरों को वो चीज सिखा सकते हैं। लेकिन डर क्या होता है कि अगर मैंने इनको सिखा दी
0: तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी।
1: आज सारे ऑफिस में मेरी इम्पोर्टेंस इस स्किल की वजह से है एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर ये जो कंपटीशन आता है। तो हम उस स्किल को अपने तक रखते हैं, जैसे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगी। अगर कोई पूछ भी लेता है तो उसको गोल गोल घुमाकर इनडायरेक्टली कुछ कर देते, उसको अपना पूरा का पूरा जो आपको आता है वो नहीं सिखाते हैं। दिस इज साइन ऑफ इनसिक्योरिटी। अगर हमें अपने पर कॉन्फिडेंस है, हमें जितना आता है पूरा एंड टू एंड उसको पूरा का पूरा बता देना चाहिए। ये फेथ होना चाहिए, दिस इज फेथ ऑन द सेल्फ। ये पूर फेथ होना चाहिए कि किसी और को सिखाने से मेरा कुछ कम नहीं हो जाएगा, उल्टा वो विशेषता और भी बढ़ती जाएगी। अगर कोई और आगे बढ़ेगा, दिस इज व्हेन वी अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। अगर हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक लेवल पर सोचते हैं तो हमारी थिंकिंग क्या होती है कि कोई अगर और आगे बढ़ेगा तो मैं पीछे रह जाऊंगी, बिकॉज वी लुकिंग एट थिंग्स ओनली ऑन दैट लेवल। मटेरियल प्रोग्रेस में भी अगर हमने किसी को आगे बढ़ाया है तो शिव बाबा हमेशा हमें ये बताते, किसी को आगे बढ़ाना मतलब खुद ही आगे बढ़ जाना। एंड ये हमने मतलब हर स्टेप पर इसका अनुभव किया है। तो किसी को आगे बढ़ाना नॉट विद द इंटेंशन कि ताकि हम आगे बढ़ जाएं, नहीं, लेकिन सच में किसी को आगे बढ़ाने का यू नो वो फील आना कि सब लोगों को ये आ जाए, जो मुझे आता है आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर इट विद एवरीबडी, परमात्मा ने दिया है, आई वुड वॉन्ट टू शेयर इट विद एवरीवन। वो आगे बढ़ेंगे, उनके आगे बढ़ने में मेरा आगे बढ़ना अपने आप समाया हुआ है, बिकॉज अगर हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो उससे मुझे क्या मिलेगा, लॉ ऑफ कर्म, सो मेनी ब्लेसिंग्स, सो मेनी गुड विशेस, जिसको कहते हैं दुआओं का खाता, इतना जमा होता है कि वो दुआओं का खाता अगर हम अपनी विशेषता से चलते तो हम इस स्पीड पर चलते, लेकिन अगर जब हमें इतनी सारी दुआएं मिल जाती हैं तो हम इस स्पीड पर नहीं चलते, वी जस्ट
0: एनर्जी एनर्जी एक और मिल जाती है
1: हमें, अपनी एनर्जी नहीं सिर्फ
0: सबकी एनर्जी,
1: सबकी एनर्जी मिलती है, और वो जो इतनी सारी एनर्जी हमें सबकी मिलती है, इट जस्ट pushes us way ahead, even in terms of material progress. And most important is कि आपको वो material progress मिला, लेकिन साथ साथ आपकी internal state बहुत happiness की थी.
0: लेकिन सिस्टर शिवानी, यहाँ एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि हमने किसी दूसरे को सिखा दिया इस intention से कि सबको आना चाहिए, उसमें क्या problem है, उन्होंने उसी का इस्तेमाल करके मेरी position को नीचे कर दिया, और ये बहुत बार देखा गया, यही प्रॉब्लम है. तभी लोग जो हैं वो नहीं सिखाते या अपने पास ही रखना चाहते हैं, कि कहीं ना कहीं वो बाकी सारे तामझाम या जो भी पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, जो मैं चाहे मैं इनर स्टेबिलिटी में भी रहा लेकिन वो आगे पहुंच गया, तब मेरा क्या रिएक्शन?
1: अगर मैंने किसी और को किस इंटेंशन से कुछ सिखाया था, उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हुए ये नहीं सिखाया था, देन आई एम ऑलवेज गोइंग टू लाइक कि हमने उनको सिखाया, क्योंकि मेरी भावना है देने की. वी अंडरस्टूड एट एवरी स्टेप कि आत्मा का नेचुरल संस्कार है देना, लेना नहीं, लेकिन हमने आज उसको चेंज कर दिया कि हमें सारा दिन लेना है, देना कुछ भी नहीं है. तो देने के बाद हमेशा अच्छा लगेगा. अब अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जो आप कह रहे हैं, मे बी इट इज पॉसिबल कि ऐसा हो जाए कि वो व्यक्ति आपसे बहुत आगे चला जाए, बट देन हाउ डज दैट मैटर, विद व्हाट इंटेंशन डिड आई गिव इट, डिड आई नॉट शेयर इट विद दिस इंटेंशन कि आगे बढ़े. एक पेरेंट अपने बच्चे को किस इंटेंशन से सब कुछ सिखाता है, इसी इंटेंशन से सिखाता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे चला जाए. तो अगर मैंने भी उस भावना से सिखाया होगा कि ये भी सीखे, ये भी सीखे, ये भी आगे बढ़ जाए, एक टीचर एक स्टूडेंट को किस भावना से सिखाता है? Never says के आप मेरे को जितना आता है आप उससे कम रहो. नो. एंड फिर वो टीचर को कितनी खुशी होती है, पेरेंट को कितनी खुशी होती है जब वो आगे बढ़ता है बच्चा. तो उसमें कोई उनका नीचे होना नहीं होता है, वो बच्चा हमेशा अपनी सफलता का डेडिकेशन किसको देगा?
0: पेरेंट.
1: उन्हीं को देगा, टीचर को देगा. अब इन दिस केस मे बी यू विल नॉट गेट इट, दैट काइंड ऑफ ग्लोरिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरनल
0: डीप विद इन आई थिंक द पर्सन नोज कि क्या,
1: द पर्सन नोज फ्रॉम वेयर आई हैव गॉट, एंड सूनर और लेटर यू विल स्टिल गेट इट बैक इन टर्म्स ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस. लेकिन जहां तक इनर फीलिंग की बात है वो तो आपको ऑलरेडी मिल गई है,
0: बिकॉज़ व्हेन यू गिव इट गोस थ्रू,
1: इट गोस थ्रू यू. अब अगर उसके बाद आप हर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब यू हैड गिवन इट
0: विद एन इंटेंशन.
1: तो हर कर्म में इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस इंटेंशन से गिरे. अगर आपको डर है कि कहीं आगे निकल जाए, फिर मत दीजिएगा, बिकॉज देयर इज अ चांस कि वो आपसे बहुत अच्छा सीख ले,
0: क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है.
1: बट दैट्स ओके, व्हाई नॉट. अगर मुझे खुशी हो औरों को आगे बढ़ता हुआ देख, एंड दैट विल हैपन व्हेन कि व्हेन आई एम नॉट इन द रेस, जो उनकी स्पीड उनकी है, मेरी स्पीड अपनी है, दैट्स ओके, आई एम गोइंग टू मूव एट दिस स्पीड, आई लाइक माई सेल्फ एट दिस स्पीड. लेकिन इफ दे गो फास्टर इट्स इज फाइन, आई एम हैप्पी सीइंग अदर कार्स गोइंग अहेड ऑफ मी, देन इट्स फाइन. लेकिन अगर डर है तो फिर नहीं देना, देन कीप इट टू योर सेल्फ, बट इट्स अ वेरी लिमिटेड फीलिंग. आप सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, अपने लिए ही करते हैं, और इसमें कभी खुशी नहीं अनुभव
0: होती. शिवानी, हमने घर की बात की थी तो मूल्यों की बात की थी. कहीं ना कहीं गिरते मूल्य हम घर में बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों के सामने आना है, हमें बच्चों को देने हैं. लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, वहां मूल्य ताक पे रख दिए जाते हैं. अपने मूल्य हम बचाने की कोशिश भी करें ऑफिस पहुंच कर, कि जब माहौल ऐसा देखते हैं तो मूल्य जिनमें करप्शन एक बहुत बड़ी बात आ जाती है, या और भी सारे अगर जीवन मूल्यों को देखते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि जो माहौल है उसी के साथ मैं भी उसी में इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो तभी मैं जी सकता हूँ. तो ऐसे माहौल में अपने मूल्यों पर कायम रहना वो बहुत मुश्किल आज के वक्त में लगता है, और अपने मूल्यों को सही रूप में पहचानना, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें.
1: ये तभी हम कर पाएंगे अगर हमने अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कर दिया है. अगर हम अपने आप को सिर्फ एक शरीर समझते हैं। अगेन सोल कॉन्शियसनेस पर बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है कि अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हम समझते हैं इतना सा ही तो जीवन है, इस जीवन में जो कुछ मिल जाए यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो कुछ प्राप्त करना है जल्दी कर लो। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जस्ट कीप गेटिंग गेटिंग गेटिंग, दिस इज हाउ मच यू हैव टाइम, यू वॉन्ट टू गेट, यू कैन गेट एवरीथिंग। जब ये एटीट्यूड होगा तब हम उसके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं। तब मतलब हम छोटी से छोटी चीज के लिए भी अपनी वैल्यूज को गिव अप कर देंगे। जब हमें समझ में आ जाता कि ये शरीर है, मैं इसको चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ, आत्मा की वैल्यूज है, आत्मा के गुण है, आत्मा के संस्कार है, खुशी जो है वो मुझे इन मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिलने वाली, वो मुझे इंटरनल जो मैं एक एक कर्म करूंगी किन वैल्यूज पर बेस्ड करूंगी वो तब मुझे मिलने वाली है। अब मुझे अपनी लाइफ को डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर मुझे एक प्रमोशन, एक मतलब बंगला, गाड़ी, व्हाटएवर दीज थिंग्स, ये सब मिलने वाली हैं एट द कॉस्ट कि मेरी खुशी जाएगी, क्योंकि वैल्यूज को साइड पे रख के प्राप्त की हुई वस्तु मन की स्थिति को खुशी कभी नहीं दे सकता, क्योंकि बीज नेगेटिव था। तो हर एक के लिए अलग अलग है। वी आर नॉट गोइंग टू से हियर और वी आर नॉट हियर टू टेल एनीवन कि दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट, दिस इज फॉर यू टू डिसाइड। अगर आप कहते हैं नहीं जी करप्शन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स योर डिसीजन, एब्सोल्युटली आपका निर्णय है ये। प्रेशर लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी वायुमंडल में लोग हैं जो इस चीज के लिए झुकते नहीं है। भले आप समझें कि बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन अगर एक भी कर सकता
0: तो सब कर सकते,
1: तो हम सब कर सकते हैं। लेकिन शायद उस एक व्यक्ति को जो इसके अगेंस्ट जाता है उसको थोड़ा सहन करना पड़ता है, शायद उसको वो मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, वो भी इफ यू फील नहीं मिलेगी, शायद नहीं मिलेगी, बट उसके लिए वो इनर सैटिस्फैक्शन शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें अपने लिए और अपने परिवार के लोगों को प्लीज पूछ लीजिएगा एक बार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मेरी मानसिक स्थिति होगी वो सबको मिलने वाली है। तो अगर कल को मैं परेशान रहूं और बच्चे भी, घर के लोग और भी परेशान रहे, और वो कहें ऐसा किया ही क्यों, एंड आई से आई डिड इट सो दैट आई कुड बाय यू द कार, दे माइट से वी डोंट नीड द कार। सो व्हेन यू टेक द डिसीजन ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर वैल्यूज, टेक द डिसीजन विद योर फैमिली, अपने परिवार, बिकॉज वी हैड डिसाइडेड कि जो राइट और रॉन्ग हम सेट करने वाले हैं वो परिवार की राय के साथ मिलजुल कर हम सेट करने वाले हैं। तो अपने परिवार में, चाहे बच्चे बहुत छोटे हों लेकिन जो भी बड़े आपके साथ हैं, आस्क देम डू वी वॉन्ट ऑल दिस एट द कॉस्ट ऑफ वैल्यूज, या क्या हम अपने वैल्यू सिस्टम को इंटैक्ट रखें। एंड 99.9% आई वुड थिंक कि आपको मिलेगा, कीप इट इंटैक्ट। ये हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं ये सोच के नहीं नहीं नहीं मेरे परिवार को ये चाहिए, हाँ। मेरे बच्चों को ये चाहिए, अगर मैंने अपने बच्चों को ये नहीं दिया तो वो यू नो अपसेट हो जाएंगे। नहीं, एवरीबडी वॉन्ट्स हैप्पीनेस एंड नोबडी वॉन्ट्स टू लूज देयर हैप्पीनेस एट द कॉस्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक कम्फर्ट्स। हम सोच रहे हैं कि पीपल वॉन्ट हैप्पीनेस विद मटेरियल, इट्स नॉट लाइक दैट। I need to talk. और इसीलिए इन बातों की घर में बातें, डिस्कशन होनी चाहिए। We should discuss कि values क्या है, happiness क्या है, how much are we ready to compromise, or should we be that kind of family जो stick to our values?
0: और यहाँ stress, इस स्ट्रेस को कोप करना आना चाहिए, ना कि वो स्ट्रेस जो हम खुद क्रिएट करते हैं।
1: इस स्ट्रेस को एक्चुअली कोप करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई स्ट्रेस नहीं क्रिएट होगा, बिल्कुल नहीं स्ट्रेस क्रिएट होगा, अगर आपने अपनी चॉइस से वो डिसीजन लिया होगा, अगर वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी। लेट्स से ऑनेस्टी या ब्राइब नहीं देना या नहीं लेना, इफ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन एनीथिंग एल्स, यू नो, देन एनी कार और बंगलो, I will not get stressed. Even if my job is at stake, it doesn't matter. क्योंकि मेरे पास वो value है जो शायद आज बहुत कम है लोगों के अंदर, तो वो value कोई ना कोई होगा जो उस value को recognize करेगा, तो मुझे वो tension वाले period से नहीं गुजरना पड़ेगा if inside I'm very short. लेकिन अगर मैं कमजोर हूँ, एक बार सच बोला, थोड़ा सा उसका कुछ प्रेशर पड़ा, नहीं नहीं नहीं सच बोलने से तो नहीं चल सकता, झूठ बोल दो कर दो, देन आई एम नॉट फिट टू डू इट, देन आई विल हैव टू डू जो ऑल द थिंग्स जो सारे लोग कर रहे हैं एंड देन आई विल हैव टू गेट जो सबको मिल रहा है.
0: इट मींस वही आ जाते हैं कि हाउ मच आई वैल्यू माय वैल्यू.
1: एब्सोल्युटली इट्स नॉट अबाउट. ये लेम एक्सक्यूज है, ये एक बहाना है कहना कि सब लोग कर रहे हैं अगर मैंने नहीं किया. एंड दिस इवन अप्लाइज टू यू नो सोशल एडिक्शंस वगैरह. हम कहते हैं ओ हम जब पार्टी में जाते हैं सोशल कल्चर में सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा. अगर मैंने नहीं किया तो मेरा बॉस मेरे बारे में क्या. एक्सक्यूजेस, एब्सोल्यूट एक्सक्यूजेस. क्या इस बेसिस पर किसी की मेरिट डिसाइड हो सकती है? नथिंग. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अगर वी वॉन्ट टू डू व्हाट एवरीबडी इज डूइंग then we will get what everybody is getting and everybody is getting tension, anxiety and stress. If I want to get something different, that's happiness, I will have to do something different. I will have to be somebody different. That's very important. To agar wo khushi chahiye, it's in your hand already. Gawana nahi hai usko in choti choti baaton ke liye.
0: Ye jo values ki jo baat hum kar rahe hain ya jis tarah se jo choti choti situations samne aati hain us pe kaise aap अडिग रह सकते हैं. अडिग भी रहने की जरूरत नहीं, जस्ट माइंड सेट.
1: प्रायोरिटाइज कि ये बोले ये झूठ बोलना ही पड़ेगा. आई एम सॉरी मैं झूठ नहीं बोल सकता. नाउ आई एम रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट. आपको ये डिसऑनेस्ट कर्म करना ही पड़ेगा. आई एम सॉरी सर ये मैं नहीं कर सकता. नाउ आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग एंड देन इट शुड बी एनीथिंग आई एम रेडी टू फेस बिकॉज ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये मैं कर ही नहीं सकता. तो फाइन मे बी इट इज समथिंग अ पार्ट ऑफ द जॉब जो मैं नहीं कर सकता तो आई एम रेडी टू फेस उसके लिए लेकिन आई विल नॉट डू इट.
0: कुछ चीजें जो हैं वो अडिग रहनी चाहिए, कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती. उनमें ये है चेंज हमें अपने एटीट्यूड्स को जरूर करना है, अपने थॉट्स को कर सकते हैं लेकिन वैल्यूज को नहीं क्योंकि यहाँ हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं.
1: और यहाँ
0: फ्लेक्सिबिलिटी है, मुझमें फ्लेक्सिबल
1: जहाँ चाहिए वहाँ
0: हो जाता है. सुजा शिवानी ऑफिस में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो अभी भी जिनको इनके बारे में जानना बाकी है. ट्रस्ट की बात आती है, एंगर की बात आती है और फिर अगेन मेडिटेशनल एस्पेक्ट्स जो हैं कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी इस परिवार में भी एक स्टेबिलिटी ला सकती है. तो अभी बाकी है काम लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: ऑफिस में जब हम पहुंचते हैं, जब हमने उसे मान लिया, स्वीकार लिया कि वो मेरा परिवार है, फिर जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, जेलेसी की आज हमने बात की और किस तरह से अपनी वैल्यूज पे हम अडिग रह सकते हैं. और अडिग रहना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है. अगेन इट्स माय चॉइस कि मैं रहना चाहती हूँ, किसी और के कारण मैं रहूं या ना रहूं वो नहीं हो सकता. तो डिसीजन हर बार की तरह मेरे हाथ में रहेगा. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल गुनगुना रहा है तो आपका स्वागत है. आप हमारे साथ शेयर कीजिए उसे, हमें फोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999344666, 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. वक्त है कि आपसे विदा लें लेकिन इसी वादे के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में कुछ और रिश्तों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जब हम ऑफिस में होते हैं तो एक फेथ या ट्रस्ट या विश्वास का रिश्ता होता है और साथ ही जिस एंगर को हम कई बार सही मान लेते हैं उसे भी क्या सही माना जाना चाहिए, क्या बिना गुस्सा किए भी ऑफिस में काम चलाया जा सकता है. ऐसे ही कई और बातें हैं जो हम अगली कड़ी में जरूर उठाएंगे. तो आप इंतजार कीजिए, मुलाकात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. ओम शांति.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से, तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद।
1: पुणेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अभी तक हमने बहुत से एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात जो अभी हमने जानी वो ये कि मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा कहना छोड़कर मैं आत्मा हूँ, ये रियलाइजेशन एक सबसे बड़ी बात है जो इस पूरा जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम समझ रहे हैं। और आज हम मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जो आज मेरे ख्याल से हर कोई अवेयर है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेडिटेशन का असली एस्पेक्ट क्या है और क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है, यहाँ कहीं आश्रम में जाके ही हम उसे सीख सकते हैं, कर सकते हैं, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। शिवानी, हम ये तो अच्छी तरह से जो हमने बातचीत की थी कि आत्मा एक एनर्जी है जो यहाँ है और मैं आत्मा हूँ।
1: कैसे आत्मा हूँ?
0: मैं एक शांत, प्यार करने वाली और खुश रहने वाली
1: प्योर आत्मा हूँ,
0: एक वाइट कलर की तरह प्योर आत्मा हूँ। और मेरे साथ
1: व्हाइल यू आर सेइंग इट, सी योर एक्सप्रेशन।
0: ओके,
1: अपने आप के बारे में इस तरह से सोचते हुए भी यू जस्ट फील सो गुड।
0: यस, एक्चुअली यू नो लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि द मोमेंट वी विल रियलाइज, आई थिंक आई हैड लेफ्ट इट एट दैट, कि जैसे ही मुझे एहसास हो कि मैं इतनी सुंदर हूँ तो फिर दुनिया कैसी हो, क्या फर्क पड़ता है।
1: नहीं, बट लेकिन तब ये नहीं होता कि कैसी है, तब ये रियलाइज होता है कि हर एक भी तो उतना सुंदर है।
0: बिल्कुल, वो भी उतना ही सुंदर
1: है। सो द वे आई फील नाइस अबाउट माई सेल्फ, आई विल फील नाइस about the other people also.
0: Of course, yes. And then all the problems will go away. लेकिन उसके लिए पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आज क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मुझे सानिध्य मिला तो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन the moment I'll go out, it will not be that easy. And again, we've talked about it कि meditation से possible हो पाएगा, पर meditation है क्या, ये एक सबसे बड़ा पहला सवाल ये है। और क्या meditation आसानी से किया जा सकता है, क्या मैं कर सकती हूँ, या it's like you know I have to get into something else and then get into meditation?
1: Meditation ke bare mein bhi kuch galat beliefs hai. Again, meditation is very difficult, meditation is very complicated. Mere se nahi ho sakta hai.
0: See, this is what everybody has been saying, start meditating.
1: Bilkul.
0: And I say okay, but how?
1: Right, but that wo isliye kyunki mujhe ye nahi pata what am I talking about. You know, agar koi kahe start exercising, but what exercise, which exercise, how to do it, ek bar wo pata chal gaya then it will not be difficult. Lekin सिर्फ बोलते रहे कि ये करिए करिए, लेकिन क्या करना है। मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड मेडिरी विच मीन्स टू हील। टू हील, एक वुंड है, एक चोट है, उसको हील करना है, या लाइक वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम टू क्लीन।
0: ओके, बिफोर यू गो इनटू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड द रियल एस्पेक्ट ऑफ मेडिटेशन, लेट्स स्टार्ट taking those aspects jise abhi tak hum meditation mante aa rahe hain, so that it becomes more clear to me also. You know, abhi tak mujhe ye tha ki aap jis bhi puja ki jagah pe aap jate hain wahan baithiye, dhyan lagaiye, dhyan is meditation. Lekin dhyan main kisko lagau, ek murti ko, ek us power ko, ek energy ko, aur kya karu, kaise dhyan lagau, you know, aankh band karke kya karu, you know, like
1: meditation ko hum yoga bhi kehte hain. हम यहाँ पर जो मेडिटेशन हम करते हैं उसको कहते हैं राज योगा मेडिटेशन। तो योगा कहते ही पहली चीज जो आ जाती है वो है फिजिकल योगा, यू नो, जैसे हम प्राणायाम, हठ योग, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो शरीर के लिए है। यू कैन नॉट मिक्स दैट विद मेडिटेशन। मेडिटेशन इज इंटरनल, मेडिटेशन इज टू डू विद द माइंड, मेडिटेशन इज टू डू विद द सोल, मेडिटेशन आत्मा का कार्य है। प्राणायाम, हठ योग, ये शरीर का कार्य है, दो चीजों को हम मिक्स नहीं कर सकते। और इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए कोई आसन की जरूरत नहीं है आपको, मतलब ऑफ कोर्स अ राइट पोस्चर होता है, लेकिन हम यहाँ के यहाँ इसी तरह इस सोफे पे बैठे हुए वी कैन डू मेडिटेशन।
0: मेडिटेशन हैज टू बी साइलेंट, लाइक साइलेंटली हमें कुछ करना है, और हमें क्या मंत्रों का जाप करना है,
1: ये भी एक अलग अलग तरीके है। सी अगेन, देयर इज नथिंग राइट, nothing wrong. I will have to try it out and see कि मेरे लिए कौन सी विधि right होती है। जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी देर हम मंत्र जाप करते हैं उतनी देर हमारे मन में कोई भी और व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा।
0: अगर मैं एक
1: अब वो हो जाता है, जब हम शुरू में करना शुरू करते हैं, एक शब्द को, एक बहुत पवित्र शब्द को लेते हैं और उसका उच्चारण बार बार करते हैं, तो थोड़ा समय तो मन उस पर एकाग्र होता है और उतनी देर कोई और थॉट नहीं आएगा, तो हमारी एनर्जी सेव हो गई, कंजर्व हो गई, नो लीकेज। बेसिकली देर इज नो लीकेज एट दैट टाइम. लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जब मन को एक आदत पड़ जाती है, वही चीज बोल रहे हैं वही चीज बोल रहे हैं, तो वो वही हो गया कि अगर रोज सेम खाना खाया, आप घर पहुंचे और रोज वही सब्जी बनी है, तो थोड़े दिन के बाद आप उस सब्जी को खाने से थोड़ा सा कतराएंगे और आप सोचेंगे कुछ और खाते हुए घर चलते. इसी तरह मन जब बार बार वही शब्द उच्चारण कर रहा है, तो थोड़े समय के बाद हम बिना उस पर कंसंट्रेट किए उसका उच्चारण कर सकते हैं. इट इज लाइक नए रास्ते पर जाते हैं तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब हर रोज उसी रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता. कई बार हम बहुत कुछ और सोचते सोचते लगता है घर पहुंच गए. वी वर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग.
0: डेफिनेटली ये जो मंत्र उच्चारण की बात, ये चैंटिंग की
1: सिमिलरली
0: बात,
1: तो अब आप चैंटिंग कर रहे हैं या मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप एक शब्द बोलते जा रहे हैं, साथ साथ मन सोच रहा है आज पता नहीं ऑफिस में क्या होगा, हाँ जी आज पता नहीं खाने में क्या बना है, कल उसने ये कहा था आज पता नहीं. तो अब क्या हुआ, जर्नी पे चल रहे हैं लेकिन भटक रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है किस रास्ते पे जा रहे हैं. तो इसलिए उस मंत्र जाप से जो प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो लीकेज को हम प्रिवेंट करने वाले थे, वो नहीं हुआ, लीकेज हो रही है.
0: एक और तरीका जो लोग कहते हैं कि आप आंख बंद करके कंसंट्रेट कीजिए एक लाइट पर और बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए, तो इट्स लाइक आई ट्राइड बट इट वाज नॉट पॉसिबल.
1: क्योंकि बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए, दिस इज मोर और लेस इम्पॉसिबल, यू नो, क्योंकि मन का काम है सोचना. आप उसको दमन नहीं कीजिए, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं कीजिए, वो उसका नेचुरल कार्य है. एक स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा देंगे जबरदस्ती, वो दब तो जाएगा लेकिन जैसे ही वो प्रेशर रिलीज होगा, इट विल जस्ट रीबाउंड. तो पानी बह रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसकी धारा को परिवर्तन कर सकते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं. तो मेडिटेशन जो हम सीखते हैं, इट इज नॉट स्टॉपिंग द माइंड. और वैसे भी स्टॉप करके फायदा क्या होगा, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हम मेडिटेशन से क्या चाहते हैं. फॉर मी पर्सनली, मुझे मेडिटेशन से क्या चाहिए था, अ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन अपने आदतों का, ट्रांसफॉर्मेशन अपने संस्कारों का, परिवर्तन अपनी पूरी जीवन शैली का, अपनी वृत्ति का, अपने दृष्टिकोण का. तो वो मन को दबन करने से नहीं होगा,
0: वही अपने रॉन्ग बिलीव्स का,
1: वो सारा एटीट्यूडनल चेंज चाहिए था मेडिटेशन से. मन को जब हम दबन करते हैं तो कुछ देर के लिए कोई गलत संकल्प नहीं आएगा, लेकिन कोई सही संकल्प भी तो नहीं आया ना,
0: क्योंकि जनरेट ही नहीं.
1: हाँ, तो लीकेज बंद हुई, डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेकिन चार्ज कहाँ हुआ. There are two different things. आपने डिस्चार्ज नहीं किया, लेकिन क्या आपने चार्ज किया. तो मेडिटेशन शुड बी कि वर्किंग ऑन योर सेल्फ चार्जिंग प्रोसेस, जिससे कि फिर आप जब सिर्फ वो 10 मिनट मेडिटेशन या 15 मिनट नहीं, आप सारा दिन में कुछ भी कर रहे हैं, वो मेडिटेशन का रिजल्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देना चाहिए. आप जब बैठकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं धीरे धीरे, तो वो सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं होता है, वो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग फिर आपकी सारा दिन वर्क करती है. आप सोल कॉन्शियसनेस जब सुबह बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो सारा दिन आप एक एफर्ट या एक नेचुरली रहेगा कि आप सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं. तो मेडिटेशन का रिजल्ट उतनी देर के लिए नहीं होना चाहिए, वो सारा दिन आपके ऊपर आना चाहिए. तो मेडिटेशन राजयोगा, मेडिटेशन राजयोगा अर्थात एक ऐसा योग जिससे हम स्वयं पर राज्य करें.
0: स्वयं मतलब अब कौन
1: सेल्फ, सेल्फ से पोत पोत द माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार एंड द फिजिकल ऑर्गन्स.
0: अनदर थिंग व्हिच इज देयर इज सोल, बॉडी एंड माइंड. They should be in sync. ये हम सुनते आए हैं.
1: Right. लेकिन जैसे हमने शेयर किया था कि सोल एंड माइंड ये दो अलग चीजें नहीं है,
0: एक ही
1: दो एनर्जीज नहीं है. सोल जब सोचने का काम करती है, हम उसको माइंड कहते हैं. तो मैं आत्मा अपना मालिक जब बन जाता हूँ, दैट इज कॉल्ड राजयोग, स्वयं पर राज्य करना, जिसको हम कहते हैं स्वराज्य, सेल्फ सॉवरेनिटी, सेल्फ रूल. तो एक आत्मा एक बैटरी की तरह है, जो बैटरी आज थोड़ी सी डिस्चार्ज है और डिस्चार्ज होने के कारण वो थोड़ा सा तकलीफ दे रही है, कभी गुस्सा कभी चिड़चिड़ापन. अब उस बैटरी की चार्जिंग करनी है. एक है कि हम अपने आप उसको चार्ज करने की कोशिश करें, जो हम ट्राई करते हैं, जैसे आपने कहा कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेल्फ. ओके, वी कैन डू इट, बट इट्स अ लिटिल लिटिल डिफिकल्ट, लिटिल चैलेंजिंग, क्योंकि डिस्चार्ज है ना, तो चार्ज करने में, चार्ज कैसे करेंगे बैटरी को?
0: चार्जर इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा के.
1: चार्जर किससे कनेक्ट हो जाएगा?
0: जो मेन सॉकेट है,
1: पावर सप्लाई.
0: ओके,
1: तो पावर सोर्स से जब तक इस बैटरी को नहीं कनेक्ट किया, तब तक इसकी चार्जिंग, वो क्या होगा, अगर खुद को ही चार्ज करेंगे थोड़ा सा होगी, फिर डिस्चार्ज. जैसे ही ना गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अब उस टाइम है नहीं पावर सोर्स, तो हम किसी और बैटरी के साथ थोड़ी देर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो जाता है. फाइनली वी हैव टू गो एंड गेट इट चार्ज्ड. इसी तरह खुद पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं या किसी और से बात कर लेते हैं, तो बैटरी टू बैटरी चार्जिंग, इट वोंट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग, थोड़े टाइम में अगेन डिस्चार्ज. तो अगर रियली चार्जिंग करनी है, द बैटरी विल हैव टू बी कनेक्टेड टू द पावर सोर्स. तो उसके लिए पहचान चाहिए, परिचय चाहिए बैटरी का भी और पावर सोर्स का भी, कि किससे जोड़ रहे हैं, कौन है वो शक्ति.
0: बैटरी तो वी अंडरस्टूड लाइक इस, यू नो,
1: मैं आत्मा हूँ. इसलिए जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमने लिया कि सेल्फ टॉक, सेल्फ काउंसलिंग. लेकिन ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, दिस इज नॉट मेडिटेशन, ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेज है. मेडिटेशन इज अ रिलेशनशिप, अ कम्युनिकेशन, एक संबंध परमात्मा के साथ. हमने बहुत सारे संबंधों की बात की और बहुत सारे संबंधों में उतराव चढ़ाव देखे, लेकिन जो एक संबंध जो बहुत वैल्यूबल है और जिसको आज की भागदौड़ में हम शायद कहीं भूल से गए हैं या खो सा गया है, वो है मुझ आत्मा का उस परमात्मा के साथ संबंध, ये है योग.
0: एंड वो परमात्मा, वो पावर, जिस पावर, फुल पावर की बात कर रहे हैं, जिसके साथ हमें अपना सॉकेट जोड़ना है, वो कहाँ है?
1: उसकी पहचान चाहिए, उसका परिचय चाहिए. जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग जब सबसे पहले सेंटर पर आए तो हमने कहा हम तो वैसे भी भगवान को याद करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है. प्रेयर और मेडिटेशन, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है. प्रेयर इज लाइक वन वे कॉन्वर्सेशन,
0: आस्किंग फॉर इट.
1: हाँ, आस्किंग ऑल्सो एंड वन वे. आप देखो, हम जाते हैं मूर्ति के सामने, बहुत आस्था से खड़े होते हैं, हम अपनी बात कहते हैं. You know,
0: can we hear him?
1: How will a relationship develop otherwise?
0: Can we have a conversation with Paramatma?
1: That's a relationship, na?
0: हाँ.
1: आप देखो, आप और मैं बैठे हैं, सिर्फ मैं ही बोलती जाऊं, आप बिल्कुल बोले ही ना, तो संबंध कैसे बनेगा? संबंध तो मैं कुछ बोलूं, आप कुछ बोले, मैं कुछ पूछूं, आप कुछ उसका जवाब दे, तब तो एक
0: रिश्ता
1: बनता है. एक बोलता जाए, दूसरे की सुने भी नहीं और दूसरे की राय कुछ भी नहीं करे, तो ये संबंध नहीं है. और प्रेयर में और एक चीज जो थोड़ी सी हो जाती है, कि हम अपनी भावना की बात नहीं बोल रहे हैं. जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा पहाड़ी पर बैठा था, गैया चरा रहा था, तो बोर हो रहा था, पेड़ के नीचे बैठ गया. तो उसने सोचा मैं भी बोर हो रहा हूं, भगवान भी ऊपर बैठा होगा, वो भी हम सबको ऐसे ही छोड़ देता है गैया चराने के लिए, जैसे मैंने छोड़ दिया, वो भी बोर हो रहा होगा, क्यों नहीं मैं उससे बातें करता हूँ. तो उसने बातें करनी शुरू की, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, ये हो, आप कैसे हो, व्हाटएवर, अ लिटिल बॉय, वो अपनी वार्तालाप कर रहा था. एक पंडित जी वहां से गुजरे, बच्चे क्या कर रहे हो? जी मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ. तो उसको डांट दिया, तुम भगवान से ऐसे थोड़ी बातें की जाती है. फिर उसको श्लोक सिखाए, रटाए, उसको मुश्किल हो रही थी रटने में, उसको रटाए, कहा यही बोलना, ये भगवान से बात करने का तरीका होता है. तो वो वही बोलने लगा, वही बोलने लगा. रात को, कहानी है ऑब्वियसली, रात को जब पंडित जी अपने घर पहुंचे और भगवान को याद करने बैठे, तो उन्होंने भगवान की आवाज सुनी, पंडित आज क्या किया सुबह, वो छोटा बच्चा कितनी मीठी मीठी अपनी प्यारी प्यारी बातें मेरे साथ कर रहा था, तो तूने क्या करा दिया उसको? अब वो ऐसी बातें कर रहा है जो उसको ना खुद समझ में आ रही है, ना उसके पीछे उसका कोई भाव है. सो दैट कैन नॉट बी अ रिलेशनशिप. यू सी, इफ आई पिक अप अ बुक एंड आई लर्न अप अ फ्यू वर्ड्स एंड मैं वही वर्ड्स आपके सामने सिर्फ बैठ के दोहराती रहूं, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप. हम 100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं. मुझे याद है हम स्कूल में खड़े होके प्रार्थना रोज करते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भावना मिसिंग है. हमने सिर्फ उन शब्दों को ही मैकेनिकली बोल दिया और सबके वही शब्द है. सबका वही बोल कैसे हो सकता है? तो मेडिटेशन इज कॉन्वर्सेशन, नॉट सेइंग समथिंग व्हिच आई हैव लर्नड अप, टॉकिंग टू गॉड.
0: talking to God.
1: Yeah, it's in conversation with God. Absolutely.
0: But then will he talk back to us?
1: What do you think?
0: I don't know.
1: Is it possible?
0: I don't know. I'm like, if you are saying it, I'm saying, but I don't think so, because I don't know who God is.
1: Atma ka Paramatma se conversation, right? Atma ka Atma se conversation kaise hota hai? Is mukh ke dwara, right? Lekin kabhi kabhi bina mukh ke dwara bhi hamara conversation hota hai.
0: Gestures.
1: Aap ghar baithe hain, aapko maine phone kar diya. Nahi, gestures ki bhi zarurat nahi hai. Aapko maine phone kiya, aapne kaha, main aapko hi abhi yaad kar rahi thi. Kya? Kaun? Kiska conversation chal raha tha? Telepathy. Ek sankalp yahan se create hua, wo aap tak pahuncha. आपसे भी संकल्प आया. कई बार हम किसी के पास अपना प्रश्न लेकर जाते हैं, प्रश्न बोलने से पहले ही सामने वाला व्यक्ति उसका आंसर दे रहा होता है. आपको कैसे पता चला ये मेरा क्वेश्चन था? पता नहीं. व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन मुख से नहीं बोला जाता है, पहले वो यहाँ क्रिएट हुआ. और अगर सामने वाला रिसीवर ठीक है, क्लियर है, उसका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो माई एनर्जी इज रीचिंग एंड यू विल गिव मी बैक. टेलीपैथी. अगर आत्मा आत्मा के बीच ये कम्युनिकेशन थॉट पावर पे हो सकता है, तो आत्मा और परमात्मा से नहीं हो सकता. फर्क क्या? इनफैक्ट इट्स इजियर, क्योंकि यहाँ तो हम सब थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और हमारे बहुत सारा कुछ चल रहा है, तो वो रिसीवर और ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा मैच करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है. बट ही इज क्लीन, ही इज ब्यूटिफुल, ही इज वेटिंग फॉर मी. ऑल दैट आई हैव टू डू इज ट्यून माई फ्रीक्वेंसी टू हिम.
0: Lekin at one point, lots of people must be tuning their frequency.
1: But that he is the powerhouse. So lot of batteries can get connected at the same time. It's energy, it's not physical. Dekho, ye sab limitations of being with so many people at the same time tab aati hai, jab ek physical costume aap use kar rahe hai. Paramatma to ek shakti hai, wo nirakar hai, wo power hai. Jaise main ek power hu, wo bhi ek power hai. अगर हम कहें कि हाँ भगवान कुछ है, अभी तक क्या था भगवान? क्या था मेरे लिए? कॉन्सेप्ट था. गॉड वॉज अ बिलीफ. इसीलिए अभी तक कहते हैं डू यू बिलीव इन गॉड? यू नो, आप कभी नहीं कहेंगे डू यू बिलीव इन योर पेरेंट्स? What is there to believe? They are my parents. मतलब उसमें believe क्या करना? It's the truth. Similarly, there is no such thing as do you believe in God? God is my father. It's the truth. But अभी तक वो truth को नहीं पहचाना, तो अभी तक वो belief में ही चल रहे हैं. Do I believe in God? Which form of God? God क्या है? तो ये सब चीजों की थोड़ी सी पहचान चाहिए, इसका परिचय चाहिए.
0: हमारे पास यू नो लाइक वक्त कम है, तो हम पहली चीज यहीं पे, क्योंकि कहीं प्रोग्राम खत्म हो जाए और हम ये पहुंच ही ना पाए कि कैसे परिचय कैसे मिलेगा परमात्मा.
1: इसी के लिए जो हम राजयोगा फाउंडेशन कोर्स हर सेंटर पे, आज ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में 110 कंट्रीज में फैले हैं, विच इज क्वाइट बिग. एंड टूडे देर आर मोर देन 8,500 सेंटर्स, 8,500 सेवा केंद्र हर इस 110 देशों में है. भारत के तो हर शहर में, मतलब बड़े बड़े शहरों में 100 से अधिक सेवा केंद्र है. तो जहां भी आप रहते हैं, आपके 5-8 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको एक सेवा केंद्र जरूर मिलेगा. वहां बहने हैं जो परमात्मा के द्वारा ये दिया गया परिचय, परमात्मा का परिचय खुद उसने ही दिया है. और जब परमात्मा खुद अपना परिचय देते हैं, तब वो परिचय बिल्कुल एक्यूरेट होता है. तो परमात्मा का उनके खुद के द्वारा दिया गया परिचय वो हमें सेंटर पर जाकर मिलता है. 7 days कोर्स है, 1 hour एवरी डे फॉर 7 days, जो समय हम चूज करते हैं. टाइम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बस थोड़ा सा समय निकालना है. दिन समय सब कुछ हम चूज करें और ये विधि को सीखते हैं. जैसे आप कह रहे थे ना कि मेडिटेशन हम सीखें कैसे, एक्चुअली परमात्मा से संबंध जोड़ना ये सीखना नहीं है, लेकिन उसका परिचय चाहिए, अपना परिचय चाहिए. ये परिचय मिल जाता है, समय का परिचय मिल जाता है और वो विधि मिल जाती है, फिर उसको हम अपने आप कर सकते हैं.
0: यू सेड दिस 7 days में, 7 days जो एक एक घंटा, 7 घंटों में बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन हो जाता है गॉड का, कि ये, और हम उनसे जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो कैसे कर पा रहे हैं. ये पूरा प्रोसेस परिचय की जो बात कर रहे थे, तो ये 7 घंटे परिचय के लिए. उसके बाद हमें, हम अपने आप कभी भी
1: उसके बाद इट्स अ रिलेशनशिप. सेंटर्स आर ऑलवेज देयर. वो सेंटर है क्योंकि वहां पर जाने से एक यू नो इजी हो जाता है क्योंकि हम सारा दिन
0: पूरा माहौल
1: बहुत हाँ तो वो वायुमंडल मिलता है, वो शिक्षाएं मिलती हैं. लेकिन एक रिलेशनशिप हैज बिगन. उसके बाद आपको जैसे समय मिले आप सेवा केंद्र की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. लेकिन एक विधि सीख ली तो आप उसको घर पे करना शुरू कर सकते हैं, अपना समय निकाल कर. और वो सारा दिन हो सकता है. इट इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम कि आपको इतनी देर मेडिटेशन करना है. इट्स लाइक किसी को प्यार से याद करना है, उसके लिए कोई डिफाइंड यू नो स्ट्रक्चर्ड टाइम नहीं होगा.
0: सबसे बड़ी बात है मैं आपके साथ अपना रिश्ता कितना गहरा करना चाहती हूं,
1: ये तो मेरी चॉइस है.
0: मैं कितना कितना उसमें टाइम स्पेंड कर रही हूँ, यू नो लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर मी टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. और मुझे नहीं लगता कि अगर वंस माय इंट्रोडक्शन हैपेंस
1: राइट
0: आई वुड लाइक टू हैव एनी अदर रिलेशनशिप.
1: नहीं दैट्स आल्सो यू नो फिर कई बार लोग सोचते हैं अच्छा मतलब इस चीज में जुड़ गए, मेडिटेशन कर रहे हैं, परमात्मा की तरफ ध्यान लग गया तो बाकी सारे संबंधों से किनारा कर लेंगे, डिटैच्ड हो जाए. दैट्स नॉट ट्रू. ये एक चार्जिंग प्रोसेस है एंड इससे उल्टा हमारे रिलेशनशिप्स और भी ब्यूटीफुल हो जाते हैं. यू नो जब हम खुद भर जाते हैं अंदर से, क्योंकि हम अभी तक बैटरी से मांग रहे थे. You know, it's like this. मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो. We got connected to the powerhouse. अब हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती.
0: और हम कई बार एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हम देना शुरू
1: करते हैं. एक्स्ट्रा नहीं, हो ही जाता है, नेचुरल है, देना नहीं पड़ता है. जो चीज आपके अंदर भर जाएगी, यू आर अ ट्रांसमिटर. देन आप जहां जाएंगे आपकी वाइब्रेशन, आपकी थॉट आपके साथ हर जगह ऑटोमेटिकली जाएगी. यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट फॉर दैट. एंड परमात्मा से संबंध जब जुड़ जाता है तो यू सी जिसके साथ आपका संबंध होगा आप उसके जैसा बनना चले जाते हैं. एज द कंपनी नो सो विल बी द इफेक्ट. तो सत्संग जिसके लिए कहते हैं, लोग कहते हैं हम सत्संग में जा रहे हैं, वो है उस सत्य का संग करना. सिर्फ हम जा रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, ये सत्संग नहीं है. उस सत्य के संग में रहना तो संग का रंग
0: अपने आप
1: ऑटोमेटिकली लगता है, नेचुरल है.
0: ओके, इट लुक्स लाइक सच अ ब्यूटीफुल.
1: इट इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस.
0: बट इट इज पॉसिबल, लाइक यू नो सी वी लिविंग इन सच ब्लैक लाइफ.
1: सी आई विल टेल यू, ब्रह्मा कुमारीज में आज 9 लाख के करीब परिवार है. दे आर फैमिलीज, दे आर नॉट सरेंडर्ड. जो कई लोग सोचते हैं कि ये तो बस दुनिया से कट गए, आश्रम में रह रहे हैं, नहीं. फैमिलीज, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइव्स, चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जो अपनी जिम्मेवारियां, अपने संबंध, अपने परिवार सबको संभाल रहे हैं, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस सब कुछ कर रहे हैं. लेकिन सब कुछ जहां हम इतने रिश्ते निभा सकते हैं, क्या एक और रिश्ता नहीं जोड़ सकते?
0: जो कि हमें बाकी सारे रिश्तों को ज्यादा बेटर कर देगा,
1: जो कि मेरे करियर को बहुत अच्छा कर देता है, जो कि मेरी फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर देता है, जो कि मेरी मेंटल वेलबींग को बहुत अच्छा कर देता है, तो वो रिलेशनशिप क्यों नहीं? और उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ता, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है. आपके साथ अभी बैठे हुए भी मैं उसे याद कर सकती हूँ. तो डू आई नीड टू टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम? नहीं. तो सब कुछ करते हुए ही ये पॉसिबल है. अगर हम कहें जी अभी नहीं, रिटायर होने के बाद करेंगे, तो इट इज लाइक सेइंग कि मैं अपने जीवन के सारे एग्जाम्स दे दूं फिर उनकी तैयारी करूंगी.
0: बिल्कुल,
1: तब पढ़ेंगे बैठ के. नो, द एग्जाम इज नाउ, सो आई नीड द नॉलेज
0: नाउ, बिकॉज़ द जर्नी इज इम्पोर्टेंट, यू नो,
1: एंड देन आई एंजॉय द जर्नी. इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस.
0: और
1: एक चार्ज्ड बैटरी, यू नो, यू आर सो फुल एवरी डे, यू आर सो फुल व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल. तो फिर लोगों का जो इन्फ्लुएंस, जो हमने सारी बात की, एंगर, टेंशन, एंग्जायटी, लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपने कंट्रोल में आते जाते हैं. तो उसके लिए क्या हम थोड़ा सा समय नहीं निकालेंगे? ऑल दैट इट रिक्वायर्स प्रोबेबली 10 मिनट्स एवरी डे टू बिगिन विद. 10 मिनट अपने आप से रिफ्लेक्शन, काउंसलिंग, सेल्फ टॉक, परमात्मा से बातें. बेस्ट काउंसलर जो सिर्फ काउंसिल नहीं करता, साथ में पावर भी दे देता है उस काउंसलिंग को प्रैक्टिकल की लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के.
0: और आज के वक्त में यू नो लाइक द वे वी हैव बिकम सो प्रैक्टिकल, आई थिंक जितने भी दर्शक भी देखे होंगे, इवन टू मी, यू नो, हमारा जो इंटेलेक्ट इतना स्ट्रांग हो गया है, इतने लॉजिकल हो गए हैं, दिस लुक्स लाइक वेरी लॉजिकल.
1: इट इज वेरी लॉजिकल बिकॉज इट्स द ट्रूथ.
0: यस,
1: इट्स नॉट इमेजिनेशन. ये कल्पना नहीं है, लेकिन उसके लिए खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा,
0: एक्सपीरियंस करके देखना पड़ेगा. जो इंट्रोडक्शन की बात है, फर्स्ट स्टेप हैज टू बी फ्रॉम माई एंड.
1: एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा. एक्सपेरिमेंट कीजिए, वर्क करता है, एक्सपीरियंस होता है, तो ये सत्य है.
0: वाह वंडरफुल। तो शिवानी, ये जो पूरा आज जो ये कंसेप्ट, एक यू नो इतना हमने बात की, इतने सारे मुद्दों पे बात की जो हमें परेशान कर रही है, लेकिन इतना आसान और इतना प्यारा सा सोल्यूशन नजर आया जो कि पॉसिबल है, जिसके लिए हम सोचते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसे बहुत लोग होंगे सोचते होंगे कि जो दिस इज नॉट डन, दिस कांट बी पॉसिबल, सो दिस इज इन फैक्ट सो ईजी। पहली बात, सबसे बड़ी बात जो है कि पहला स्टेप हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि आई द सोल हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका
1: थैंक
0: पूरी बातचीत के लिए। इतनी सारी पहेलियों में हमने बात की, इतना सब कुछ हमने जानने की कोशिश की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। आंसर इतना सिंपल, इतना आसान था, पहला कदम हमें उठाना है। तो अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, पहला कदम उठाना चाहते हैं, तो भाई फोन कीजिए, ईमेल कीजिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए। आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी जो भी जानकारी चाहते हैं, जो भी सवाल आपका है, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत देने का, लेकिन इस वादे के साथ और इस दुआ के साथ कि जो ये पूरी हमने इन्फॉर्मेशन ली है, जो एक आत्मा से परमात्मा के मिलन का, उस कनेक्शन की हम बात करते आए हैं, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किस तरह से उसे अपनी जिंदगी में हम शामिल कर सकते हैं, राज योगा के सेंटर्स में जाकर एक बार ट्राई जरूर करेंगे, पहला कदम जरूर उठाएंगे। आप दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष
3: दोस्तों
2: प्रस्तुत करने।
3: जीवन में हमने कई बार ऐसा सुना है कि कभी समय का पता ही नहीं चलता किसी से बात करते हुए, और कई बार कई लोग कहते हैं कि ये कब जाएंगे, कब उठेंगे, जैसे ऐसा लगता है हर एक पल उस समय हमें बहुत भारी लगने लगता है। कुछ लोगों की खासियत ही होती है कि वो समय को इतना सहज बना देते हैं अपने बातचीत से कि आपको लगने लगता है कि इनके साथ थोड़ा और समय बिताएं। ऐसे लोगों को हमारे बुजुर्गों ने ज्ञानी, गुणी, विदुषी कहा है, विद्वान कहा है। क्या ऐसे लोग आपके आसपास हैं? होंगे जरूर, नजर खोल के देखने की जरूरत है, थोड़ा सा आसपास के लोगों के साथ मिलने घुलने की जरूरत है। लेकिन अगर आप बिजी हैं तो हम आपके लिए ऐसे ही लोगों को लेकर के आते हैं। यशस्वी भारत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप 107.8 रेडियो मधुबन में। मैं आरजे शांतनु आपके बीच में फिर से आया हूँ एक और खास मेहमान को लेकर के। और आज के हमारे मेहमान ऐसे ही हैं दोस्तों, जिनसे बातचीत करना अगर आप शुरू करें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रोग्राम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आज के हमारे एपिसोड में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी, जिन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2004 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। मैंने तो पहले ही कह दिया प्रोफेसर, तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि आज का जो हमारा ये बातचीत है ये मुझे और आपको बहुत ज्यादा ऐसी चीजों से रूबरू करेगा जिनके बारे में हमने शायद कभी इतने ध्यान से सोचा नहीं होगा, या देखा भी होगा लेकिन गौर नहीं किया होगा, सुना भी होगा लेकिन उस पे गौर नहीं किया होगा। आइए बातचीत का दौरा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी का। अनिल जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद, धन्यवाद शांतनु, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, और आपके जरिए उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश होगी आज, जिनके पास विचार है, जिनके पास नवसर्जन है, जिनके पास कल्पना है कुछ ऐसी जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी समस्याओं का हल होगा, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए, बिना किसी को चोट पहुंचाए हुए, बिना किसी को दर्द पहुंचाए।
3: जैसे आपने कहा कि हमारे देश को बहुत फायदा होगा और देश में रहने वाले लोगों को फायदा होगा, पर्यावरण, प्रकृति, जीव प्राणी, जो कोई भी है, हर एक को फायदा हो, लेकिन आज के दौर में हमने देखा कि ये फायदे के दौड़ में कई बार हम ये भूल ही जाते हैं कि जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, और दौड़ते हुए हम कहीं ना कहीं उनको ही पीछे छोड़ जाते हैं। तो ऐसे भागम भाग के दौड़ में हमारे श्रोता साथी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको सुन रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से, इतनी व्यस्तता में से आपने समय निकाला हमारे लिए, तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। अनिल जी, इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मैं समझता हूँ आपकी कहानी आपकी जुबानी सुनना जरूरी है कि आपने ये जो आपका दौर है जहां पर आपने लोगों के लिए, उनके ही द्वारा उनके लिए सृजन करना, उनके लिए उनके ही द्वारा समस्याओं का समाधान करना, इस जर्नी की शुरुआत जब आपने की, इस यात्रा की शुरुआत जब आपने की, इससे पहले की यात्रा हम जानना चाहेंगे, जब आप बचपन में कैसे थे, आपका परिवार, आपका माहौल क्या था, किन चीजों ने आपको प्रेरित किया कि आप अपने जीवन का जो ध्येय है वो इस प्रकार के समाज सेवा प्लस विद्यार्थी या विद्यार्थियों के लिए जो आपने काम किया है उसके तहत, तो ये जो टोटल एक कहानी है वो हम आपकी ही जुबानी सुनना चाहेंगे।
4: मैं संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि बात बड़ी पुरानी है, 70 साल पुरानी बात को याद रखना 7 मिनट में कोशिश करूंगा कह दूं। तो मेरा जन्म तो एक गांव में हुआ, गंगागढ़ गांव है, बुलंदशहर जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ खोचा है, जगह है जहाँ सिरेमिक के बर्तन बनते, जैसे अपने यहाँ मोरबी में बनते हैं गुजरात में, और उसके पास पासु है, पासु के पास गंगागढ़ है, वहाँ मेरी छोटी सी जमीन अभी भी है, खेत है, और हमारे परिवार ने वहाँ एक स्कूल बनाया है। मेरे छोटा भाई आर्मी में था, उसकी याद आलोक चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए, और वहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद हमारे पिताजी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, तो दिल्ली में आ गए IRI में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। वहाँ एक जाफरी में रहते थे हम लोग, उस समय तनख्वाहें बहुत कम थी, 250 रुपये में जरा करना पड़ता था पूरे महीने का, तो साधन ज़्यादा थे नहीं। कभी कभी क्या होता था कि आखिर के महीने के आखिर में, जैसा मेरे को उन्होंने बताया, मैंने समझा, मैं छोटा था उस समय, लेकिन 2-3 साल में देखना समझना याद रखना हो गया था शुरू, कि भाई लोग साइकिल के पीछे अखबार रख के जा रहे हैं, तो दुकान मालिक ने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई। हमारे पिताजी बोले कि भाई ऐसा है, इसको बेचूंगा, कुछ मेहमान आने वाले हैं कल, थोड़े पैसे मिलेंगे तो सामान लाऊंगा। तो मतलब ऐसी स्थिति भी थी, उन्होंने फिर मदद की थोड़ी सी, बोले कोई बात नहीं, आप इतना परेशान मत हो जाएगा काम। तो वहां से शुरू हुए और पढ़ना शुरू किया, फिर कानपुर गया, हमारे पिताजी का ट्रांसफर हुआ, थोड़े दिन हम उसके बीच में खुर्जा में रहे। तो उस जमाने में तख्ती पे लिखा करते थे हम लोग, तख्ती मतलब लकड़ी का एक स्लेट जैसा होता है, उस पर रोज मुल्तानी मिट्टी चढ़ानी होती है, मुल्तानी मिट्टी चढ़ा के वो सफेद हो जाएगी, उसके बाद काली स्याही से उसकी कलम बनाकर सरकंडे की लिखते थे, और कभी टीचर को गुस्सा आ जाए तो वो उसी तख्ती से पिटाई भी करते थे। तो मतलब कि ये दोनों डबल पर्पस थी, लिखने का भी काम करती थी, पिटाई का भी काम करती थी।
3: पर और मुझे लगता है आपको कभी पिटाई पड़ी नहीं होगी, क्योंकि आप बड़े अच्छे और क्या होता है ना, स्टूडेंट लगते हैं।
4: एक बार क्या होता है, टीचर जब एक तरफ से मारना शुरू करते हैं ना, तो वो एक तरफ से सभी बच्चों को शिकायत सजा देते हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं, आप कौन शोर कर रहा है ये नहीं देखते ना, इतना ध्यान कहाँ देते हैं, तो टाइम भी नहीं होता है।
3: गेहूं के साथ घुन भी पिस गया।
4: तो वो हुआ जमाना, वहां पर तख्ती और प्लेट जो है टूट जाती है ना, किसी बात तख्ती टूटती नहीं। मेरा मतलब कहने का यह है कि उस जमाने में हमको बताना नहीं पड़ता था सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, टिकाऊ जीवन क्या होता है। बड़े मेरा बड़ा था तो मेरे कपड़े छोटे हुए तो छोटे वाले के काम आ गए, छोटे वाले के हुए तो उसके तीसरे कपड़े के काम आ गए। कभी ये नहीं होता था ये उतरन है ये क्या है, जब तक कोई भी चीज बिल्कुल क्षीण ना हो जाए उसका इस्तेमाल करते थे। हम लोगों को सिखाया गया था बचपन में से ही झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना है, तो मतलब कि घर के सभी काम करना जरूरी है।

0: दो काम करता था, एक तो चित्रकारी करता था, चित्र बनाने का शौक था वो बनाता था, और लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो मान रहा कि माँ बाप सोचते थे छुट्टियों में सब घर आते हैं तुम क्यों नहीं आते, मैंने कहा मुझे इतना कुछ पढ़ना है कैसे पढ़ूंगा मैं, टाइम ही नहीं मिलता है, कॉलेज के दिन होते हैं तो क्लासेस होती हैं, अब मेरे पास 2 महीने हैं, मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, कविता पढ़नी है, जीवनियां पढ़नी है लोगों की जिन्होंने जीवन में कुछ किया। तो उसका मुझ पर काफी प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि पढ़ने का शौक होने से क्या होता है, और हमारे माता जी पिताजी का भी काफी शौक था, वो साइंटिस्ट थे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गुप्ता, हमारी माता को बहुत शौक था सिलाई कढ़ाई का, सिखाती थी सबको, तो एक अपने ज्ञान को बांटने का माहौल मैंने देखा अपने आसपास। और उसका फायदा ये हुआ कि जब किताबों का शौक हो जाता है किसी को, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आमदनी का कम से कम 10% आप किताबों में लगाएं, किताबें खरीदें, घर में लाइब्रेरी बनाएं, पुस्तकालय बनाएं, तो फिर और किसी चीज का शौक नहीं होता, और किसी चीज का अभाव आपको महसूस नहीं होता। मेरे घर में सोफा नहीं है, 2 छोटी-छोटी सी सेटिंग है, 4 पलंग जैसे हैं, उसमें लोग आके बैठ जाते हैं, तकिए रखे हुए, भाई बैठो उस पर काम करो। मेरे पास 4 कुर्सी हैं जो मैंने 1975 में खरीदी थी, वो आज भी मेरे पास है, मेरा काम चल रहा है उन कुर्सियों से। तो मतलब है कि किसी को आपकी इज्जत आपके पास क्या है, साधन भौतिक उससे तो नहीं होगी ना
1: जी,
0: आपकी इज्जत आपके विचारों से होगी, आपके काम से होगी। तो मेरा अभिप्राय ये है कि आजकल बहुत सारा समय और साधन लोग भौतिक चीजों की तरफ लगा देते हैं, और उससे क्या है कि मैं कहा करता हूँ कि एक दिमाग में थिंग्स और थॉट के बीच में स्ट्रगल होता है। यू कैन एक्सपैंड द स्पेस फॉर थिंग्स, स्पेस फॉर थॉट्स गेट कंस्ट्रक्टेड। जब सामान की जगह बढ़ती है तो विचार की जगह घटती है, सामान को घटक देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरे बाबा वानप्रस्थी थे, आर्य विरक्त वानप्रस्थ आश्रम में ज्वालापुर में हरिद्वार के पास रहते थे, तो जब छोटे थे तो उनके पास जाया करते थे गर्मी की छुट्टियों, और उनसे मैंने काफी प्रेरणा ली। उनका सारा सामान एक खड्डी में आ जाता था, एक झोरा जो कंधे पर टंगता है, ये थोड़ा सा सामान होता है, थोड़ा पीछे उनके हवन के सामान चीजें होती थी, हवन की सामग्री वगैरह, हवन कुंड, तो वो रोज हवन करते थे, मेरे माता पिता ने रोज किया, मैं रोज करता हूँ पिछले बहुत सालों से। तो क्या होता है कि उसमें आपका सुबह जब आप शुरुआत करते हैं अपने दिन की, मैं तो 4:30 बजे उठ जाता हूँ, पहले अपने कुत्ते की शक्ति को घुमाता हूँ, फिर मैं घूमने जाता हूँ। तो मैंने ये महसूस किया है कि जीवन को शुरुआत जो है हर दिन की धन्यवाद आभार के साथ हो, अगर ईश्वर तूने मुझे बड़ा अच्छा मौका दे दिया, अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा जीवन तो अच्छा होगा लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं उनको भी मौका मिले आगे बढ़ने। हम कभी भी दूसरों को बढ़ाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा मेरा मानना है। फिर मैं आया दिल्ली में, बैंक में रहा मैं 1973 से 1978 तक, इसलिए बैंक में था, बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। और क्या होता था कई बार बैंक में बुजुर्ग आते थे किसान, वो बैठते नहीं थे कुर्सी पर, क्योंकि आप अफसर हैं, तो मैं भी खड़ा होता था। मैंने कहा अगर आप खड़े हुए हैं तो मैं भी खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकता आपके बुजुर्गों के सामने। तो वो लोग बहुत मानते थे इस बात को कि कैसा अफसर है ये तुम, लेकिन उससे मेरा काम आसान हो गया कि भाई ये आदमी इज्जत करता है। तो कई लोग जो नहीं देते थे समय पर, मैं उनसे अनुरोध करता था भाई आप देखो अच्छी बात तो नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करते रहो, जितना सामान है उतना देते रहो, बाकी बाद में हम बढ़ा देंगे समय की सीमा को। तो मुरादाबाद में था मैं, अमरोहा में था, वो इलाका बड़ा बदनाम है, लेकिन बाकी जो लोग थे वहाँ पर, वहाँ के जो अपराधी वर्ग के लोग थे वो भी मेरी इज्जत करते थे कि आप गरीबों के लिए मदद कर रहे तो हम आपको क्यों नुकसान करेंगे। तो मतलब मेरा ये है कि मैंने मर्यादा के वो रूप देखे हैं कि जिसको शायद मानना आदमी आम व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि जो अपराधी हैं जो जेल में थे छूट कर आए हैं पैरोल में, वो कैसे आपकी परवाह कर सकते हैं। तो वे क्यों नहीं कर सकते, हर एक के अंदर एक अच्छा इंसान होता है जो शायद इंतजार कर रहा होता है एक मौके का कि जिसमें उसको फलने का फूलने का अपनी बातों को कहने का मौका मिले। तो थोड़ी सी जगह मिलती है तो वो व्यक्ति उसका व्यक्तित्व बाहर आ जाता है। तो बैंक में मैंने काम किया बहुत साल तक और देखा कि बैंक से कितनी दूरी है इस पर निर्भर नहीं करता है, भौतिक दूरी नहीं महत्व है, सामाजिक दूरी का महत्व है। क्योंकि मैंने देखा शहर के आसपास भी बहुत से गाँव में ऐसे लोग थे जिन तक कोई सुविधा नहीं पहुंची थी, तो उनके लिए काम किया। फिर मैं दिल्ली में आ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट है एक रिंग रोड पर, इंजीनियर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ 3 साल रहा, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट था बड़ा अच्छा, जोधपुर, कर्नूल और महेंद्रगढ़, रामनाथपुरम, तमिलनाडु में, बंगाल में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नूल भी था उसमें, और इस तरह से पूरे, और गुजरात में पंचमहल था, तो अलग अलग राज्यों के पिछड़े हुए जिले लिए ताकि वहां पर प्रबंधन की स्थिति सुधारने में युवा लोग कुछ काम कर पाए। तो मैं तो उस समय बहुत ही बात, और वहां उस समय के अंदर 23-24 साल की उम्र में 25 साल

0: की उम्र में हमने कोशिश की, अध्ययन किया, रिसर्च किया और वहाँ 3 साल में रहा। लेकिन मैंने उस दौरान में मेरा जो डिग्री है वो बायोकेमिकल जेनेटिक्स की है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, और मुझे जाना था अब इकोनॉमिक्स की तरफ, अर्थशास्त्र की तरफ। तो मैंने तो कोई पढ़ा नहीं था, तो पढ़ा उसको, खूब पढ़ा और वहाँ पर काफ़ी शोध किया कि सूखाग्रस्त इलाकों में जहाँ बारिश कम होती है वहाँ के इलाकों में विकास की क्या संभावनाएं पैदा की। उस दौरान मेरी रुचि पैदा हुई उन समाधानों की तरफ जो लोग अपनी सूझबूझ से पैदा करते हैं इतनी मुश्किल जगह पर, रेगिस्तान के अंदर या सूखे क्षेत्रों में किस तरह से लोग जीते हैं, किस तरह से पशुपालक, कारीगर और बाकी लोग। खेती तो 3 साल तो बारिश होती नहीं है, कभी कभी 1-2 साल के अंदर वो 5 साल के लिए कैसे जीते होंगे। कर्जा बहुत हो जाता है उनके ऊपर, बहुत तकलीफें होती हैं। उनको समझा, बल्कि मुझे याद है 1975 में मैं कड़पा में था, आंध्र प्रदेश में बैंक में जब था, तो एक जिला, एक गांव था रमनापल्ली, जिसको कि ऊंची जाति के लोगों ने जला दिया था, छोटी जाति घरों को। मेरा काम था उनका पुनर्वास करना। तो उन अनुभवों से मैंने सीखा कि जब एक व्यक्ति बिल्कुल बर्बाद सा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर उस गुस्से को कैसे एक नई दिशा दी जाए ताकि वो सृजनात्मक और सकारात्मक बन जाए, बजाय इसके कि वो बदला लेने की बात सोचता रहे, वो अपने जीवन को आगे बढ़ाए। और जो हुआ है वो तो गलत है ही, उसका तो समाधान होना चाहिए, लेकिन हम हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठ सकते ना, खाना तो खाना पड़ेगा। तो जीविका के साधनों के लिए हमने उनकी मदद करी। वो जमाना था जब और भी आंदोलन चल रहे थे देश के अंदर, 1974 की बात है ये, तो जयप्रकाश नारायण का नवनिर्माण मूवमेंट विश्व में शुरू हुआ था, वो टोटल रिवॉल्यूशन का जो आंदोलन था, और उसके बाद इमरजेंसी लग गई थी जिस समय मैं उत्तर प्रदेश में था 1975 के अंदर। बहुत संघर्ष का समय था वो, लेकिन ईमानदारी से काम करने के लिए मौका ढूंढा और मौका मिला मुझे। फिर मैं वहाँ से IIT आया, IIT से मैं IIM में आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अहमदाबाद में 1981 में, और 81 से लेकर 2017 तक मैंने वहाँ पढ़ाया, अभी पढ़ाता हूँ, लेकिन निवृत्त हो गया मैं 17 में। और IIM के अंदर ऐसे लोगों के लिए जगह बनाना जो गाँव से आते हैं और कारीगर हैं, कपड़े भी ठीक नहीं होते हैं उनका, वो सब करने में सहयोग बहुत मिला संस्थान की तरफ से भी, मेरे साथियों की तरफ से भी। लेकिन एक बात साबित की हमने कि जो लोग आर्थिक रूप से गरीब होते हैं वो दिमाग से गरीब नहीं होते। मेरी जो किताब है उसका जो टाइटल है उसमें लिखा है, ग्रास रूट इनोवेशन की जो किताब है ये, उसमें लिखा है माइंड ऑन द मार्जिन आर नॉट मार्जिनल माइंड। तो मतलब कि जो सीमांत के दिमाग हैं, जो गरीब हैं, सोचने में थोड़ी गरीब होते हैं। ये ऐसा सत्य था जिसने जीवन की दिशा बदली और मुझे लगा कि ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। तो हमने बांग्लादेश गया, मैं 85-86 में बांग्लादेश में, 85-86 में, वहाँ पर गरीबी बहुत थी लेकिन सृजनशीलता भी बहुत थी। तो वहाँ से आने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल उठा, भाई अनिल कुमार गुप्ता तुमको बहुत सारा पैसा मिला, मैं वहाँ $1 में मुझे कंपनसेशन मिलता था, एक कंसल्टेंट के रूप में था, और जो मेरे साथी थे उनको तो $1 के अंदर पूरा दिन गुजारना पड़ता था, 28-30% उनकी तनख्वाह थी एक दिन की। लेकिन बहुत मेहनत की उन साथियों ने और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला उस समय। तो मैंने बोला ये जो सम्मान मिला है ये किसके लिए मिला, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ इसलिए मिला, या इसलिए मिला कि जिन लोगों के काम के बारे में मैंने लिखा, शोध किया, जिन पर जिनकी मदद करने के लिए नए नए कार्यक्रम सोचे, उनकी प्रतिभा इतनी अच्छी थी कि उसके लिए सम्मान मिला। अगर उनकी प्रतिभा की वजह से मुझे सम्मान मिला तो मेरी तनख्वाह, मेरी आमदनी का कितना हिस्सा उनके पास गया। तो इनकम टैक्स रिटर्न उठा लो, बाकी चीजें उठाई तो देखा कि कोई लाइन तो ऐसी है नहीं जिससे पता चले कि इतनी आमदनी हुई और इतनी आमदनी आपने उन लोगों को दी जिनसे आपने सीखा था। तो ग्लानी हुई कि भाई शोषण के बारे में मैं शोध करता हूँ, जो साहूकार है वो कर्जा देके शोषण कर रहा है, जो व्यापारी है वो भी शोषण कर रहा है, जो जमींदार है वो भी शोषण कर रहा है, तो मैं कौन सा अलग हूँ, मैं विचार की दुनिया में शोषण कर रहा हूँ। अब जब आप सोचते हैं कि आप एक शोषक हैं जबकि आपका सारी दुनिया, सारी जीवन आपका समाजवादी रूप में रहा हो, तो बड़ी ग्लानी होती है ना भाई। उस ग्लानी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर ये संकल्प आया मन में कि एक दिन शायद घर जाते वक्त मैंने देखा एक मधुमक्खी को, तो मन में ये कल्पना जागी कि अगर मधुमक्खी की तरह से हमारा व्यवहार हो जाए, एक फूल को फूलों को दूसरे फूलों से जोड़ती है, परागीकरण करती है, प्रकृति को संपन्न करती है, शहद बनाती तो सारा अपने पास नहीं रखती, कुछ हमसे बांटती है, क्यों ना हम ऐसे लोगों को जोड़ें जिन्होंने कुछ अपनी तकलीफों के बावजूद, अपनी कमियों के बावजूद, गरीबी के बावजूद कुछ ना कुछ विकल्प ढूंढा है, लेकिन वो अकेले अकेले हैं, एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए। तो ऐसे ही लोगों को ढूंढना और उनको एक दूसरे से जोड़ने का काम हमने हनीबी नेटवर्क में शुरू किया। और ये काम जब शुरू किया तो लोगों को लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ इतनी गरीबी है, तो उसका मतलब अगर इतना दिमाग होता तो गरीब क्या है। वो ये नहीं सोचते थे कि किसी के पास अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन विकल्प को बढ़ाने के लिए कोई संस्था का ढांचा नहीं था, देश में भी नहीं था, दुनिया में भी नहीं था। तो धीरे धीरे आगे बढ़े, 1993 में सृष्टि की स्थापना हुई, एक संस्था बनाई हमने, सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो टिकाऊ मर्यादाएं और तकनीकों को जोड़कर और जैविक विविधता का सहारा लेकर कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए कल्पना की। फिर 1997 में हमने कॉन्फ्रेंस की, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एट ग्रासरूट, ICCIG.org पे सारी रिपोर्ट दी हुई है, आयन ने की 1997 में। उसके बाद हमने निर्णय लिया गुजरात सरकार के साथ मिलकर ज्ञान बनाया, गुजरात ग्रासरूट इनोवेशन ऑगमेंटेशन नेटवर्क। इसका काम था, एक त्रिकोण है इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और एंटरप्राइज का, यानी कि निवेश उनके पास नहीं है, नवसर्जन उनके पास है, नवाचार उनके पास है, लेकिन कई बार लोगों के पास उद्यमी बनने की क्षमता भी नहीं है, ना कौशल है। क्योंकि उद्यमी क्या करता है, वो बैच बाय बैच हर बार बार एक ही चीज को बार बार बनाता है, लेकिन जो नवसर्जक होते हैं ना, वो कोई भी दो चीज एक जैसी नहीं बना सकते। तो एक तरीके से नवसर्जक जो है वो भी कलाकार है, वो हर बार कुछ ना कुछ संशोधन करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ संशोधन करते हैं। लेकिन उद्यम के लिए बड़ा जरूरी है कि आप डिजाइन को स्थिर करते हैं और एक हर एक को एक जैसा डिजाइन मिलना चाहिए, नहीं तो किसी को लगेगा उसको तुमने ये फीचर दिया था, मेरे में तो है नहीं ये, तो मेरे का तुमने इसका मतलब मेरे से ज्यादा पैसा ले लिया है, मुझे सही चीज नहीं दी। अब कैसे बताएं कि उस समय दिमाग में बात नहीं आई थी, बाद में आई है दिमाग में बात। तो इसलिए नवसर्जक के लिए, नवाचारी के लिए उद्यमी साथी ढूंढना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग हैं जो अच्छे उद्यमी बन गए, काफी लोग नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग करोड़पति बन गए, मनसुख भाई प्रजापति हैं, जिन्होंने मिट्टी का फ्रिज बनाया, तवा बनाया, बर्तन बनाए, बोतल बनाई, बीसियों देशों में उनका माल गया है, बहुत संपन्न हो गए वो, बहुत बड़ा काम हो गया। कभी कभी रेडी पे चाय बेचते थे वो, और जब हमने मदद की थी, बड़े कर्जे में थे वो उस समय, 1998 की बात है, और ज्ञान ने उनकी मदद की तो आज वो करोड़पति हो गए। ऐसे ही भी लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत प्रगति की, लेकिन मैं सच में कहूं तो ऐसे लोग हजारों में होंगे, और ऐसे लोग जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली वो लाखों में है। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सबकी जिंदगी हम बदल पाए, लेकिन कोशिश जारी है।
1: लेकिन कुछ तो बदलाव हुआ होगा, बिल्कुल शून्य थे, शून्य से कहीं तो पहुंचे
0: हुआ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2000 में हमने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मदद से और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। तो जब NIF बन गया तो NIF के पास थोड़े ज्यादा साधन आए, सरकार की तरफ से 20 करोड़ का कॉर्पस था, और हमने तय किया था कि किसी भी नवाचारी को आप ऑफिस में नहीं बुलाएंगे, ये ज्ञान में हमने कल्पना हमने मर्यादा बनाई थी, आप उनके घर पर उनको सुविधा देंगे, किसी को आप ऑफिस में बुलाकर फॉर्म नहीं भरवाएंगे, आप खुद जाके उनके फॉर्म भरेंगे अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए थी। तो एक ऐसी व्यवस्था बनी जिसमें सभी साथियों ने समझा कि तो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उन्होंने एक समस्या का समाधान कर दिया, हमको बता दिया, उनका काम हो गया, अब हमारा काम शुरू हुआ है। तो ऐसी विचारधारा के साथ लोगों ने बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत की, और 600 जिलों से देश के बहुत सारे उदाहरण लाखों में NIF में आए। लेकिन जैसा होता है कभी कभी सरकार का हिस्सा बनने के बाद थोड़ी सी जड़ता आ जाती है। कोशिश की, जब तक मैं था 18 साल में वहां रहा, डॉक्टर मशेलकर उसके अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, और डायरेक्टर रहे लास्ट में डॉक्टर भूपेन थे, उसके बाद अभी डॉक्टर राणा रहे। तो काफी हरेक ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उसको आगे बढ़ाने की, और आज भी बहुत पूरे देश में इनोवेशन यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन ज्ञान जिसके मॉडल को हमने NIF में बनाया था, उसका जो मॉडल था उसको हमने रखा कि नवसर्जन सिर्फ स्थानीय क्षेत्र के लिए नहीं होता, पूरी दुनिया के लिए। हम G2G मॉडल बोलते हैं, आप B2B B2C बोलते हो ना भाई, तो हमने कहा G2G यानी ग्रासरूट टू ग्लोबल। तो यूएनडीपी के साथ मिलकर ज्ञान में मेरी साथी हैं डॉक्टर अनामिका दे, हम दोनों ने कोर्स पढ़ाया 115 देशों में 91 लैब हैं उनके साथ मिलकर, कि कैसे ढूंढा जाए दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी छूतबूझ से कुछ काम किया, एक वैश्विक आंदोलन बनाया इसका हमने। और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि हमको हजारों ऐसे अनुभव मिले पूरे देश के, पूरी दुनिया में, जिसमें लोगों ने बहुत साधारण सी शिक्षा के बावजूद बहुत असाधारण सा काम किया था और क्या कर रहे हैं अभी भी। तो बस यहीं तक मैं अभी छोड़ता हूँ बात को, कि हमने एक आंदोलन शुरू किया। अभी हम लोग काम कर रहे हैं बारामूला कश्मीर में, सिक्किम में, वेस्ट सिक्किम में, और किफरे जिला है नागालैंड में, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो महिलाएं हैं उनको जैविक साधनों के पारंपरिक ज्ञान को आधार बनाकर नए नए उद्यम लगाने के लिए, बायो एंटरप्राइज लगाने के लिए, क्योंकि समाज में दोनों तरह का ज्ञान है, नवसर्जन भी है पारंपरिक ज्ञान भी है, लेकिन पारंपरिक ज्ञान को अब हम भुलाते जा रहे हैं। जितना क्षरण, जितना नुकसान हमारी ज्ञान की विरासत को इस पीढ़ी में हुआ है, आपकी पीढ़ी में शांतनु, इतना पिछले 5000 साल में नहीं हुआ। क्योंकि अभी क्या है कि जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, और पोते पोतियां हैं, नातियां हैं, उनके बीच में संपर्क कमजोर हो गया, और ज्ञान का प्रभाव तो उनके बीच में होता है, बुजुर्गों से बच्चों के पास जाता है, तो वो संबंध कमजोर होने के कारण बहुत सारा ज्ञान अब नई पीढ़ी के पास है ही नहीं। तो आपके बच्चों से पूछें, भाई जुकाम सर्दी हो जाती है तो क्या करते थे तुम्हारे दादा या दादी, शायद उनको नहीं पता होगा ना, लेकिन ये बात जाननी जरूरी भी तो है। तो भाई नाक से ही आप पानी पी लीजिए तो आपकी नाक साफ हो जाएगी, सरसों का तेल लगा लीजिए तो आपका नाक साफ हो जाएगी। हम बड़े बड़े महंगे महंगे इलाज करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अब बुजुर्ग हैं, उनको प्रोस्टेट है, तो भाई भुट्टे के ऊपर जो बाल होते हैं उसकी चाय पी लो। तो ऐसे साधारण तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे। मैं हमेशा अपने साथियों से कहता हूं और जो आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि अपने आसपास दो तरह की चीजें ढूंढिए, एबंडेंट और एबंडेंट, यानी ऐसे साधन जो बहुतायत में उपलब्ध हैं और ऐसे साधन जिनको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। मसलन कि मैंने बताया कि भुट्टे के ऊपर मक्का के अंदर मक्का के ऊपर टैसल है जिनको आप फेंक देते हैं, उनका कोई प्रयोग नहीं करते, लेकिन उनको क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी दवाइयां बनाने के लिए? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया अभी, अरे भाई उसकी चाय पी लो, जासूस का फूल है उसकी चाय पी लो। तो मतलब बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हैं जिनसे हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, प्राकृतिक संपदा को भी विकसित कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं, और कम खर्च में अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं कंजूस हूँ, मुझसे मैं खर्च नहीं करता हूँ ज्यादा, क्योंकि मैं समझता हूँ कम से कम साधनों में जीने की आदत होनी चाहिए हमारी।
1: ये आपने जैसे एक महामंत्र दे दिया कि अगर आपको जीवन में कोई चीज की कमी महसूस ना हो, इसके लिए कम से कम चीजों का इस्तेमाल करने का, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा महामंत्र दिया आपने। दोस्तों मैं समझता हूँ ये महामंत्र मैं और आप आज अपने जीवन में नोट करेंगे और इसको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अनिल जी, आपकी कहानी जब मैं सुन रहा था तो मुझे एक ऐसे हीरो का किरदार नजर आ रहा था जिसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है। जब आप कहते हैं कि बचपन में एक समय था जब आपने बहुत अभाव देखा, लेकिन फिर एक समय आया जब आपके पास चुनाव करने का मौका था कि आप अपने लिए अच्छे से अच्छा, बेहतरीन, उम्दा, पैसा कमाने जैसा कोई एक फील्ड आप चूज कर सकते थे, लेकिन आपने चुना कौन सा फील्ड जहां पर मेहनत है। और आपके जो आसपास में आपके दोस्त रहे होंगे, जो आपके साथ में आपके कक्षा में, आपके कॉलेज में जो आपके साथी रहे होंगे, उन्होंने ऐसा कोई फील्ड चुना होगा, या जिस दौर से आप आए हैं उस दौर में भारत में या कहें जो एशियाई देश हैं उनमें औद्योगिकरण और टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो ये एक धुन सी रह गए कि यू नो एक टेलीविजन का आना, टेलीविजन में फिर एडवर्टीजमेंट्स का आना, उसको देखा देखी उनके जैसा बनना है, द अमेरिकन ड्रीम का गाना सुनते रहना, इन सब चीजों की वजह से आपने समाज को बनते बिगड़ते, ढलते सुलझते सब कुछ करते हुए देखा है। आपने खुद को कैसे बांध के रखा है इसमें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब आसपास की चीजों को बदलते हुए देखता है तो वो भी बहक सकता है या वो अपने ध्येय को छोड़कर के कुछ नया ध्येय तैयार कर सकता है। खुद को पकड़ के रखना अपने ध्येय के साथ, इसका क्या मंत्र यूज किया आपने?
0: मेरी पत्नी साधना थी, अभी तो नहीं रही, वो दो साल पहले चली गई, लेकिन उनका बड़ा सहयोग मिला मुझे क्योंकि वो बहुत सादी थी और सच्ची थी। तो एक उदाहरण देता हूँ क्या हुआ, हमारा छोटा बच्चा जो है प्रयास और आभास, मैं एक बात बताना भूल गया आपको, मैंने अपने बच्चों को अपना सरनेम नहीं दिया। तो मेरे बच्चों को मेरा मेरी जाति सूचक नाम नहीं दिया उनको, तो वो प्रयास अभिनव और आभास अभिनव उनका नाम है। क्योंकि आज से बहुत साल पहले 45 साल पहले हमको लगा, हम और साधना एक बारी बैठे थे जब बच्चे हमारे होने वाले था, हमने कहा भाई ऐसा है कि कभी कुछ बन गए अगर, उस समय तो पता नहीं था, साधारण से व्यक्ति थे, बैंक में नौकरी कर रहे थे, अगर कभी कुछ बन गए हमारे बच्चों को हमारे जीवन से कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, हमारे नाम से कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, तो उनको अपना नाम नहीं देंगे, वो अपना जीवन स्वयं बनाएंगे और अपने रास्ते पर अपने आप चुनेंगे और अपने आप चलेंगे, ये निर्णय हम दोनों ने किया। तो एक उदाहरण याद आ रहा है कि मेरा छोटा बच्चा जो है प्रयास, जो जब छोटा था स्कूल में, तो एक दिन बोला मुझे लूना चाहिए, वो जो तो वो गाड़ी वो साइकिल चाहिए स्कूल जाने के लिए, तब तक वो बस में जाता था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बस में। मैंने बोला तुम्हारा दोस्त कौन है सबसे ज्यादा, तो बोला जोसेफ है, वो भी ले रहा है क्या लूना, बोला वो तो नहीं ले रहा है। तो लूना लोगे तो ऐसे लोगों के साथ जाओगे जिनके पास गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल मतलब साइकिल होगी, मोटरसाइकिल जैसे काइनेटिक होती है आजकल, और बस में जाओगे तो तुम्हारा दोस्त साथ में जाएगा, तुम चुन लो तुम्हें दोस्त के साथ जाना है या लूना वालों के साथ जाना है। तो उसने तय किया कि मैं जोसेफ के साथ जाऊंगा, उसने नहीं खरीदी वो साइकिल, पैसे थे मेरे पास मैं अफोर्ड कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा उसको अपने आप तय करना चाहिए कि उसको किस चीज को महत्व देना है। एक दोस्त जो नहीं खरीद सकता,
1: जो कहानी आपने सुनाई, इस कहानी के पीछे मुझे एक चीज दिखता है कि एक स्वावलंबिता है, एक आत्मनिर्भरता है जो आप में आपके परिवेश और संस्कार ने एकदम आपके रग रग में बैठा दी। लेकिन आज जब आप देखते हैं युवाओं को जिनके हर एक के हाथ में, मेरे हाथ में भी मोबाइल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 24 घंटे में कितने ही घंटे हमारे हाथों में मोबाइल होता है और कितने ही ऐसे उपकरण आ चुके हैं हमारे चारों तरफ जो हमको हमारे दोस्तों के बारे में, फेसबुक में शायद बहुत सारे दोस्त होंगे लेकिन वास्तव जीवन में कितने दोस्त हैं इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में आपके पास ऐसा कौन सा, जैसे आपने प्रयास जी के लिए एक बहुत सुंदर रास्ता निकाला कि आप अपने दोस्त के साथ जाना चाहेंगे या गाड़ी वालों के साथ जाना चाहेंगे, एक आपने एक बहुत सुंदर सवाल ढूंढ के निकाला जिसने उसे मजबूर किया कि वो सोचे समझे और खुद का एक निर्णय बनाए। हम जैसे युवाओं के लिए या हमारे जो भी श्रोता साथी सुन रहे हैं, हमारे लिए आपके पास कौन सा सवाल है या क्या तरीका है?
0: मैंने जैसे बताया कि जितना भौतिक सामान हम बढ़ाएंगे अपने आसपास, मोबाइल फोन है, टेलीविजन है, फिर और चार पांच चीजें हैं, और तो जितनी ज्यादा भौतिक चीजें बढ़ाएंगे उतना ही जो विचार हैं और विचारों की जो जगह है दिमाग में वो कम होती चली जाएगी। थिंग्स एंड थॉट की स्ट्रगल है, देयर इज अ फाइट बिटवीन थिंग्स एंड थॉट्स, यू एक्सपैंड थिंग्स स्पेस फॉर थॉट्स गोज डाउन, यू एक्सपैंड थॉट्स नीड फॉर थिंग्स गोज डाउन। अगर विचारों की जगह बढ़ानी है मन में, नए नए विचार आए, नई नई कल्पनाएं आए, मैं नए नए तरीके से समस्याओं का हल करूं, उनको किस तरह ध्यान लगाऊं मैं विचारों को आगे बढ़ाने में? मैं कहता हूं चार शब्द हैं बड़े मेरे दिल में, मैं हमेशा सुनाया करता हूं युवाओं को, व्यक्ति, विचार, व्यवहार और संस्कार। हमारा 90% समय व्यक्तियों की चर्चा में जाता है भाई, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ऐसा किया, मैंने वैसा कहा, सही बात है ना
1: जी?
0: तो यदि वो समय हम बचा लें थोड़ा सा और विचारों में समय लगाएं, कैसे हम कौन से काम को बेहतर कर सकते हैं, कौन सी चीज के लिए, कौन से साधन हमारे समाज में जो अभी उपयोग में नहीं आ रहे उनके लिए कुछ नवसर्जन कर सकते हैं, कैसे गरीबों के लिए, कैसे हमारे बुजुर्ग हैं उनके जीवन को आसान बना सकते हैं वगैरह, और उस विचार को अगर व्यवहार में ले आए तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वो अगर मेरा संस्कार बन जाए, संस्कार मेरी को मैंने बहुत सा अध्ययन किया शब्द का, तो मन में जो प्रतिक्रिया होती है हमारी क्रिया से वो संस्कार है, वो अंदर से डिफॉल्ट कंडीशन पैदा हो जाती है, हमें पता लग जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी से पूछना नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में युवाओं को विचार, व्यवहार और संस्कार की तरफ सोचना पड़ेगा ताकि जीवन सुंदर हो। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमने सभी देश के हिस्सों में चल के शोध यात्रा की है
1: जी। मेरा सवाल यही था कि आप शोध यात्रा के बारे में भी कुछ बताएं।
0: हर हर राज्य में चले, अंडमान से लेकर ग्रेज वैली तक, सारे राज्यों में, कोई राज्य छूटा नहीं हमसे जहां हम नहीं चले, कहीं पर दो दो बार गए। हमारी 50वीं शोध यात्रा नागालैंड में होगी किफरे में, जनवरी के दूसरे सप्ताह, दूसरे पखवाड़े में। तो शोध यात्राओं में हमने चार गुरुओं से सीखना शुरू किया भाई। ये चारों गुरु आप सबके पास हैं, मेरे पास ही नहीं है सिर्फ एक। तो गुरु हमने कहा हमारे अंदर है, जो बड़े कड़वे कड़वे सवाल उठाते रहते हैं, कोई भी काम करें सवाल पूछ लेते हैं, जरूरी है ये। तो दूसरी बात, दूसरे गुरु हैं जो हमारे आसपास हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सहपाठी हैं, और तो और जिन लोगों को हम नहीं जानते वो भी हमारे गुरु सब। तो जो तीसरे गुरु हैं हमारे, हाँ वो हैं प्रकृति, प्रकृति से सीख सकते हैं। और चौथे गुरु हैं हमारे आम लोग, जो गांव में, कस्बों में, शहरों में रहते हैं। कहने को तो आम लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास साधन ज़्यादा नहीं है इसलिए उनको कम साधनों से ज़्यादा जीवन के यापन के तरीके को ढूंढने की उनके ऊपर दबाव भी है और उनके पास कौशल भी है। तो आजकल जो फ्रूगल इनोवेशन की बात करते हैं लोग, कम खर्च में कैसे समस्याओं को हल किया जाए, इसके सबसे बड़े जनक तो वही लोग है ना जिन्होंने किया है ऐसा जीवन।
1: जैसे कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन,
0: चारों गुरुओं से
1: आवश्यकता है तो फिर उन्नत विचार आएंगे या तरीके निकालेंगे
0: आएंगे, लेकिन
1: परिस्थिति से निकलने के।
0: एक बार कहा करता हूँ और आप जो साथी सुनेंगे उनको भी मैं पूछूंगा कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने विचारों को नहीं मारा है?
1: मैंने तो मारा कई बार, मुझे ऐसा लगता है हम में से।
0: मैं ये सोचता हूँ शांतनु कि क्या कारण है कि सब के सब हत्यारे हैं, सब अपने विचारों की हत्या करते हैं, दूसरों के विचारों को कैसे बढ़ाएंगे? तो मतलब ये है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये विचार मैं पूरा नहीं कर सकता, इसका पालन नहीं कर सकता तो मुझे इस रास्ते पे नहीं चलना। मैं दिखाता एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। क्या हुआ, वीरमपुर में थे हम, पालनपुर के पास तक, नॉर्थ गुजरात में। बहुत साल की बात है, 25-30 साल की बात। हमारे साथ जयंती भाई थे, इसरो के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक और फिल्म बनाने वाले। तो करीब भाई एक जड़ी बूटियों के ज्ञाता हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते थे उनका काम था, लेकिन पौधों के बारे में बहुत जानते थे। तो उनके ऊपर एक फिल्म बनानी थी छोटी सी, बातचीत के बीच दौरान तो उनको कहा एक पत्थर पे आप बैठ जाइए, एक चट्टान पे मैं बैठ जाता हूँ। बालाराम जैसोर सेंचुरी जो है रीच की, बियर की, उसके बाहर बैठे थे हम। तो कैमरामैन ने क्या किया, एक छोटी सी डंडी तोड़ी पौधे की, सड़क के किनारे बहुत सारे पौधे थे, निंदामण जो थे खरपतवार, और उनको बोला आप उसको हाथ में पकड़ लीजिए अच्छा लगेगा। करीब भाई नाराज हो गए। अब मैंने कहा क्या हुआ, बोले इसकी जरूरत थी क्या हमको, आप मुझे कहते थे मैं बैठ जाता पौधे के पास, बैठ जाता पत्थर की जगह और उसको हाथ से पकड़ लेता अगर आपको मेरे का हाथ में पत्थर पत्ता ही पकड़ना आता था। तो मेरे मुंह से एक वैसी गलती बात निकल गई जिसका मुझे आज भी दोष दुख है। मैंने कहा करीम भाई क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, इतने सारे पौधे तो हैं सड़क के किनारे, गंडी तोड़ ली तो क्या हो गया? बोले क्या कहा आपने, इतने सारे, प्रकृति में कोई भी चीज आवश्यकता से ज्यादा नहीं होती है।
1: अरे ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सही बात है।
0: एकदम चकित रह गया क्योंकि मेरी आदत थी पहले कि कभी लॉन में बैठा हूँ तो घास का तिनका तोड़ लिया मुंह में डालना पड़ा, कभी झाड़ी के पास खड़ा हूँ तो पत्ते तोड़ के हाथ में मसलने लगा, बिना बात के ऐसे।
1: तो ये तो हम में से कई करते होंगे। सर हिला रहे होंगे।
0: जैसे ही मैं पत्ता तोड़ता हूँ हाथ में, करीम भाई सामने दिखते हैं, जरूरत थी इसकी, क्या तोड़ा है इसको, अब मेरे से मेरी आदत छूट गई। तो मतलब मेरा ये है कि प्रकृति से सीखना भी संभव है, ये सिद्धांत की प्रकृति में कुछ भी ज्यादा नहीं होता है। हमको अगर ज्यादा लग रहा है तो हमको हमको समझ में नहीं आया कि कौन सी चीज की क्या स्थिति है, क्या उसकी उपयोगिता है, वो हमारी अज्ञानपन है, लेकिन प्रकृति में कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं होती है।
1: इस कहानी में मैंने चारों गुरु के दर्शन कर लिए। आपने एक व्यक्ति के से जो बात सीखी वो आज तक भी आपके ऊपर आपको अच्छे संस्कारों में ढाल रही है। प्रकृति के बारे में जो आपने सीखा वो भी आपको प्रकृति के साथ एक अच्छा व्यवहार निभाने के लिए प्रेरित करती रहती है। लेकिन जब आज का हम दौर देखते हैं जहां पर जैसे आपने कहा कि अगर बहुत ज्यादा आपके पास वस्तु है, सामान है, थिंग्स है, तो थॉट्स के लिए, विचारों के लिए जगह नहीं होती, या यूं कहें हम समय नहीं निकालते अपने विचारों की पालना करने के लिए। विचार तो चलो हम कई क्रिएट कर भी रहे होंगे, रच भी रहे होंगे, लेकिन उन विचारों को, उनमें पानी देना, उनको सींचना, उन विचारों को बड़ा करने का जैसे एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, उस प्रक्रिया को हम नहीं ध्यान देते। और ऐसे में आ गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर जो पहले समझिए अगर कोई 10% सोचता था, आज वो 1% भी नहीं सोचना चाहता। क्यों? क्योंकि वो कुछ 2-4 शब्द लिख देता है एआई में और एआई उसके लिए सारा काम कर देता है। मैं किसी एक सभा में गया हुआ था, उस सभा में अंतर्राष्ट्रीय सभा थी और उस अंतर्राष्ट्रीय सभा में एक अंतर्राष्ट्रीय लीडर ने, एक नेता ने एक भाषण पढ़ा। उसका खुद का भाषण था, वो उसका कीनोट स्पीच था। और उस स्पीच को देने के बाद उसने बोला, ये मैंने एआई से निकाला है। अब आप समझो मेरे में और एआई में कोई फर्क ही नहीं है, आपने तो उसमें भी ताली बजाई जब मैंने सुनाया। तो ऐसे में अनिल जी, मुझे आपसे जानना है कि आपको कहीं पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है हमारा समाज किस तरफ जा रहा है?
0: देखिए, ऐसा है कि मैंने तो चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल किया है, टेस्ट किया है। ये बहुत बड़ी भूल होगी यदि कोई सोचेगा कि क्या एआई से हम व्यक्ति का विकल्प ढूंढ लेंगे। ये संभव नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आईआईटी में कोर्स पढ़ा रहा था मेरे साथी है, वहां पर एक चक्रवर्ती इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर में, तो हम लोग डिजाइन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का कोर्स पढ़ा रहे थे दोनों मिलकर। बहुत सारे स्टूडेंट थे, 250-300। कोविड का टाइम था, ऑनलाइन कोर्स था। तो एक दिन मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ आपके घर में ठंडा खाना कौन खाता है? ये सवाल आप चैट जीपीटी से पूछेगा और क्या जवाब मिलेगा आप देखिएगा। हैं? तो बच्चा एक धीरे से बोला, माँ खाती है। अरे भाई, तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार, माँ ने तुम्हें पैदा किया, आईटी भेजा इतनी अच्छी जगह पढ़ने के लिए और उसको खाना ठंडा मिलता है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक हफ्ते तक आप सभी बच्चे अपनी माँ को गर्म खाना खिलाएंगे और उसके फोटो भी अपलोड करेंगे जो अपने आसपास है, पहली रोटी का भी और आखिरी रोटी जो बनाएंगे वो भी माँ के लिए, उसका भी फोटो करना और फिर बताना हमको क्या हुआ आपके मन में। तो एक हफ्ते बाद हमने संजीव कपूर को बुलाया जो मास्टर शेफ हैं, देखते हैं
1: जी
0: क्लास में, और हमने बच्चों से कहा अपनी माँ को भी बुलाना है क्लास में, इस क्लास में आपकी माँ का भी स्वागत है। अब बच्चे बोल रहे हैं, वो जो चकला होता है ना जिसपे रोटी बेलते हैं, बोले उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, झुककर बनानी पड़ती है रोटी। अरे रे रे रे रे, इतने दिन से माँ बना रही थी, सिर को झोंक रही थी, कंधे में दर्द, उसके या पीछे कमर में दर्द होता होगा, वो दर्द तो महसूस नहीं हुआ आपको, अब जब खुद बनानी पड़ी रोटी एक हफ्ता तो आपको पता लग गया। ये जो पेडागोजी है, ये जो प्रक्रिया है किसी के दर्द को अपना दर्द बनाकर जीने का, समझने का, और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, माँ की बात कर रहा हूँ जो हमारे को सबसे ज्यादा प्यारी है। मेरा मतलब है कि चैट जीपीटी ऐसे सवाल नहीं उठा सकता, न इनका जवाब उठा सकता है। हमें नए तरीके से सवाल उठाने की आदत डालनी पड़ेगी, नए तरीके से मन को झकझोरना पड़ेगा, जिसमें जो पारंपरिक तरीके थे जवाब ढूंढने के, कि बाकी लोगों के जवाब ढूंढ रहे हैं और उनको कंपाइल करके दे रहे तो वो जवाब बन जाता था, वो काम चैट जीपीटी कर सकता है। तो जो पहले पूर्व अनुभव है, लेकिन ये अनुभव तो किसी ने किया नहीं ना कभी, कि बच्चों से कहो कि अपनी माँ को गर्म रोटी खिलाओ, तो ये अनुभव कैसे मिलेगा चैट जीपीटी में आपको?
1: जी, आप जैसे जिन लोगों के साथ है, जैसे विद्यार्थी है, कई बार विद्यार्थी हो सकता है आपका दिया हुआ जो होमवर्क है या जो काम है वो ऐसे एआई के माध्यम से करके ले आते हैं, तो आप उनको फर्क कैसे करते हैं कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं, ये एआई का काम है?
0: देखिए, ऐसा होता है कि एक क्रम होता है विचारों का, और वो विचारों का क्रम जो चैट जीपीटी है उसने ये मान लिया है कि जो लोगों ने कहा है उनकी बात को या उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को संवर्धित करके मुझे जवाब ढूंढना है। लेकिन हमारे प्रश्न ऐसे मौलिक होने चाहिए। तो ये जो प्रश्न है कि भाई कहीं कहीं पर जड़ता आ गई हमारे समाज में, महिलाएं जो काम करती हैं उनमें परिवर्तन बहुत धीमा हो रहा है, जो काम पुरुष करते हैं उनमें तेज हो रहा है, जो काम कारीगर कर रहा है, जैसे मैं खद्दर पहनता हूं तो खद्दर के जो करगा है उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है ना, उन क्षेत्रों में कैसे संशोधन लाना है, नव सृजन लाना है, नव सृजन का काम चैट जीपीटी नहीं कर सकता। ये जो हो चुका है उसकी समरी बना सकता है।
1: ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगा अनिल जी, की कुछ विद्वान जैसे आप आज भी इंसानों के जो काबिलियत है उस पे पूरा पूरा भरोसा रखते हैं, क्योंकि जहां तक नई तकनीक जब भी आती है तो एक उसके प्रति डर कहें या अतिशोक्ति जो होती है डर की भी, वो लेकर के हम चलते हैं। जैसे जब फोन आया तो फोन के लिए भी लोग घबरा रहे थे, लेकिन आज घर घर में फोन है, घर घर से भी फोन, जब मोबाइल आया तो लोग मोबाइल को लेकर घबरा रहे थे, तो नई तकनीक का हमेशा कुछ ना कुछ विरोध हुआ है, चाहे मानसिक विरोध हो चाहे सामूहिक विरोध हो, हुआ है। लेकिन ऐसे समय में जब आपके जैसे विद्वान और समाज के कर्णधार जब ये सोचते हैं कि नहीं, इसमें भी हमारे लिए भला है और इसके लिए भी हमको कुछ इस प्रकार के प्रावधान सोचने होंगे जिससे कि व्यक्ति अति में ना चला जाए, वो अपने क्या कहेंगे रूट्स को, अपने जड़ों को पकड़ के रखे और फिर ऊंची उड़ान भरे। तो जो युवा वर्ग है उसके लिए अगर, या जो ऐसा वर्ग है जो तकनीकी थोड़ा सा ज्यादा जागरूक है, उनके लिए अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सबसे पहली बात ये है कि मेरा काम है बेचैनी के बीज बोना को बेचैन करना। आप सब एक दो तीन सवाल अपने आप से पूछें, अगर 24 घंटे में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जब आपको अप्रत्याशित भाव मिला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं, यानी कि आप अचंके नहीं रह गए, आप सरप्राइज नहीं फील किया आपने, तो समझ लीजिए कि वो दिन बेकार गया। आप जिंदा तो रहे, आप जिए नहीं उस दिन। पहली बात, द डे यू आर नॉट सरप्राइज यू हैव नॉट लिव्ड, यू हैव जस्ट एग्जिस्टेड। आप जिंदा रहे, जिंदा दिल नहीं रहे उस दिन आप। दूसरी बात है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे आसपास जिनमें सुधार की आवश्यकता है। आपके दादा आपकी दादी बिस्तर पे से उठ रही हैं, उनको जोर लगाना पड़ रहा है उठने में। कारण क्या है? कारण यह है कि बिस्तर की ऊंचाई सही नहीं है, उनके पैर 90 डिग्री पे नहीं है, एक्यूट एंगल बन रहा है। 90 डिग्री होगा तो उनको उठने में आसानी हो जाएगी, थोड़ा बिस्तर की ऊंचाई बढ़ा दो, थोड़ा सा उसके नीचे आधा ईंट लगा दो या तो गत्ता लगा दो या तो कुछ लगा दो, ताकि जब वो उठे उठना उनका 90 डिग्री पे होना चाहिए, 60 या से 80 पे नहीं होना चाहिए, तो उनको उठने में आसानी होगी। छोटी छोटी बातें हैं, हमारे बुजुर्ग परेशान रहते हैं लेकिन हम उसका समाधान नहीं ढूंढते। यानी कि जो अकर्मण्यता है, जो इनएफिशिएंसी है, काम करने के कौशल में जो कमी है, हम उसके साथ जीना सीख जाते हैं। मेरा तीसरा अनुरोध है कि कभी भी किसी काम में कोई कमी लग रही है, दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत के साथ जीना नहीं है हमको, उस दिक्कत को हल करना है। और मैं नहीं कर सकता हूं तो किसी और से बात करेंगे ना। इसने कहा कि सभी समस्याओं का हल व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति कर सकता है। एक बार हमने बहुत सारा डेटा स्टूडेंट से इकट्ठा करवाया एम के अंदर कि भाई हम जाते हैं शोध यात्रा में, गांव में रहते हैं, तो स्कूलों के बच्चों के लिए कंटेंट इकट्ठा करो। तो उन्होंने कर लिया हिंदी में, अलग अलग भाषाओं में वीडियो वगैरह। हमने कहा अब इकट्ठा तो हो गया, हम देंगे कैसे, वहां स्कूलों में तो कंप्यूटर नहीं है। एक बच्चा बोला टीचर के पास स्मार्टफोन तो होगा, बच्चों के पास नहीं है। मैंने कहा होगा, तो आप ऐसा करिए एक पेन ड्राइव और OTG केबल दे दीजिए। तो मैंने कभी OTG केबल का नाम सुना नहीं था। मैंने क्लास विद्यार्थी से कहा भाई ये बताओ OTG केबल क्या होता है, मैंने तो कभी देखा नहीं। बोले सर उसमें एक साइड में माइक्रो USB होता है, एक साइड में USB होता है, USB पेन ड्राइव में लग जाएगा, दूसरी साइड फोन में लग जाएगी, टीचर अपने फोन पे डेटा को लेकर बच्चों को लेसन दिखा देगा जो आपने दिया है हमको। अरे वाह। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या मैं विद्यार्थी के सामने मानने मुझे संकोच होना चाहिए कि मुझे नहीं आता इस बात को। तो जीवन में यदि हमें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो हमें मान लेना चाहिए। हमारे बच्चे कई बार सवाल पूछते हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता होता है। ज्यादातर माँ बाप टाल जाते हैं, कुछ माँ बाप हैं जो ढूंढते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उस सवाल का जवाब होगा, वो जवाब पता करते हैं, पता करके बच्चे को बताते हैं। उनका बच्चा वैज्ञानिक सोच वाला बनता है, उनका बच्चा जिज्ञासु बनता है, उनका बच्चा एक नवाचारी बनता है। अगर आप सब चाहते हैं कि आपके छोटे भाई बहन बच्चों में जिज्ञासा जागे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अंदर कौतूहल हो, उनके अंदर नया कुछ करने की भावना हो, तो उनके सवालों को आप अगर नहीं जानते हैं उनका जवाब, तो मान लीजिए कि आपको नहीं मालूम। तो बच्चे सीख जाएंगे कि कभी कभी हमें नहीं पता होता ना, तो मान लेने को हमेशा हमें उसको घुमाना नहीं चाहिए सवाल को, जवाब को। ये एक बहुत जरूरी बात है। हम अपनी कमी को स्वीकार कर लेंगे तो विकास संभव है, लेकिन कमी को छुपाएंगे तो विकास कभी भी संभव नहीं होगा ना। अगर मैं सवाल नहीं पूछूं क्लास में, अरे बच्चे क्या सोचेंगे, प्रोफेसर को इतना भी नहीं मालूम। नहीं मालूम भाई तो बताओ ना बच्चों, तुम्हें ज्यादा पता है इस बारे में, तुम लोग ज्यादा गैजेट को जानते हो। तो पता लग गया मुझे एक मिनट के अंदर, सब मेरी समस्या हल हो गई। तो कभी भी हमें समाज में बच्चों के सामने खास तौर से अपनी कमियों को, अपनी अज्ञानता को छुपाना नहीं चाहिए। अंत में कहूंगा कि संवेदना बड़ा एक सुंदर शब्द है। हम माने बराबर, वेदना माने दर्द। जब किसी का दर्द मुझे उतना ही गहरा महसूस हो जितना उसको होता है, तो वो उसका नहीं मेरा हो जाता है। संवेदना से सृजनशीलता, फिर मैं कुछ नया करूं लेकिन मेरे को प्रेरणा कहां से मिलेगी? स्वांतः सुखाय, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं मैं काम, वो किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है स्वांतः सुखाय, अपनी खुशी के लिए जब हम काम करते हैं तो हमें कोई अपेक्षा नहीं होती कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमें इनाम दे, कोई हमारे को पारितोषक दे, कोई हमारा सम्मान करे, ये कमी नहीं लगेगी जीवन में आपको यदि आपने जो काम किया वो अपनी खुशी के लिए किया। आपका परिणाम, आपको तो इनाम उसी समय मिल गया जब आपको संतोष मिला, जब आपको सुख मिला किसी की तकलीफ को दूर करके। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत है सृजनशीलता की, नवाचारों की, नए नए आविष्कारों की। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, हमें उनके उदाहरणों को अपने स्कूल में लाना चाहिए, अपनी क्लास में लाना चाहिए, अपनी बातचीत में लाना चाहिए, बताना चाहिए, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। बच्चे कोई सवाल पूछे जिसका जवाब नहीं आता तो मार कर उसके सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। और महिलाओं की जो दिक्कतें हैं उनको, महिलाएं ज्यादा सहनशील होती हैं, ये समाज का एक ऐसा चरित्र बन चुका है जिसके कारण उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए दबाव नहीं बनता समाज के ऊपर। उनकी सहनशीलता उनकी उनकी कमजोरी मान ली जाती है, ना कि उनकी ताकत। मैं समझता हूँ कि हमें किसी की भी सहनशीलता का, किसी की भी जो सब तकलीफ को झेलने की आदत है, क्षमता है, उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारी तकलीफें हैं आज महिलाओं की जिनका कोई,
1: जैसे आपने माँ का उदाहरण दिया कि वो सहनशील है, रोटी बेल रही है, उनके बैक ऑफ द नेक या उनके कंधे पे दर्द हो सकता है हाइट की वजह से, ये अगर हमने इस पे सोचा ही नहीं, संवेदनशीलता अगर हमारी शून्य हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो हम शायद उनके सहनशीलता को उनका एक रोज का एक हिस्सा समझ लेंगे और कभी उसके लिए ये जो आपने कहा कि भाई कुछ बदलाव लाना वो संभव नहीं हो पाएगा। तो ये जो आपने एक बात कही कि शोध जो है वो विचार शैली जो है वो तब जा करके आपके अंदर आती है जब आप अपने आसपास देख रहे हैं, संवेदनशील हैं, दूसरे की वेदना को समझ रहे हैं, और आपने इस वेदना को समझते हुए जो एक सुंदर यात्रा शुरू की है, शोध यात्रा, इस शोध यात्रा के कई लोग हिस्सा बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे, इसके लिए तो पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मेरा एक सवाल इस शोध यात्रा से जुड़ा हुआ है, आपके शोध यात्रा में आपने कई चीजों को ढूंढा है, कई चीजों को जाना है और भारत के कई हिस्सों पे आप गए हैं, क्या आपके शोध यात्रा में आपने कोई एक ऐसी बात देखी जो पूरे भारत को भारत बनाती है?
0: देखिए ऐसा है, एक बात नहीं हो सकती, वो ऐसी बहुत सी बात, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर ऐसी कोई यात्रा नहीं हुई जहां पर हमें कुछ ना कुछ नया नहीं मिला हो। हमारी 49वीं यात्रा बलिया से गाजीपुर में थी और उससे पहले रामनाथपुरम से रामेश्वरम जहां डॉक्टर कलाम साहब का समाधि स्थल है वहां तक थी। तो गर्मियों में जाते हैं जहां गर्मी पड़ती है, ठंड में जाते हैं जहां ठंड पड़ती है, क्योंकि ऐसे समय में जब आप जाते हैं ना तो लोगों को कहना नहीं पड़ता आप क्यों आए, आपका तरीका जो है जीवन का वही आपका मकसद बता देता है। इसलिए हमें कभी ये विश्वास नहीं दिलाना पड़ा किसी भी अनजान व्यक्ति को कि आप हमारे ये हमारे हमको समझाओ या हमें बताओ आपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया है। तो मैं यही कहूंगा कि शोध यात्राओं को सबको बांधने का एक सबसे बड़ा तरीका यह है कि हमारा समाज बड़ा दयालु है, ऐसे लोग जिनसे हम कभी दोबारा मिलेंगे नहीं, उनको मालूम है शायद कि हम दोबारा नहीं आएंगे उस गाँव में, वो भी कहते हैं रुक जाओ खाना खा के जाना, यहीं सो जाओ। तो ये जो समाज का उदार भाव है पूरे देश का, एक जगह का नहीं पूरे देश का, और मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ जिन्होंने ऐसा काम कर दिया जो कोई करने की कल्पना नहीं कर सकता। करण मेहर और उनकी पत्नी दोनों ने बरगढ़ जिले में उड़ीसा में कुर्ता बनाया जिसमें एक भी सिलाई का धागा नहीं था। ये कुर्ता बुना गया है पूरा का पूरा बांह के समेत, कैसा कर गया होगा वो, एक कुर्ता विदाउट स्टिच मेरा ब्लॉग है कभी पढ़िएगा, कैसे बनाया उसने वो, विश्वास नहीं होगा ना आपको इस बात के अंदर। ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ जो अकल्पनीय चीजों का आविष्कार कर डालते हैं, कर देते हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कोई चुनौती तो ऐसी हो जिस जो सबको पराजित कर दे लेकिन मैं उसका उत्तर ढूंढूं। बहुत लोगों ने अपने जीवन के अनुभव हमसे बांटे, बड़ा निस्वार्थी जीवन है, मतलब हम ये बताएं आपको, मैंने बौद्धिक संपदा के अधिकार पर बहुत काम किया है लेकिन 99% में कहूंगा ज्ञान लोग दूसरों से बांटने में कभी हिचकिचाते नहीं। बहुत सारे तरीके कश्मीर में मिले, सब जगह मिलते हैं, मणिपुर में हमने आज चर्चा चल रही है, संसद में भी बहस हुई, चिरा चंद्रपुर में जहां पर बहुत ज्यादा हिंसा हुई वहां हमने अपनी शोध यात्रा शुरू की थी एक ऐसे आश्रम से जहां कुकी और नागा जब पहले उनका युद्ध हुआ था तो उनके जो बिना माता पिता के जो ऑर्फन बच्चे थे उनका एक आश्रम बनाया गया जिसमें कुकी और नागा एक साथ पढ़ते थे। मैंने कहा मैती और कुकी जो लोग परिवार टूट गए चल गए, तकलीफ हो गई, वो एक दूसरे को दवा लगाएंगे ना, ये देश जुड़ जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: हम अभी उनको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि तकलीफ हम सबके भीतर हुई है, ऐसा नहीं, कुछ ही लोग उसको ज्यादा हुई है मैं मानता हूँ, लेकिन तकलीफ तो सबको हुई है।
1: पूरे भारत को जोड़ने वाली चीज जो आपने बताई, एक तो उदारता और निस्वार्थ भाव, और उसको अगर मैं एक शब्द में ढालने का प्रयास करूं तो शायद आत्मीयता। ये जो आत्मीयता है व्यक्ति का, व्यक्ति के अंदर जो उसकी आवश्यकता है उसको पहचानना और ये समझना कि ये आवश्यकता केवल उस व्यक्ति की नहीं है, मैं भी कभी इस दौर से गुजरा हूं, तो ये जो एक आत्मीयता है, ये जो एक अपनापन है, ये भारत को भारत बनाती है। अनिल जी, आपसे बात करते करते जैसे मैंने पहले भी कहा था कि समय का पता ही नहीं चलेगा और चलने भी नहीं दिया आपने, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में फिर कभी आप हमें मौका दे, आपके साथ हम जुड़े और बातचीत करें और हमारे साथी भी आपसे सुन करके, आपसे समझ करके, अपने जीवन में चार गुरुओं की आपने बात की, उन गुरुओं से बातचीत करते करते भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन समय जो है हमें इशारा कर रहा है कि हम आपके साथ एक गेम खेलें, उस गेम का नाम है रैपिड फायर राउंड, तो जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और सवाल का जवाब आपको एक शब्द में देना होगा।
0: ठीक है,
1: आपने जिस अंदाज में ठीक है कहा उस अंदाज से मुझे समझ में आएगी कि मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होने वाला ये चैलेंज ऐसे सवाल ढूंढने के लिए। चलिए, पहला सवाल आपके साथ ये है, सेवा क्या है?
0: सानिध्य।
1: वाह, बहुत सुंदर, पहली बार मैंने ये जवाब सुना, सेवा मतलब सानिध्य, एक दूसरे का साथ, ये बहुत सेवा करता है हमारे ऊपर। जैसे
0: सेवा इसके बिना संभव नहीं है भाई, सानिध्य के बिना सेवा संभव नहीं है,
1: सेवा के लिए सहयोग या सानिध्य जरूरी है, बहुत
0: जरूरी है, जरूरी।
1: बिल्कुल। शांति क्या है?
0: संतुष्टि।
1: संतुष्टता क्या है?
0: उल्लास।
1: उल्लास क्या है?
0: उत्सुकता।
1: उत्सुकता और जीवन,
0: उत्सुकता से पैदा होती है ऊर्जा, ऊर्जा से पैदा होता है उल्लास, उल्लास जो है जीवन की अंतिम आकांक्षा होती है, जब ना पता चलता है कि समय, अभाव, दुख, सुख से परे हो जाते हैं।
1: तो मैं ये पूछने वाला था कि उत्सुकता और जीवन को आप कैसे जोड़ेंगे, और आपने जोड़ दिया। मेरा अगला सवाल यह है कि उन्नति क्या है?
0: अंतर और बाहर के भेद को कम करना,
1: मतलब
0: अंतरंगता कह सकते हैं एक शब्द अगर आप,
1: अंतरंगता या कहेंगे बाह्य और अंतर जगत का एकीकरण,
0: एकीकरण
1: हो, समान हो, बहुत सुंदर,
0: कथनी और करनी एक जैसी हो
1: जाए, कथनी करनी और सोच, क्योंकि बात आपने विचारों से की थी, विचार से व्यवहार, व्यवहार से फिर संस्कार, तब जाके वो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व कहलाएगा। एक और सवाल जो मेरे जहन में उठता है वो ये है कि भारत क्या है?
0: सर्वे भवति सुखिना सर्वे संतु निरामया, सर्वे सबका भला हो, हर जीव का भला हो, केवल कृष्ण का कहने मानने वाला, राम की कहानी मानने वाला, अल्लाह के बारे में विश्वास करने वाला, गुरु के बारे में विश्वास करने वाला, खाली उसका भला हो, ऐसा हम कल्पना कर ही नहीं सकते अपने धर्म में। हमें तो सब जीवों का सुख चाहिए, खाली मनुष्य का नहीं,
1: सर्वे भवन्तु सुखिनः,
0: सर्वे चींटी का, गिलहरी का, हर हर जीव का सुख हो, हर सब सब निरामय हो, सभी निरोगी हो, सभी सुखी रहें, ऐसे विचार का जहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ वो है भारत, जहाँ किसी वर्ग विशेष के सुख की कामना संभव नहीं है, उसको तार्किक रूप में उसको स्वीकार ही नहीं किया जाएगा उस प्रार्थना को। तो मेरा भारत,
1: बहुत सुंदर। आखिरी सवाल, अनिल कुमार गुप्ता कौन है?
0: एक बेचैन आत्मा जिसको हर समय तलाश है कि कैसे समाज को जोड़ा जाए, कैसे नए नए विचारों को तो एक माला में पिरोया जाए, ताकि न केवल हमारा देश बल्कि सारी दुनिया के जो लोग हैं उनका जीवन आगे विकसित हो, आगे बढ़े, हमारा समाहित विकास की जो कल्पना है हमारी वो आगे बढ़े।
1: अनिल जी, आपने खुद को बेचैन आत्मा कहा, बट मैं समझता हूँ और हमारे सभी श्रोता साथी इससे सहमत होंगे कि आप एक वास्तविक वैचारिक क्रांति लाने वाले देश के वो यशस्वी रतन है जिनके प्रयासों ने कईयों के जीवन को बदला है, चाहे वो आपने जिक्र भी किया कईयों का, चाहे वो करोड़ों में आज लाभ अपने लिए और देश के लिए ला रहे हैं, या चाहे वो लाखों में ला रहे हैं या हजारों में ला रहे हैं, लोगों के जीवन को शून्य से कहीं और एक मुकाम तक पहुंचाने में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे साथ समय बिताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि दोबारा कभी ना कभी आपसे जरूर मुलाकात होगी।
0: जरूर, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।
1: साथियों, अभी तक मैं और आप लाभ ले रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर श्री अनिल कुमार गुप्ता जी से, उनके अनुभवों से, उनके जीवन के जो रंग हैं, उन रंगों से हम हमारे जीवन के मानस पटल को एक बहुत सुंदर चित्र के साथ, कल्पना के साथ और एक शोध के साथ आगे बढ़ा रहे थे। अनिल कुमार गुप्ता जी को भारत सरकार ने 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया और इस प्रकार के व्यक्तित्व से हम आगे भी मिलते रहेंगे। जैसे अनिल जी ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान हमें देना होगा अपने विचारों को, विचारों के बाद देना होगा व्यवहार को, कि हमारे वो विचार श्रेष्ठ व्यवहार में तब्दील हो और वो श्रेष्ठ व्यवहार जो है हमारे अंदर सुसंस्कारों की संरचना करे और इस सुसंस्कारित संरचना से ही एक सुंदर परिकल्पना की जा सकती है बहुत बखूबी, बहुत खूबसूरत विश्व की। आज हमारे साथ एक वैचारिक क्रांतिकार प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी जुड़े थे। यशस्वी भारत कार्यक्रम में हम आपके बीच में एक और नई, एक ऐसी हस्ती को लेकर के दोबारा आगे आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8।
2: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐकलत का हो आमचा रेडिओ पुणेरी हो आमचा रेडिओ पुणेरी
1: विथ ब्रह्मकुमारीज। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज। सुजी शिवानी,
2: ओम शांति।
1: वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू।
1: आई स्टार्ट विथ रीडिंग समथिंग फॉर यू।
2: डेफिनेटली।
1: Love those who don't love you. When hate is directed towards you, repel it with love. And use their hatred as motivation to show that tolerance, acceptance, and love are better ways to go ahead in this world.
2: When it says, love those who don't love you, कि अगर आपको कोई नफरत भी भेज रहा है, आप उसको वापस प्यार भेजो, राइट? एंड उनको वो प्यार भेजने से हम ये सिखा रहे हैं कि सहन शक्ति, एक्सेप्टेंस एंड काइंडनेस, यही इस जीवन में आगे बढ़ने का तरीका है।
1: मेरी ड्यूटी है,
2: हमारी ड्यूटी है अपने को बचाने की, हमारी ड्यूटी है अपने को संभालने की।
1: हट जाओ वहाँ से, जो हेट करता है बात ही मत करो उससे।
2: हाँ, हट जाओ वहाँ से, भले
1: चले जाओ छोड़ो,
2: लेकिन मन से नहीं हटेंगे ना। अगर कोई हमें नफरत की एनर्जी भेज रहा है और हम भी उसको वापस नफरत की एनर्जी भेज रहे हैं, तो हम हटे नहीं ना वहाँ से। हम तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो गए उनके साथ, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी अब दोनों के बीच में हो गई। अब भले आपने बात करना बंद कर दी, हट गया फिजिकली वहां से, उस घर से, उस कमरे से, उस ऑफिस से, लेकिन मेंटली तो हम उन्हीं के साथ कनेक्टेड हैं, तो हटेगा?
1: हटे नहीं, तो उसको लव की एनर्जी कैसे भेजेंगे वहां से?
2: लव की एनर्जी उसको भेजना, इट ओनली मीन्स कि उससे नफरत नहीं करना, दैट्स ऑल। हमें कुछ नहीं करना। और
1: आपने मुझे हेट्रेड की भेज दी,
2: आई हेट यू,
1: अब क्या करूं मैं?
2: ठीक है, आई हेट यू जस्ट मीन्स कि मैं आपके लिए सिर्फ गलत गलत गलत और गंदा ही सोच रहे, तो आई हेट यू। अगर आप इतना सा कर लें सिर्फ कि मेरी गलत एनर्जी आने पर भी आप मेरे लिए गलत नहीं सोचे, तो आपने किसको संभाल लिया? इतना तो हम कर सकते हैं। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज डेफिनेटली नॉट डिफिकल्ट।
1: सोच नहीं सो रहा हूं, ऑटोमेटिक रिएक्शन जा रहा है मेरे पास से।
2: नहीं, रिएक्शन नहीं जा रहा ना, हम
1: आई एम रिस्पॉन्डिंग टू योर फीलिंग्स टूवर्ड्स मी।
2: चूज योर रिस्पॉन्स।
1: इतना टाइम होता है, इतना फास्ट वहां से एनर्जी थॉट आती है, इतनी थॉट वापस चली जाती है।
2: थॉट वहां से आ रही है आपको, एंड आपको अपने अंदर थॉट क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। जब हमें अपने अंदर थॉट क्रिएट होती हुई दिखाई देती है, विच इज नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी, हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे, हमें ये नहीं पता कि ये हम क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, ये या वहां से आ रही थी, विच बिकेम अ ट्रिगर कि हमारे अंदर भी उनके लिए ऐसी थॉट आई, लेकिन हमें ये तो दिखाना कि हमारे अंदर उनके लिए कैसी थॉट आ रही है, ये तो दिख रहा है। अब उस थॉट को स्टॉप करना, बंद कर देना, चेंज करना, ये हमारी अपने प्रति प्रोटेक्शन है। नहीं तो दूसरा जो नफरत कर रहा है वो तो भेजता जाएगा ना, वो तो भेजता जाएगा। दैट पर्सन हेट्स यू, तो वो भेजता जाएगा। अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसके बारे में गलत नहीं सोचना है, और जैसे ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसके लिए हमने गलत नहीं सोचा, हमने अपने को बचाया, हमारे से ऑटोमेटिकली प्यार की एनर्जी फ्लो हुई। वो ऑटोमेटिक है, उसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर ये नहीं है तो ये है ही,
1: न्यूट्रल नहीं है कुछ बीच में।
2: नफरत की एनर्जी अगर आपने नहीं क्रिएट की उसके
1: तो
2: लिए,
1: प्यार की भी नहीं है।
2: दैट्स ओके, प्यार इज योर ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल।
1: नहीं, अब नफरत की नहीं है तो न्यूट्रल गियर नहीं है क्या?
2: प्यार की एनर्जी,
1: प्यार की और नफरत के बीच में न्यूट्रल नहीं है
2: कि आप कुछ नहीं सोचेंगे ना उसके लिए।
1: हाँ,
2: बस इट्स फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि प्यार आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है। ये हमारी ओरिजिनल वाइब्रेशन है।
1: अच्छा,
2: जैसे व्हाइट इस कपड़े का ओरिजिनल कलर है,
1: तो मतलब कुछ कोई और उससे रंग नहीं डालो,
2: रंग नहीं डालो, बस उसको उसका ओरिजिनल रहने दो, कुछ नहीं करना है। और हमें कई बार हमें लगता है कि आई कांट सिट एंड कॉन्शियसली क्रिएट वेरी नाइस थॉट्स विद देम, लेट्स नॉट डू इट, आई कांट, छोड़ देते हैं। मुझे बार बार उनके बारे में बैठ के सोचना अच्छा नहीं होता, छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे उनके बारे में गलत नहीं सोचना है। ये करके हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, इसमें ये हमारा बचाव है। अलग अलग आत्माएं अलग अलग संस्कार कैरी करेंगे, हमारे लिए अलग अलग सोचेंगे, अलग अलग ही सोचेंगे। हम उनकी सोच को स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने उनकी सोच की क्वालिटी ही वापस उनको रिटर्न करी, तो वेरी सून उनकी हेट्रेड हमारी हेट्रेड बन जाएगी ना, वेरी सून हमारा चित गंदा हो जाएगा ना। तो ये अपना बचाव खुद नहीं करना पड़ेगा, हम अपने आप को नहीं बचाएंगे तो कौन हमें बचाएगा? Who will take care of me? हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन हमारा ध्यान रखेगा? Who will do
1: सामने से कोई गाड़ी आती तो हम हट जाते हैं,
2: आप
1: कोई जानवर भाग के आता तो हम हट जाते हैं,
2: अपने को बचाते हैं ना।
1: तो ऐसा थॉट आती है तो हट क्यों नहीं जाते?
2: जब आपने अभी कहा कि ये तो किताबी बात है, ये नहीं हो सकता, के रिपेल देयर हेट्रेड विद योर लव, यही लाइन थी ना उसके अंदर।
1: तो पॉसिबल तो नहीं है मेरे लिए।
2: ये पॉसिबल है ना कि सामने से गाड़ी आती है तो हम अपने को हटा लेते हैं?
1: हाँ।
2: सामने से जानवर आता है तो हम अपने को बचा लेते हैं?
1: हाँ।
2: हम थोड़ी ये कहते हैं ये क्यों सामने से आ रहा है। सेम है, वो लाइन का मीनिंग उतना ही है सिंपल, कि सामने से हेट्रेड की एनर्जी आ रही है, चूज क्या करना चाहते हैं, What do you want to do? क्योंकि अगर आपने भी वहां से हेट्रेड की एनर्जी भेजी तो सामने वाली एनर्जी तो और बढ़ जाएगी, एंड फिर भी अगर आपने कंटिन्यू करना भेजा फिर सामने वाली और बढ़ जाएगी। प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने को बचा लें। इज इट डिफिकल्ट अपनी थॉट को देखकर फिर चेंज करना?
1: कई साल पहले कई लोगों ने मुझे नफरत की एनर्जी भेजी, जेलसी की भेजी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। मुझे कुछ 5-10 साल बाद पता चला कि ये भेज रहे थे, तो मैं कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया था उसको, तो वो उधर से बंद हो गया आना।
2: Naturally.
1: लेकिन यहाँ मालूम होते हुए,
2: मालूम होने के 2 तरीके हैं। एक, हमें विजिबली दिख जाएगा बिहेवियर में, बात करने के तरीके में। मालूम होने का दूसरा तरीका ये है, हमारे अंदर भी उनके लिए
1: नेगेटिव
2: चलना शायद शुरू हो सकता है। अगर सामने से बिहेवियर में दिख रहा है तो अपने आप को बचाना, वो तो बहुत इजी है। लेकिन अगर अपने अंदर नेगेटिव चलता हुआ दिखाई देता है, उसको चेंज करना क्यों डिफिकल्ट होगा? वी जस्ट नीड टू पॉज टुडे बिफोर वी से इमिडिएटली, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है जो इसमें लिखा है, ये तो बहुत इजी है। मुझे दिख रहा है कि मेरे अंदर किसी के लिए नेगेटिव चल रहा है, मुझे दिख रहा है, राइट डाउन योर थॉट्स, लिखें कि मैंने उनके लिए ये सोचा, फिर ये सोचा, फिर ये सोचा, दिस इज डैमेजिंग फॉर मी, ये मेरी शक्ति को कम कर रहा है। तो मैंने, अगर मैं उनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकती, तो मुझे एटलीस्ट इस लेवल पे आना होगा कि मुझे उनके बारे में फिर सोचना बंद करना होगा। ये तो लाना ही पड़ेगा अपने आप को। सी दिस इज अगेन वही है ना, पुरुषार्थ करना है ना, सोचते ही जाएंगे उसी डायरेक्शन में उनके लिए, तो अपनी मतलब अनअवेयर ही कितनी बैटरी को डिस्चार्ज कर देंगे। इफ दैट इज हाउ वी लीड आवर लाइव्स, सो मेनी पीपल अराउंड अस विल थिंक अबाउट अस इन डिफरेंट वेज, हम रोक नहीं सकते उन्हें।
1: मैं अगर एक्स वाई जेड के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ तो ये 4 यहाँ जो बैठे हैं वो, उनको आएगा कि इसकी तरफ से नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही हैं, पता नहीं किस बात की आ रही है लेकिन आ रही है, इनको भी फील होगा।
2: आपकी वाइब्रेशन एज अ पर्सनालिटी हैवी होगी, जिनके
1: लोग बोलते भी नहीं, पता नहीं किस सोच में आप डूबे हुए हो, आज आप नाराज से लग रहे हो,
2: वो तो लग रहे हो।
1: हाँ।
2: वो तो दिख रहे हो, चेहरे पे आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ऑरा हम क्या कैरी करते हैं, ओवरऑल हमारी एनर्जी फील्ड क्या है,
1: जो हम सोचते हैं
2: वो रेडिएट कर रही है, वो वाइब्रेट कर रही है, चारों तरफ जा रही है। उसका असर हमारे शरीर पर, प्रकृति पर, आसपास की आत्माओं पर, सब पर पड़ रहा है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका असर मेरे अपने ऊपर पड़ रहा है। तो कोई और मुझसे नफरत करता है, उसके लिए हम भी बह गए और हम भी वैसा ही सोचने लगे। इतने कमजोर हम नहीं हैं। इट्स जस्ट दैट जब हम चेक ही नहीं करते, तो जैसे आपने कहा वो ऑटोमेटिक ही चलता है, तो वो बहुत समय तक चलता ही गया, हमें पता ही नहीं चला चलता गया। इसीलिए हम ये सब सीखते हैं, ये चल रहा है तो चेकिंग। इट्स लाइक बीमारी शरीर में हो रही थी, बढ़ रही थी, पता ही नहीं चला कि बढ़ रही है, पता ही नहीं चला कि स्टेज तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही सिम्टम दिखाई दिया, सपोज हमें बहुत साल नहीं पता चला कि हमारे अंदर क्या चल रहा था, हम अवेयर ही नहीं थे, मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि ये गलत है, हमने सोचा ये नेचुरल है, इसका मतलब हम इस बीमारी को लेकर ही बहुत सालों से चल रहे थे, नेवर माइंड। लेकिन आज जैसे ही सिम्टम दिखता है, अब तो थॉट दिखते हैं ना, अब तो दिख जाती है ना, ये अवेयरनेस तो अभी हमें है कि ये दिखता है कि हम पहले हम उस लेवल पे हुआ करते थे, हमें अपना व्यवहार दिखता था, हमें अपने बोल दिखते थे कि हमने ऐसा बोल दिया उनको, हमने ऐसा कर दिया उनके साथ, हमने आज इस तरह से बात की, हमने ऐसे व्यवहार किया। अब हमें अपनी सोच दिखती है। आई थिंक दिस वी ऑल हैव रीच्ड एट दैट लेवल कि हमें अपनी अब थॉट्स दिखते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, वी आर अवेयर। ये अवेयरनेस इतनी इजी नहीं होती है, पहले नहीं थी, कर करके ध्यान रख रख के नाउ वी आर अवेयर कि दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, दीज आर आवर सिम्टम्स। ये हमारे सिम्टम फर्स्ट हमें दिखाई दे दिया कि ये मैं उनके बारे में ऐसा सोच रहा हूं, नाउ आई एम नॉट अलाउड टू डू दिस, आई कांट लेट इट गो लाइक दिस, क्योंकि ये उनकी तरफ से एनर्जी आ रही है, फिर मेरी तरफ से जा रही है, फिर आ रही है, जा रही है, ये हम दोनों के लिए बहुत क्रॉनिक बन जाएगा, मेरे लिए तो क्रॉनिक बन ही रहा है, तो मुझे इस सोच को बदलना ही है, कॉन्शियसली चेंज। जैसे आपने कहा ना, कॉन्शियसली गाड़ी आ रही है, मुझे आउट ऑफ द वे उसके जाना ही पड़ेगा, मुझे मुड़ना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते वो मुड़े, हम ये नहीं कह सकते वो ब्रेक लगाए,
1: उसकी ब्रेक ही फेल हो
2: उसकी ब्रेक ही फेल हो। फिर अब सोचो, इसको इंटेलिजेंट कहेंगे क्या कि अगर सामने से कोई आ रहा है उसकी ब्रेक फेल है और हम सामने खड़े होके कहें नहीं, रॉन्ग रास्ते पे आप आ रहे हो, आप ब्रेक लगाओ। हम ब्रेक लगाएंगे, ये किताबी बातें नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं है, ये बहुत सिंपल एंड बहुत रियल बातें हैं। सिर्फ ये बातें हमें फिजिकल में पता थी, इवन शब्दों में नहीं कहते थे, वो इतना बोल रहा है तुम चुप हो जाओ, बोलते थे ना और हम करते भी थे ना, तो ऐसे ही वो इतना सोच रहा है हमारे लिए, हम चुप हो जाते हैं अंदर। व्हाई वुड दैट बी डिफिकल्ट? एंड जैसे ही हम अंदर चुप हो गए, तो हमने उनके नफरत की एनर्जी का रिटर्न नफरत से नहीं भेजा, और जैसे ही हमने नफरत से नहीं भेजा, हमारी ओरिजिनल क्वालिटी तो लव है, वो अनब्लॉक्ड रही, नहीं तो इट गेट्स ब्लॉक्ड। तो हमने अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को ब्लॉक नहीं करना, तो इसको करेंगे ट्राई हम, जितना डिफिकल्ट नहीं है, रिजेक्ट नहीं करना है इतनी अच्छी अच्छी बातों को ये कहकर कि ये बहुत डिफिकल्ट है, नहीं तो हमने अपने मन को क्या कह दिया कि ये तो तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ऐसे ही कोई लिख देता है, ऐसा होता
1: और
2: नहीं,
1: मन भी मान के बैठ जाता है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है,
2: क्योंकि उसमें फिर मन को कुछ करना नहीं है ना, मन ने कोई मेहनत करनी नहीं है, तो हम कहते हैं बहुत इजी, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये तो ऐसी ही बातें हैं सारी, ऐसे ही बोलते हैं लोग, ये होता तो है नहीं।
1: लव दोस हु डोंट लव यू,
2: एक्चुअली इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स डोंट हेट दोस पीपल हु हेट यू, दैट्स ऑल दैट वी हैव टू डू।
1: But when hate is directed towards you, repel it with love.
2: Yeah, you're repelling it with love, na? Agar main yahan se nafrat bhejo, ab isiliye sahan shakti matlab kya? Aapne meri nafrat ko tolerate kar liya. Tolerate kar liya matlab kya kar liya? Sahan kar liya usko. Uska return wohi same nahi bheja. To aapki pyar ki energy jab flow hui, to meri nafrat ki energy kya ho jayegi? आपने कंज्यूम नहीं किया ना उसको, तो रिपेल कर दिया। जो मैं एनर्जी यहाँ से भेज रहे हूँ, अगर वो आप पर प्रभाव डाल देती है, तो मेरा तीर काम कर गया, इट्स हिट यू, लेकिन अगर आपने वो तीर नहीं एक्सेप्ट किया, आपने कोई और तीर भेजा, तो आपने मेरे तीर को क्या कर दिया, रिपल कर दिया, हो गया, इट हैपेंड, व्हाट इज इट।
1: लेकिन कन्वर्ट करके भेजा, जो आपका तीर था नफरत भरा और उसको मैं प्यार भर के वापस भेज दिया।
2: आपने उसको कन्वर्ट भी नहीं किया, आपने उसको कंज्यूम ही नहीं किया, आपने उसको अब्सॉर्ब भी नहीं किया, आपने उसको अपने तक आने ही नहीं दिया।
1: लेकिन यहाँ लिखा ना रिपेल इट विद लव,
2: रिपेल ना यहाँ से आ रही है, यहाँ से मेरी एनर्जी आ रही है, आपने वहां से एक डिफरेंट एनर्जी भेज दी तो ये रिपेल हो गई। अगर आपने वहां से सेम एनर्जी भेजी होती, इफ आई एम सेंडिंग हेट एंड यू आर ऑल्सो सेंडिंग हेट, देन योर हेट्रेड विल अट्रैक्ट माई हेट्रेड मोर टूवर्ड्स यू।
1: फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर तो नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा।
2: वही तो चलता है, वही तो चलता है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ना।
1: आई नो इट्स नॉट डिफिकल्ट बट
2: इट्स वेरी इजी। जो चीज हम गाड़ी के लेवल पे कर सकते थे, जो चीज हम शब्दों के लेवल पे कर सकते थे, वही चीज हम सोच के लेवल पे भी कर सकते हैं। एंड एक बार करना शुरू कर दिया तो इस सोच के अंदर टर्न करने की कैपेसिटी, मोल्ड करने की कैपेसिटी, टॉलरेट करने की कैपेसिटी इतनी बढ़ती जाएगी कि थोड़े दिन के बाद इसको पता भी नहीं चलेगा कि ये कुछ कर भी रहा है। इट विल बिकम अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग। सी व्हेन वी आर ड्राइविंग, इनिशियली हमें बड़ी अटेंशन रखनी पड़ती है, यू नो, कोई बैठा होता है साथ में हमारे साथ, हमें गाड़ी सिखाने, ऐसे करके बैठते ना, और साथ में कोई गाड़ी सिखाने वाला बैठा होता है तो वो फटाफट से बोलता है टर्न करो टर्न करो, सामने से गाड़ी आ रही है, फिर हमें भी मेहनत करके टर्न करना पड़ता है। लेकिन एक बार गाड़ी सीख ली उसके बाद तो अवेयरनेस भी नहीं होती कि कोई आ रही है और हम टर्न कर रहे हैं, अवेयरनेस ही नहीं होती, नेचुरली अपने आप टर्न हो जाएगा,
1: ऑटोमेटिक मोड में जाएगा,
2: नेचुरल वे ऑफ लिविंग हो जाएगी, हमें एफर्ट नहीं लगेगा उसके अंदर, सहन करना एफर्ट नहीं लगेगा, एडजस्ट करना एफर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि शक्ति आत्मा की बढ़ जाएगी। कितनी बार एफर्ट लगेगा, दो चार पांच दस बार, उतने टाइम में आत्मा का वो करने का संस्कार बन जाएगा। देखो सहन शक्ति के बारे में परमात्मा के महावाक्य क्या है
1: जी?
2: आपने पिछली बार कहा ना कोई ईर्ष्या से कुछ गलत कहता है तो परमात्मा कहते हैं कोई प्रशंसा करे और आप मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है। लेकिन दुश्मन बन, क्रोधित हो, अब शब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो।
1: ये लाइन दोबारा पढ़िए प्लीज।
2: लेकिन दुश्मन बन, क्रोधित हो, गुस्सा कर, अप शब्दों की वर्षा करे, गलत शब्द, अब्यूजिव लैंग्वेज, ऐसे समय पर भी मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न आए।
1: भाप रे।
2: नहीं नहीं, उतना मुश्किल नहीं है।
1: डेड बॉडी बनना पड़ेगा मुझे,
2: पावरफुल सोल बनना पड़ेगा,
1: डेड टोटली बॉडी, मूर्ति बनना पड़ेगा, चाहे दूध डालो सर पे, हार डालो, साबुन डालो, तेल डालो, दही डालो, चुप बैठी रहती मूर्ति
2: नहीं। मूर्ति वो बनना पड़ेगा जो चाहे आप कुछ भी मुझ पर डालो, मैं आपको आशीर्वाद दूं,
1: तब जाके मूर्ति की पूजा भी तो होती है।
2: दिव्य मूर्ति है ना हम सारे। फिर परमात्मा ने कहा इसको कहा जाता है सहनशीलता, ये सहनशीलता भी टॉलरेटेड, जैसे हम कहते हैं ना मैं इस मौसम को टॉलरेट कर लिया, मौसम बदला लेकिन मैंने टॉलरेट कर लिया, पानी बदला लेकिन मैंने टॉलरेट कर लिया, खाना बदला दूसरे देश में गए लेकिन मैंने टॉलरेट कर लिया, मीन्स मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मौसम बदला मैं बीमार नहीं पड़ा, इसको कहेंगे सहनशीलता। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना और उसके संपर्क में आना, दुश्मन आत्मा को भी सेम, जो हेट करेगा हमें, इसको कहते हैं सहनशीलता। शास्त्रों में है, महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। सारी जो शास्त्रों में बातें हैं ये हमें मैसेज देने के लिए होती हैं। उस मैसेज को समझकर उसे हमें जीवन में धारण करना है। तो हनुमान जी हथेली पर पहाड़ लेकर आए। ऐसे ही कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को भी छोटा सा खिलौना बनाए खेल की रीति से सदा खेला करो। भारी बात को भी सदा हल्का बनाओ, स्वयं भी हल्के रहो और दूसरों को भी हल्का बनाओ। हम क्या करते हैं, सिर्फ जो शास्त्रों में बात लिखी होती है उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, कथा करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग हमें जीवन में कौन सा अप्लाई करना है वो उसको नहीं यूज करते हैं। रामायण कथा कितनी बार सुनी होगी,
1: अनगिनत
2: रटी हुई है कथा। हर जगह चित्र है कि हनुमान जी पहाड़ को अपने हाथ पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में जब पहाड़ जैसी बात आती है तो फिर परमात्मा कहता है कितनी भी बड़ी बात हो, समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को भी छोटा सा खिलौना बनाए खेल की रीति से सदा पार करो। बड़ी बात को हल्का बनाओगे तो स्वयं भी हल्के रहोगे और दूसरों को भी हल्का बनाओगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम भी हल्के बन जाएंगे और दूसरों को भी हल्का बना देंगे। इसको कहते हैं सहनशीलता। बड़ी बात आई उसको भी टॉलरेट कर लिया। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं लेकिन पहाड़ को गेंद बनाओ। अंडरलाइन है ये लाइन, छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं बना दो,
1: पहाड़ को बॉल बनाओ,
2: पहाड़ को गेंद बनाओ। आज हम छोटी सी बात को भी पहाड़ बना देते हैं अपने जीवन के अंदर। तो परमात्मा कहते छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, पहाड़ को गेंद बनाओ। विस्तार को सार में लाना, ये है सहनशीलता। बात का विस्तार है, ऐसे किया, फिर ऐसे हुआ, फिर उसने ऐसे किया, ये किया। विस्तार को सार में लाओ, ये है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना। विघ्नों को, समस्या को दूसरों के सामने वर्णन करना, जो हमने कुछ दिन पहले भी देखा ना कि उस बात को बार बार बोलना, दूसरों से डिस्कस करना,
1: निंदा करना किसी की बार बार, ऐसा क्या है,
2: इवन एक समस्या को बार बार डिस्कस करना, बार बार उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते रहना, तो प्रॉब्लम को डिस्कस करते करते प्रॉब्लम का पहाड़ बन जाएगा। सोल्यूशन को डिस्कस करना इज डिफरेंट एंड प्रॉब्लम को डिस्कस करना इज डिफरेंट,
1: और निंदा करना तो टोटली डिफरेंट,
2: वो तो एनर्जी ही अलग है।
1: वेरी
2: ट्रू। लेकिन विस्तार में न जाए, फुल स्टॉप से बिंदी लगाओ, बिंदी बन आगे बढ़े। इसको कहते हैं विस्तार से सार में लाना। फुल स्टॉप लगाओ और बिंदी बन जाओ। मैं आत्मा हूं, बिंदी बन जाओ और उस बात को, प्रॉब्लम को फुल स्टॉप लगा के सोल्यूशन पर चलो।
1: व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्तार को सार?
2: विस्तार मींस प्रॉब्लम को डिस्कस करते करते प्रॉब्लम को, यू नो समटाइम्स हम किसी बात को बार बार खींचते ही जाते हैं इतना लंबा, तो हम विस्तार में चले जाते हैं। उस प्रॉब्लम को सार में समझो और फिर उसके सोल्यूशन पर फोकस करो। तो फुल स्टॉप लगाओ और बिंदी बन जाओ। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी पार कर लेगी। जो ज्यादा थॉट्स में इंटेंगल नहीं होंगे, ज्यादा संकल्पों के ताने बाने में उलझे नहीं रहेंगे, तो वो बड़ी से बड़ी समस्या को भी बहुत हल्के रूप में क्रॉस कर सकते हैं। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय लगता है, शक्तियां भी समाप्त हो जाती हैं, अर्थात शक्ति ज्यादा यूज होती है, ऐसे ही विस्तार भी लंबा रास्ता है और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करने का। पार दोनों ही करते हैं, मतलब प्रॉब्लम को क्रॉस तो दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों को बचाते हैं। इस कारण से निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं, इसको कहते हैं सहनशीलता, पावर टू टॉलरेट। कितनी सुंदर डिस्क्रिप्शन है सारी, है ना। इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। यू नो सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम जिसको खत्म करना पड़ेगा ना, ये नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट, ये नहीं हो सकता है।
1: किताबी बातें।
2: हाँ, नो वेट, लें उस बात को, हमारे अच्छे के लिए आई है वो हमारे सामने बात, हमारे फायदे के लिए आई है, हमारी उन्नति के लिए आई है, हमारे बचाव के लिए आई है। जैसे आप कितनी बार कहते हैं, जब हम कुछ करना चाहते हैं तो यूनिवर्स हमारी तरफ भेजती है ना उन चीजों को।
1: सही बात है, हेल्प करती है। लेकिन यहाँ ना टॉलरेंस का बचपन से मीनिंग ही कुछ उल्टा निकाला हुआ था मैंने। मैंने सोचा जो आदमी टॉलरेट करता है वो कमजोर होता है, वो वापस नहीं लड़ सकता है, वो आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकता जीवन में, वो वहीं का वहीं रहेगा, बेचारा है, कमजोर है, यू नो लाइक दैट, विक्टिम है।
2: लेकिन अब टॉलरेंस का कितना अच्छा,
1: मैं तो बोलता था मर जाना अच्छा है लेकिन लड़के मरो। टॉलरेट वॉलरेट क्या करना है दुनिया में।
2: टॉलरेट करना मीन्स अंडरस्टैंड करना। जैसे कोई चीज सामने खड़ी है, अगर आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल है, उसके साथ लड़ना नहीं है, अंडरस्टैंड करना कि ये रास्ते में खड़ी है, अब मुझे तो इसके अराउंड होके टर्न होकर ही जाना है। ये तो विजडम है ना। आज सारा दिन में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे कि अनेक आत्माएं, अलग अलग संस्कार, मेरे से डिफरेंट, मेरे से भिन्न है, भिन्न हैं और रहेंगे, दे विल ऑलवेज बी डिफरेंट। उनका रोल, उनका स्क्रिप्ट, उनका संस्कार डिफरेंट है, एंड टॉलरेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस। एंड ये नहीं कि हर डिफरेंस मेरे मन की स्थिति को
1: डिस्टर्ब करते,
2: दैट इज लैक ऑफ विजडम ऑन माई साइड, लैक ऑफ स्ट्रेंथ ऑन माई साइड, कि जो चीज ऑब्वियस है उस ऑब्वियस चीज को लेकर उसका चिंतन करके हम डिस्टर्ब हो जाएं, तो ये हमारी कमजोरी की निशानी है।
1: ब्यूटीफुल,
2: थैंक यू
1: सो मच। ओम शांति।
3: इफ समवन रेडिएट्स वाइब्रेशन ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स अस एंड if we radiate the same hatred towards them, then we will get strongly connected in a negative emotional bond. Even if we physically withdraw from them, we are very connected to them in our mind. Even if we are receiving hatred, the thoughts we create is our choice. We have three options. We can think the same negative way, we can stop thinking about them completely, or we can create pure thoughts for them. We have a choice. It is for our own protection, for our own health and happiness, that we should not think negatively for anyone, even if we are receiving hatred from them. If we only take care that we don't hate them, then our original energy of love is naturally flowing. Each soul carries different sanskars. If someone hates us, we cannot stop them from thinking that way about us. But if we get influenced by their energy and create the same quality in return, then very soon hatred becomes our vibration.
4: If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999-559-660.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माई हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूँ। डू आई वॉन्ट देन, नाउ वट हेज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट वेन, वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता का नारा सदा गूंजता रहा है। इतने राज्य, भाषाएं, बोलियां, संस्कृतियां मिलकर भारत को अतुल्य भारत बनाती है। तो आइए इस अतुल्य भारत के एक ऐसे प्रदेश में आपको ले चलते हैं जो आपको अपने एक अलग अनोखे रंग में रंगा नजर आएगा। चलिए चलते हैं बिहार।

बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। इसके उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य है। यहाँ अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें गंगा प्रमुख है। अन्य नदियाँ हैं सोन, पुपुन, फागु, दुर्गावती, कोसी, गंडक आदि आदि। बिहार गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के मैदान में बसा है। झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर बना है, जिसके बाद बिहार की भूमि मुख्यतः नदियों के मैदान और समतल भूभाग है। बिहार गंगा के पूर्वी मैदान में है और गंगा नदी इसी प्रदेश के लगभग बीचों बीच से होकर बहती है। उत्तरी बिहार बागमती, कोसी, गंडक, सोन और उनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में छोटा नागपुर पठार है, जिसका हिस्सा अब झारखंड है। उत्तर से कई नदियां बिहार से होकर बहती हैं और गंगा में मिल जाती हैं।

अब कुछ ऐसे निशानों को खोजते हैं जो किताबों में कहीं दबे रह जाते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं बिहार का इतिहास। बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों और प्राचीन महाकाव्यों में मिलता है। यह राज्य महात्मा बुद्ध और कई जैन तीर्थंकरों की कर्मभूमि रहा है। ईसा पूर्व काल में इस क्षेत्र पर बिंबिसार पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाले उदयन चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक सहित मौर्य, शुंग तथा कणव राजवंश के नरेशों ने राज किया। इसके बाद कुषाण शासकों का समय आया और बाद में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बिहार पर राज्य किया। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों का इस क्षेत्र

पर अधिकार रहा। बिहार पर सबसे पहले विजय पाने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था और खिलजी वंश के बाद यहाँ तुगलक वंश तथा मुगल वंश का अधिपत्य रहा। बिहार ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी एक अहम भूमिका निभाई। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह बिहार के ही चंपारण क्षेत्र से किया था, जो कि यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ था। इसके अतिरिक्त राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आजादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उनका जन्म भी इसी धरनी के सारण जिले में हुआ था।

भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सन 1950 में बिहार को एक राज्य घोषित कर दिया। इसके बाद जब 1956 में सभी प्रदेशों का निर्माण भाषा के आधार से हुआ, तब बिहार के कुछ क्षेत्र वेस्ट बंगाल में शामिल हो गए। सन 2000 में बिहार को विभाजित कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। अब बढ़ते हैं बिहार के भूगोल की तरफ। प्राकृतिक रूप से यह राज्य गंगा नदी द्वारा दो भागों में विभाजित है, उत्तर बिहार मैदान और दक्षिण बिहार मैदान। सुदूर पश्चिम उत्तर में हिमालय की तराई को छोड़कर गंगा का उत्तरी मैदान समुद्र तल से 75 मीटर से भी कम की ऊंचाई पर जालोड़ समतली क्षेत्र का निर्माण करता है और यहाँ बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा और अन्य नदियाँ नेपाल में हिमालय से नीचे उतरती हैं और अलग अलग जलमार्गों से होती हुई गंगा में मिलती है। दक्षिण पश्चिम में सोन घाटी के पार स्थित कैमूर पठार में क्षितिज बालूकाश्म की परत चूना पत्थर की परतों से ढकी है। उत्तर के मुकाबले दक्षिण गंगे मैदान ज्यादा विविध है और अनेक पहाड़ियों का उत्थान कच्छारी सतह से होता है। यहाँ सोन नदी को छोड़कर सभी नदियाँ छोटी हैं। अब जानते हैं कुछ कृषि के बारे में, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। राज्य में लगभग 80% लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। बिहार की प्रमुख खाद्य फसलें धान, गेहूं, मक्का और दालें हैं। वह मुख्य नकदी फसलें गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन आदि हैं। बिहार में भी भारत के अन्य प्रदेशों की कृषि की भूमिका एक नींव के रूप में है। अब बात करते हैं उस विशेष हिस्से की जो किसी भी प्रदेश के भविष्य का आधार है, यानी कि शिक्षा जगत। बिहार में कई उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनमें से मुख्य है पटना स्थित प्राचीन व महत्वपूर्ण पटना विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में BRA बिहार विश्वविद्यालय और भागलपुर स्थित तिलका मांझी भालपुर विश्वविद्यालय। यहाँ द पटना स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, जहाँ विशिष्ट विषयों की शिक्षा दी जाती है। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वर्जासन विश्वविद्यालय एवं उदंतपुरी विश्वविद्यालय यहाँ है। बिहार में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंडिक द्वारा हुआ। शिक्षा का माध्यम संस्कृत फारसी के साथ अंग्रेजी था, लेकिन उस समय अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता ज्यादा थी। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 415 से 454 ईसा पूर्व में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जावा, चीन, तिब्बत, श्रीलंका व कोरिया आदि के छात्र आते थे। जब ह्वेनसांग भारत आया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 8500 छात्र एवं 1510 अध्यापक थे। इसके प्रख्यात अध्यापकों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमति, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति आदि थे। इस विश्वविद्यालय में पाली भाषा में शिक्षण कार्य होता था। 12वीं शती में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया था। बिहार का एक और प्राचीन विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसे पालव वंशीय शासक ने 770 से 810 ईस्वी में बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ न्याय, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के विद्वानों में रक्षित, विरोचन, ज्ञानभद्र, बुद्ध जैत्रित, रत्नाकर, शांति ज्ञान, श्रीमित्र, अभ्यंकर थे। बिहार का प्राचीन काल शिक्षा के लिए विख्यात है। ये तो हुई शिक्षा की बात, अब आइए बिहार की संस्कृति से करते हैं कुछ जान पहचान। बिहार का सांस्कृतिक क्षेत्र भाषाई क्षेत्र के साथ करीबी संबंध दर्शाता है। यह मैथिली भाषा है, प्राचीन मिथिला की, जिसमें ब्राह्मणवादी जीवन व्यवस्था की प्रधानता है। मैथिली बिहार की एकमात्र बोली है, जिसकी अपनी लिपि यानी तिरहुत है और समृद्ध साहित्य इतिहास है। मैथिली के प्राचीनतम और सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकारों में विद्यापति अपने श्रृंगारिक व भक्ति गीतों के लिए विख्यात है। यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, परंतु इस बोली में शायद ही कोई लिखित साहित्य है, लेकिन इसका मौखिक लोक साहित्य प्रचुर है।
आधुनिक हिंदी व उर्दू साहित्य में बिहार के मैदानी क्षेत्रों के रचनाकारों का भी उल्लेखनीय योगदान है। बिहार की आदिवासी संस्कृति भी अति रोचक है। अधिकतर आदिवासी गांवों में इष्ट देव की पूजा के लिए एक पवित्र उपवन शयनागार होता है। आदिवासी त्योहारों में सरहुल, वसंतोत्सव और शीतोत्सव उमंग व उल्लास के पर्व होते हैं। यहाँ ही पावापुरी है, जहाँ जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बिहार स्थित गया एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है और इसके निकट बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल बोध गया भी है, जहाँ बुद्ध को बोधि तत्व की प्राप्ति हुई थी। पटना के उत्तर में सोनपुर के समीप हरिहर क्षेत्र में प्रत्येक नवंबर में भारत के प्राचीनतम व विशाल पशु मेलों में से एक का आयोजन होता है। अब बिहार के अनेक हिंदू त्योहारों में होली और छठ है, जिनमें मुख्यतः स्त्रियों द्वारा सूर्य की आराधना की जाती है। ये यहाँ का अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्व है।

पर्यटन की बात की जाए तो किसी भी प्रदेश का परिचय अधूरा है, तो आइए घूमते हैं बिहार, जो कि पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ की परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन पद्धति, मेले, पर्व, त्योहार हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्र है राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, जहाँ भगवान महावीर ने अंतिम सांस ली और निर्वाण को प्राप्त हुए। और भी कई स्थल यहाँ देखने योग्य हैं, जैसे कि बोधगया, विक्रमशिला, उच्च शिक्षा के बौद्ध विश्वविद्यालय के अवशेष, पटना, पाटलिपुत्र का प्राचीन नगर, सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा और मधुबनी। यहाँ के और भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर, रोहता, सगड़ किला, रोहतास, जैन तीर्थ स्थल, कुंडलपुर, नालंदा, बिहार योग केंद्र, मुंगेर, मनेर शरीफ, पटना आदि, जहां आप जा सकते हैं और खूब आनंद के साथ अपना समय व्यतीत कर सकते हैं तथा इतिहास को और करीब से जान सकते हैं।

आशा करते हैं कि ये विशेष कड़ी आपको भारत के इस विशेष राज्य के समीप ले गई होगी। इस सफर को अब हमें यहीं खत्म करना होगा। आगे जानिए और बहुत कुछ 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी में। जय हिंद।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबू का सफर। जी हाँ, आइए आज के इस खाबू के सफर को हम लोग सजाएंगे कुछ गीत है अल्फाबेट के से। अल्फाबेट के से बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं जो आज के शो में हम लोग सुनाने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं और अपनी भावनाओं को मैसेज के जरिए, फोन के जरिए हमारे तक पहुंचाते हैं। तो आइए, आप सभी को ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार। कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत गाना, 1958 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था साधना, और ये फिल्म जो है एक बहुत ही खूबसूरत सामाजिक मार्गदर्शन फिल्म कह सकते हैं। वैजयंती माला और सुनील दत्त पर पिक्चराइज किया गया था। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में ये खूबसूरत नगमा आपके नाम, खुश रहो खुशियां बांटो।

साहिर लुधियानवी साहब का लिखा लता मंगेशकर का गाया बहुत ही खूबसूरत गीत, एन दत्ता का संगीत, साधना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। और मैंने कहा था कि आपको ऐसे मुख्य कलाकार सुनील दत्त और वैजयंती माला है। इस फिल्म की कहानी इस तरह से है कि एक माँ अपने बेटे की शादी की चिंता करती है और फिर बेटे से बार बार कहती है कि आप तो शादी कर ले, लेकिन बेटा शादी नहीं करना चाहता है। और इस वजह से माँ एक दिन बीमार हो जाती है और बहू बहू की पुकार लगाती है। तो ऐसे में बेटा जो है बहुत परेशान हो जाता है। बेटा फिर अपने एक दोस्त के साथ ये बातें करता है कि इस तरह से माँ जो है बहू बहू पुकार रही है तो मैं क्या। तो उसका दोस्त उसे कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी भी लड़की को कुछ समय के लिए नाटक करने के लिए कहो। तो बेटा कहता है ऐसा हो सकता है, हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता है। बेटे के कहने पर दोस्त एक गाने वाली को घर में ले आता है जिसका नाम है रजनी और उसे पैसे के लिए खास ये नाटक करने के लिए कहता है। तो वो राजी हो जाती है और ये नाटक शुरू हो जाता है और बाद में ये नाटक हकीकत में बदल जाता है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत नगमा आपको सुनाते हैं जो के अक्षर से शुरू होता है। ये गाना जी हाँ, कैसा जादू बलम तूने डाला, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, गीता दत्त का गाया, ओपी नैयर का संगीत और फिल्म का नाम 12 o'clock यानी रात 12 बजे। खुश रहो, खुशियां बांटो,

0: 12 o'clock 1958 में फिल्म रिलीज हुई थी। एक वकील की कहानी है। हत्या की आरोपी अपनी प्रेमिका को बचाने की हर संभव कोशिश इसमें करता है और ये फिल्म प्रेम चक्रवर्ती के निर्देशन में बना था। जीपी सिप्पी साहब इसके निर्माता रहे और कलाकार के रूप में गुरुदत्त और वैदा रहमान मुख्य रोल अदा करते हैं और साथ ही कलाकार है जॉनी वॉकर और शशि खन्ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बातें करते हुए और ये गीत भी पुराने 60s एंड 50s के गाने जो है अपने आप में खास है। आज के समय में ऐसे गाने कहाँ बनते हैं। वही एक और खूबसूरत गाना जिसको सुनकर आपके दिल में हलचल होगा, ये
1: काली घटा छाए मोरा जिया तरसा।
0: जी हाँ, खाली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, आशा भोसले का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत। फिल्म का नाम है सुजाता। जी हाँ, 1959 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और एक अछूत अनाथ सुजाता को ब्राह्मण दाम्पति द्वारा अपनाया जाता है और वो बड़ी होती है और ब्राह्मण आदमी अदीर के प्यार में पड़ती है, लेकिन वे एक साथ रहने के लिए संघर्ष करते हैं जैसे समाज उन्हें नीची नजर से देखता है। तो ये एक जाति भेद वाली जो संघर्षमय जीवन कहानी यहाँ पर प्रेम के इस स्वरूप में कहीं ना कहीं प्रेम जो है हिलोरे तो लेता है लेकिन जाति के भेदभाव में वो फिर कैसे दब जाता है, वो चीजें यहाँ पर एक समाज का जो पहलू है बताने की कोशिश की है बिमल रॉय ने। और सुबोध घोष ने इस कहानी को लिखा है। कलाकार के रूप में नूतन, सुनील दत्त और ललिता पवार ने काम किया है। चलिए सुनते हैं इस पूरे गीत को। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। 1959 के बाद 1960 में आते हैं। 1960 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था अनुराधा, और ये जो फिल्म है इसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा था और लता मंगेशकर ने गाया था। रविशंकर साहब ने इसको संगीत दिया था। तो आइए, गीत के बोल इस तरह के हैं, कैसे दिन बिताए कैसे बिताए रात।

चलिए, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये भी खूबसूरत गाना था अनुराधा फिल्म का। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत फिल्म 1962 में आई थी जो बहुत अच्छा पॉपुलर भी रहा। और ये एक अमीर युवक की कहानी इसमें बताई गई थी जो खुद को साबित करने अपने घर की सुविधाओं का त्याग करता है और मुंबई जाता है। वहाँ रीनू नाम की एक लड़की से मिलता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। वो लड़की जो अपने परिवार से कुछ रहस्य छिपा रही है वो जानने की कोशिश में हीरो जो है बहुत मुश्किल में आता है। और इस तरह की कुछ कहानी बताई गई है असली नकली। और 1962 में ये रिलीज हुई थी ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में और इसमें मुख्य कलाकार देवानंद, साधना मुखरी, नाजिर हुसैन और लीला चिटनिस है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना आप सबके नाम।

चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छी बातें हो रही हैं और पुराने फिल्मी गीतों के साथ फिल्मी मसाला भी आपको मिल रहा है। आशा करता हूँ आप सब एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आपके मनोरंजन को और बढ़ाते हैं। 1964 में एक फिल्म आई थी जो देशभक्ति पर आधारित थी, जिसका नाम था हकीकत। ये फिल्म जो है 1962 के चीन भारत युद्ध पर पिक्चराइज किया गया था और लड़ रहे सैनिकों की पलटन को लद्दाख के पर्वतीय इलाकों में मृत्यु मान लिया जाता है। हालांकि उन्हें लद्दाख की जनजातीय और कैप्टन बहादुर सिंह द्वारा बचाया जाता है और फिल्म में ये आखिरी तक थोड़ा सस्पेंस बना रहता है, लेकिन इसके बाद जब लोगों को पता चलता है तो लोगों में एक बड़ा उल्लास आता है। तो 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। चेतन आनंद इसके निर्देशक रहे। हरमिंदर, बलराज साहनी, विजय आनंद इस फिल्म के मुख्य कलाकार के रूप में काम किया है। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना, जिसे कैफी आजमी साहब ने लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने आवाज दी थी, मदन मोहन जी ने संगीत से संवारा था। तो सुनते हैं ये खूबसूरत देशभक्ति वाला गीत आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। ख्वाबों का सफर और मैं हूँ आपका हम सफर सनी। तो चलिए दोस्तों, 1960s और 70s की कुछ खास बातें मैं आपको सुना रहा हूँ, कुछ खास फिल्मों के कुछ खास गाने आपको सुना रहा हूँ। तो आइए, 1968 में एक और खूबसूरत फिल्म आई थी जिसका नाम था आदमी। ये फिल्म जो है एक जुनूनी युवक की कहानी को बताता है और एक दुर्घटना के बाद व्हीलचेयर तक सीमित हो जाता है वो, और उसे तब पता चलता है कि उसकी मंगेतर और उसके सबसे अच्छे दोस्त प्रेम संबंध में हैं। उसका क्रोध उससे उसके सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ जानलेवा मनसा में बदलता। तो ये कहानी में इस तरह का क्लाइमैक्स बताया गया है और कलाकार के रूप में इस फिल्म में दिलीप कुमार, मनोज कुमार, वहीदा रेमन और प्राण है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और इस फिल्म में दो खूबसूरत गाने हैं, वो भी क अक्षर से यानी के से। तो बैक टू बैक दो गाने इस फिल्म का आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आदमी फिल्म का दो गाने बैक टू बैक आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। और दोनों गाने में जैसे कि कल के सपने इसे शकील बदायूं साहब ने लिखा था, लता मंगेशकर ने गाया था, नौशाद जी ने संगीत से सवारा था, और उसके बाद जो गाना हमने आपको सुनाया उसे भी शकील बदायूं साहब ने लिखा, महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, नौशाद जी का संगीत था। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत फिल्म की बात करते हैं जो 1968 में ही रिलीज हुई, जिसका नाम था किस्मत। जी हाँ, किस्मत शब्द को सुनकर कभी कभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और इस शब्द में ही इसका रहस्य भी समाया हुआ है। KISMAT कहा जाता है किस्मत को, तो किस यानी KIS को अलग कर दीजिए, MAT को अलग कीजिए, यानी किस्मत पर आप चलेंगे तो किस्मत आपका बनेगा, ये इसमें बताया जाता है। तो अगर आप किसी अच्छे विचारधारा को लेकर सत्य की राह पर चलेंगे तो मुश्किलें जरूर आएंगी लेकिन किस्मत जरूर बन जाएगी, लेकिन अगर हम स्वार्थ के अधीन होकर लोभ लालच में कहीं हम भटक कर रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं, कम समय में पैसा मिल जाता है लेकिन किस्मत तो बिगड़ ही जाती है ना। इसीलिए इस धोखे में मत रहिएगा, सत्य की राह पे चलिए और जीवन को सुंदर बनाइए, किस्मत को चमकाइए। इस किस्मत फिल्म में हीरो को एक संगीतकार के रूप में बताया है, और वो एक दौड़ पर है जब कुछ गुंडे उनके गिटार में छिपाए हुए माइक्रो डॉट को पुनः प्राप्त करने उसका पीछा करते हैं। वो एक जवान औरत से मिलता है जो अपने घर से भाग आई होती है। थोड़ा सस्पेंस फिल्म है और मनु देसाई के निर्देशन में ये फिल्म 1968 में रिलीज हुई थी। ओपी नैयर साहब ने संगीत से सवारा है और कमल मेहरा ने इसे निर्माण किया है। कलाकार के रूप में बबीता विश्वजीत, हेलन मुराद, उल्लास ने काम किया है। तो इस फिल्म का एक बहुत ही अच्छा गीत है गजरा मोहब्बत वाला, SH बिहारी साहब ने इस गीत को लिखा है, आशा भोसले शमशाद बेगम ने इस गीत को गाया है, ओपी नैयर का संगीत। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, बहुत ही मस्ती भरा गीत आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। तो 1968 के बाद चलते हैं 1969 की ओर। 1969 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इंतकाम। एक गरीब लड़की की कहानी है जिसका नाम रीटा है। रीटा को झूठे सोहनलाल द्वारा फंसाया जाता है। जेल से उसकी रिहाई के बाद जब वो बदला लेना चाहती है, वह हीरालाल सोनालाल के पूर्व व्यापार भागीदार से मिलती है और इस तरह से कहानी में बदले की भावना को अंजाम देने में इंतकाम चलता है। तो आइए, इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है जो मैं आपको सुनाऊंगा, और इस फिल्म के निर्देशक आर के नैयर हैं। दीवान नैयर साहब ने इस निर्माण किया है, और कलाकार के रूप में हेलन साधना, संजय खान, जीवन और अशोक कुमार है। तो इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। तो राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा ये खूबसूरत गाना लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और इसी के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाजत। इसी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल कटारा की छिके।
2: मेरा तो शादी का कोई इरादा नहीं, मैं तो सोच रहा था कि मार्च में एमएससी का एग्जाम देकर किसी नौकरी पे लग जाऊंगा, कहीं एस्टैब्लिश हो जाऊंगा, कमाने लगूंगा, फिर शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन ये सब,
3: इसका मतलब है कि फिलहाल तुम उससे शादी नहीं कर सकते, और ना ये चाहते हो कि सावित्री की शादी सागर या किसी दूसरे के साथ हो।
2: मैं तो यही चाहता हूं सर, लेकिन उधर मां का दबाव, सागर के एहसान, मुझे तो डर लगता है सर। सर, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप मेरे गॉडफादर हैं, आप मेरे फादर बनकर उनसे बात कीजिए ना, आप हम दोनों को बचा सकते हैं।
3: डोंट वरी माय सन, सावित्री की शादी तुम्हारे साथ ही होगी, मैं उनसे जाकर रिश्ते की बात करूंगा।
2: थैंक यू सर।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ब्लैक बॉल हो सकती है। क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ

0: से मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ।
1: मनन से मनोबल।

0: पता है पुराना स्तंभ जी, मेरा नाम मनु क्यों है?
1: क्यों? बताओ तो जरा।
0: क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम भी मनु था, इसलिए मेरा नाम भी मनु है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और मुझे ना सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी वो कविता भी याद है।
1: कौन सी?
0: सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ब्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी,
2: बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
1: वाह, कमाल की कविता है ये तो। क्या तुम पुराना साहित्य पढ़ती हो मनु?
0: नहीं, बहुत तो नहीं, बस जितना स्कूल में पढ़ा था।
1: वैसे कहते हैं किताबें हमारी सबसे अच्छी साथी होती हैं।
0: हाँ वो तो है, लेकिन मुझे ना केवल नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। हाउ एक्साइटिंग दे आर ना।
1: मनु हमारा चेतन मन जो पढ़ता है, देखता है, सुनता है, वो वहीं तक सीमित नहीं रहता, वो हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है।
0: अच्छा।
1: धीरे धीरे हमें उसी तरह के विचार भी आने लगते हैं, और फिर हमारे कर्मों पर भी उसका असर पड़ता है।
0: लेकिन तो क्या पढ़ना सुनना देखना सब बंद कर दूं? ये तो पॉसिबल नहीं है पुराना स्तंभ जी।
1: बंद मत करो, लेकिन चुनो क्या अच्छा है तुम्हारे मन के लिए। तुम्हें पता है, अभद्र चित्र, वीडियोस, किताबें हमारे मानस पटल पर दुष्प्रभाव छोड़ते हैं, और धीरे धीरे हम इनके भी आदि हो जाते हैं।
0: ठीक है, मैं ना ध्यान रखूंगी। आखिर कर तो आप मेरे ही फायदे की बात रहे हैं।
1: तो चलो अब मैं सावित्रीबाई फूले की आगे की कहानी सुनाता हूँ। जब सावित्री फूले स्कूल जाती थी,
0: हाँ?
1: तो लोग पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे।
0: अरे,
1: आज से 60 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, न जाने कितनी सामाजिक मुश्किलों से खोला गया होगा देश में एक अकेला बालिका विद्यालय। सावित्री बाई फूले पूरे देश की महानायिका है।
0: बिल्कुल।
1: हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया है।
0: अच्छा।
1: जब सावित्री बाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी,
0: हाँ?
1: तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंक देते थे। सावित्री बाई एक साड़ी अपने साथ थैले में लेकर चलती थी।
0: ओह।
1: और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी।
0: क्या बात है।
1: अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती थी। ऐसा देखा गया था कि जो महिलाएं या बच्चियां विधवा हो जाती थी, उन्हें अपने सर के सारे बाल कटवाने पड़ते थे।
0: ओह माय गॉड।
1: और बेहद साधारण जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उस समय सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने मिलकर नाइयों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।
0: अच्छा।
1: और महिलाओं को बाल कटने से बचवाया।
0: अरे वाह।
1: इस समय सामाजिक सुरक्षा न होने के कारण महिलाओं पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। कई बार गर्भवती महिलाओं को बेटी पैदा होने पर बहुत प्रताड़ित किया जाता था।
0: बेटी पैदा होने पर प्रताड़ित
1: या गर्भपात भी करा दिया जाता था। ऐसी महिलाओं के लिए भी सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने आवाज बुलंद की थी।
0: अच्छा।
1: सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई और सावित्री बाई फूले इस समाज की अति समर्पित कार्यकर्ता थी। ये संस्था दहेज मुक्त बिना पंडितों के विवाह का आयोजन करवाती थी।
0: अरे वाह!
1: सभी पुजारियों ने इस तरह के विवाहों का विरोध किया और वे इस बात को लेकर कोर्ट तक भी जा पहुंचे। सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले की गोद ली हुई संतान यशवंत फूले बड़े होकर डॉक्टर बने।
0: अच्छा।
1: उन्होंने पुणे में ही अस्पताल खोला जहां मरीजों की सेवा सावित्री बाई भी किया करती थी।
0: अरे वाह!
1: जब उन्हें ज्ञात हुआ कि प्लेग की बीमारी आसपास सभी जगहों पर फैल गई है, तो उन्होंने अपने पुत्र यशवंत की मदद से पीड़ितों की संभाल करना शुरू कर दिया। हालांकि सावित्री बाई को ये पता था कि ये संक्रामक बीमारी है, फिर भी वो पीछे नहीं हटी, बल्कि प्लेग से पीड़ित लोगों को खुद अस्पताल पहुंचाया करती थी।
0: अच्छा।
1: एक बार तो एक बालक को प्लेग से बचाने के उपचार में खुद सावित्री बाई फूले को भी बीमारी लग गई थी। वे कभी कोई रंग भेद या जाति भेद नहीं करती थी और ना ही करने देती थी। उनकी सोच तो महान थी ही, उनके कृत्य भी उतने ही महान थे। मनु,
0: बिल्कुल सच में।
1: अस्पताल में सभी मरीजों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। सावित्री बाई फूले ने अपना संपूर्ण जीवन मानव जाति की सेवा में लगाया। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्री बाई फूले का निधन हो गया। उन्होंने सदैव ही अपने पति का साथ दिया। समाज को अपने लक्ष्य के आगे नहीं आने दिया। वे सच में आज की महिलाओं के लिए मिसाल है।
0: बिल्कुल।
1: उनका पूरा जीवन समाज में वंचित तबके, खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए ही संघर्ष में बीता।

0: उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, जो वाणी से उच्चार करे वैसा ही बर्ताव करे, वे ही नर नारी पूजनीय, सेवा परमार्थ पालन करे व्रत यथार्थ, और हो वे कृतार्थ वे सब वंदनीय। सुख हो दुख कुछ स्वार्थ नहीं, जो जतन से कर अन्यों का हित वे ही ऊंचे, मानवता का रिश्ता जो जानते हैं वे सब सावित्री कहे सच्चे संत।
1: क्या बात है, ये कविता तो कमाल की है।
0: ये है सत्य नारी की प्रतिमा, अडोल सशक्त स्वाभिमानी और कल्याणकारी।
1: सच में, लेकिन आजकल के कुछ वीडियोस फोटोज ये सब नारी की गरिमा के विरुद्ध हैं।
0: लेकिन इसे खत्म कौन करेगा मनु?
1: कौन कर सकता है पुराना स्तंभ जी, ये तो सोशल मीडिया है, सभी को पूरी आजादी है।
0: ये खत्म हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा वीडियो या फोटो आए जो अश्लीलता को बढ़ावा देता हो, बस हम उसे आगे फॉरवर्ड ना करें। हम सब ऐसा करेंगे तो क्या नहीं हो सकता।
1: बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मैं पूरा प्रयास करूंगी पुराना स्तंभ जी। मैं भी नहीं चाहती ऐसे किसी भी वीडियोस को देखने के बाद किसी की दुर्भावनाओं को कुछ गलत करने की प्रेरणा मिले।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ये हमारा ही कर्तव्य है। इसके लिए हम सभी को सजग होना पड़ेगा कि हम किसी भी ऐसी चीज को आगे दूसरों को न भेजें जो हमें खुद को अच्छी नहीं लगती है।
1: जी पुराना स्तंभ जी, और ये जरूर रुकेगा आपकी कहानी और शिक्षाओं के लिए। थैंक यू कहना तो थोड़ा कम लग रहा है, मगर और कोई शब्द भी तो नहीं है, इसलिए थैंक यू पुराना स्तंभ जी। बाय बाय।
0: बाय बाय मनु।
1: पुराने स्तंभ जी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब अपने एक्सपर्ट जी से कुछ अन्य विशेष बातें जानते हैं सावित्री बाई फूले जी के बारे में।
2: ऐकतो किंवा वाचन करतो त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की एवढंच आहे यांच्याबद्दल, परंतु असे काही गोष्टी असतात त्या लोकांपर्यंत पोहोचले नसतात। तसं सावित्रीबाई फुले यांच्या जे लोकांना माहिती नसेल त्याच्याबद्दल सांगा।
3: सावित्रीबाई फुले यांनी महात्मा फुलेंच्या निधनानंतर सत्यशोधक समाजाची धुरा आपल्या हातामध्ये घेतली होती, आणि सत्यशोधक समाजाची धुरा हातामध्ये घेतल्यानंतर त्यांनी समाज सुधारणेच्या कार्यामध्ये स्वतःला वाहून घेतलेलं होतं। त्यांनी आपल्या क्षण हा समाज सुधारणेच्या कार्यासाठी त्या ठिकाणी उपयोगी आणलेला आहे। सावित्रीबाई फुलेंचं काव्य फुले हा काव्य संग्रह प्रसिद्ध आहे, याच्यामध्ये त्यांची जवळजवळ 814 गीत प्रसिद्ध झालेली आहेत। तसेच 52 कशी सुबोध रत्नाकर हा पुस्तक संग्रही त्यांचा त्या ठिकाणी प्रसिद्ध आहे।
2: इतिहासामध्ये खास पुणे आणि महाराष्ट्र यासाठी सावित्रीबाई फुले यांचं विशेष कुठला योगदान आहे?
3: सावित्रीबाईंचं शिक्षणाचं जे कार्य आहे ते पुण्यामध्ये सुरू झालेलं आहे। त्यांनी रास्ता पेठेमध्ये मुलींची शाळा इथे सुरू केलेली आहे, तसंच भिडेवाड्यामध्ये मुलींसाठी शाळा सुरू केलेली आहे। म्हणजे त्यांचं शिक्षणाचं जे कार्य आहे ते पुण्यामध्येच आहे। त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ आपण युनिव्हर्सिटीला नाव सुद्धा सावित्रीबाई पुणे विद्यापीठ दिलेलं आहे। सावित्रीबाई फुलेंनी त्यामुळं पुण्याच्या सुधारणेच्या कार्यामध्ये किंवा स्त्रियांच्या कार्यासाठी त्यांचं योगदान भरपूर आहे की ज्याचा खरंच प्रत्येक स्त्रीला या ठिकाणी अभिमान वाटावा। सावित्रीबाईंनी जसं आत्ताच्या काळामध्ये सुद्धा त्यांचं नाव म्हणजे त्यांचं कार्य इतकं उल्लेखनीय आहे की या ज्या सावित्रीबाई आहेत त्यांनी स्त्रियांना स्त्री द्राक्षातून स्त्रियांची मुक्तता तर केलीच, पण याशिवाय त्यांच्या कार्याचं स्मरण करताना आपल्याला महात्मा फुले ज्योतिबा फुलेंना विसरून चालणार नाही, कारण त्यांनीच सावित्रीबाई फुलेंच्या जीवनामध्ये शिक्षणाची ज्योत प्रज्वलित केली आहे। आणि म्हणूनच आपल्याला या ठिकाणी एक विचार मला सांगावा असं वाटतो जो सावित्रीबाईंचा आहे की शिक्षणामुळे व्यक्तिठायी असणारी असामाजिक अमानवी प्रवृत्तीकडे पाहण्याची डोळस दृष्टी माणसामध्ये निर्माण होते, आणि ही डोळस दृष्टी म्हणजे ज्ञानांचं जे अमृत आहे किंवा ज्ञानाचा जो दिवा आहे तो प्रत्येकाच्या मनामध्ये तेवण्याचं काम सावित्रीबाई आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी केलेलं आहे।
2: सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल एवढी सुंदर माहिती दिली त्याबद्दल तुमचा फार फार धन्यवाद, शुक्रिया।
1: एक्सपर्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ मनु दोस्तों और सावित्रीबाई फूले जी से हमने बहुत कुछ सीखा, आपने भी बहुत कुछ जरूर सीखा होगा। मेरी सबसे पसंदीदा बात क्या है? वेल, सोचने बैठती हूँ तो इन सभी कहानियों में ये विशेष बात ढूंढनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इतनी विशेषताएं हैं कि किसे चुना जाए समझ ही नहीं आता। फिलहाल आज मुझे जिस बात ने बहुत आकर्षित किया वो था दहेज मुक्त विवाह के बारे में चलाया गया आंदोलन। सावित्रीबाई फूले जी ने सत्यशोधक समाज द्वारा दहेज मुक्त शादियों के बारे में बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन आज अगर अपने समाज की ओर देखें तो दहेज प्रथा संपूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं हुई है। फिर कहीं शगुन के रूप में, तो कहीं लड़की के पिता की तरफ से प्यार से दिए गए तोहफे के रूप में, तो कभी किसी और नाम से दहेज को बढ़ावा मिलता ही रहता है। तभी शायद आज एक पिता के घर जब बेटी का जन्म होता है तो ये डर साथ आता है कि बहुत सारी सेविंग्स करनी है, क्योंकि शादी में ये भी देना है, वो भी करना है और न जाने क्या क्या। दोस्तों, हम सब मिलकर अगर प्रयास करें तो हम इस प्रथा को समाप्त कर सकते हैं। न कोई गिफ्ट की आवश्यकता है, न किसी भी तरह के लेन देन की। अगर हम शादियों पे खर्चा कम कर अपने जीवन, अपने शिक्षा पे खर्चा ज्यादा करें, समाज की सेवा पे खर्चा करें, अपने जीवन को सुंदर बनाने पे करें, तो कितना कुछ बदल सकता है, सोच के देखिएगा दोस्तों। मैं लूंगी आपसे इजाजत, आप सुनते रहिए रेडियो पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को एक नए अंदाज से देखते आ रहे हैं हम, और हमने ये जाना कि वही रिश्ते जो कई बार बोझ लगने लगते थे, लगता था कि अरे ये रिश्ता कैसे निभेगा, अगर खुद को पहचान के फिर इस रिश्ते को देखा तो लगा कि यही रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी एक रिश्ता बाकी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और वो है रिश्ता मेरा खुद अपने आप से और परमात्मा से, जिसे मैं आज तक तलाश रहा था और आज खुद उसने अपनी पहचान दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हमने हर रिश्ते को नए अंदाज में देख लिया, उसे अच्छी तरह से जाना और फिर देखा कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है, और हर बार की तरह एक्सपीरियंस के बाद ही हम ये बात कहने लायक बनते हैं। अभी भी एक रिश्ता बाकी है और वो मेरा खुद से। अपनी पहचान तो मैंने कर ली, परमात्मा से पहचान भी हो गई, लेकिन वो रिश्ता मैंने अपने आप से कायम किया या परमात्मा से कायम किया, वो रिश्ता कैसा होना चाहिए?
1: किसी भी रिश्ते को बनाने में इनिशियल स्टेजेस में चाहिए होता है समय। यू नो, हम कहते हैं रिश्ते की फाउंडेशन है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लेकिन ये भी जो डेवलप होती है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम बिकॉज आई वर्क ऑन द रिलेशनशिप। जितना मैं आपसे मिलती जाऊं, आपके संपर्क में आऊं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो वो ट्रस्ट डेवलप होता है या वो रिस्पेक्ट जिस लेवल पर चाहिए वो डेवलप होती है। लेकिन आज के वर्तमान भाग दौड़ के समय पर हम औरों के लिए तो सबके लिए समय निकाल देते हैं, दोस्तों के लिए, परिवार, कोलीग्स, एवरीबडी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारी टाइम और एनर्जी इतनी फिनिश हो जाती कि हम कहते हैं अपने लिए समय निकालना। सो इफ वी आस्क एनीबडी कि आप रोज सवेरे अपने लिए 15 मिनट निकालिए, जिसमें आप सिर्फ अपने आप के साथ हैं और आप उस परमात्मा के साथ हैं, एंड दैट टू अर्ली मॉर्निंग, जब आपके बाकी सारे रिश्ते सोए हुए हैं। क्योंकि जैसे ही आपके सारे रिश्ते बाकी जाग जाएंगे, यू विल अगेन गेट इनटू दैट एनर्जी एक्सचेंज, व्हिच इज ओके, व्हिच इज फाइन, लेकिन उससे पहले 15 मिनट फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, क्या हम निकालने के लिए रेडी हैं? तो जनरली पीपल विल इमिजिएट, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, टाइम नेम।
0: अच्छा, और यहाँ एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि हम यूजुअली ये समझते हैं कि मैं सबको वक्त दे रहा हूँ, अपने को वक्त नहीं दे रहा, तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ।
1: दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि हम समझते हैं अपने को वक्त देना,
0: आई एम सो सेल्फलेस, आई डोंट इवन बॉदर अबाउट माई सेल्फ, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर अदर्स, बट आई थिंक समवेयर वी फॉरगेट।
1: एब्सोल्युटली। एक हम साइकाइट्रिस्ट से मिले, जो बहुत सीनियर लेवल के साइकाइट्रिस्ट हैं, जो लोगों के स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीजों को ट्रीट करते हैं। लेकिन कहीं उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि वो खुद बहुत तनाव में है, तो उनसे बात करते हुए हमने कहा कि व्हाई डोंट यू टेक आउट 15 मिनट्स फॉर योरसेल्फ एवरी डे। सो ही सेड 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, नो सिस्टर, आई हैव नो टाइम, एंड ही वॉज वेरी proud of this, ke I do not have 15 minutes.
0: I give all my time to others.
1: To everybody. Kyunki mujhe dusron ko heal karna hai. And he said like, 14 ghante mere apne profession mein jaate hain. My work is my top priority. To 14 ghante mere din mein uske liye hote hain. Baki commuting, travel time, aur jo thode se 2-3 ghante bach jaate hain, wo mere parivar ke liye hote hain. To ab is sab mein apne liye samay nikalna, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप कुछ और बताइए, लेकिन मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता, बिकॉज माई टाइम इज फॉर एवरीबडी। तो हमने कहा प्रायोरिटी इन लाइफ क्या है? वर्क, फैमिली, एंड देन सेल्फ, एंड दिस हैज बिकम प्रायोरिटी फॉर मेजोरिटी पीपल। यू नो, सभी जो वर्किंग लोग हैं, काम, वर्क प्लेस, फिर परिवार, और फिर हम खुद। और ये दोनों कैटेगरीज, परिवार एंड वर्क प्लेस, इतनी सारी टाइम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कि थर्ड स्टेप तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते, हम बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। सो नाउ ईच वन नीड्स टू आस्क देमसेल्फ्स कि वर्क, फैमिली, सेल्फ, इज दिस द राइट ऑर्डर? एंड एवरीवन फील्स दिस इज द राइट ऑर्डर बिकॉज दे से आई गेट पेड एट वर्क, यू नो, तो मेरा कर्म मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर मेरी फैमिली, यू नो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। वी वुड फील विद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वी कम टू दिस कंक्लूजन कि इट शुड बी टोटली द अदर वे अराउंड। क्योंकि काम पे भी हम क्यों जाते हैं? अपने परिवार के लिए, उन्हीं के लिए वो खुशियां, वो सब कम्फर्ट जो भी हमें लाने हैं, उसके लिए हम काम पे जाते हैं। तो काम से ऊपर एक्चुअली
0: परिवार
1: है, डेफिनेटली, नहीं तो मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है। अब परिवार को भी मुझे जो देना है खुशी, सुख, शांति वो मैं तब दे पाऊंगी जब वो मेरे अंदर भरी होगी. तो फिर परिवार से भी ऊपर हो गया myself. Now when I put the equation the other way around, work, family, self, तो self के लिए समय नहीं निकाला. इंटरनल रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब है, कॉन्फ्लिक्ट है. उस कॉन्फ्लिक्ट की हालत में सुबह सुबह परिवार के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो भी क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, टाइम नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर हम ऑफिस पहुंच जाते हैं और वो एनर्जी लेवल हम ऑफिस में कैरी करते हैं और वो हम सभी को ट्रांसमिट करते हैं. तो बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग आउट टाइम फॉर माई सेल्फ उसका असर परिवार पे भी पड़ा और वर्क पे भी पढ़ा. तो ये कहना कि ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है इज नॉट फेयर, क्योंकि हम उसके साथ भी चीटिंग कर रहे हैं. वी आर ओनली गिविंग नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो हमारी गलती भी नहीं है, वो हमारे पास है. नाउ इफ आई चेंज द ऑर्डर एंड आई से सेल्फ फैमिली एंड देन वर्क, यू नो सेल्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट्स टॉप ऑन द थिंग.
0: आई थिंक बाकी दोनों चीजें सेल्फ पे डिपेंडेंट है.
1: लेकिन सेल्फ जब हील्ड होगी, अंदर से बिल्कुल भरपूर होगी, उस आत्मा के रिलेशनशिप्स कैसे होंगे परिवार में, वेरी हेल्दी. और एक हेल्दी फैमिली को छोड़कर जब आप काम पर जाएंगे तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, यू विल बी टोटली एम्पावर्ड टू गिव एवरीथिंग टू वर्क. तो यू विल बी डूइंग जस्टिस टू ऑल थ्री, रादर राइट नाउ वी आर चीटिंग ऑल थ्री बाई सेइंग आई डोंट हैव टाइम. तो अपने लिए समय निकालना, वी शुड रिमेम्बर दैट आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड. Because unless I am healed, I cannot do anything.
0: I cannot achieve anything. That's very true.
1: मैं कुछ भी नहीं
0: कर सकती. I have met people, एक social organization में मैं थी, they said कि हम New Year resolutions की बात कर रहे थे, तो almost everybody was saying कि मैं लोगों के लिए help करूंगा, मैं इतने लोगों को introduce करूंगा इसके बारे में. लेकिन finally I think क्योंकि हम खुद ही हील्ड नहीं है तो हम लोगों को क्या बता सकते हैं.
1: क्योंकि आज जो सबको चाहिए वो ये चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, ये सबको चाहिए. और ये सबको देने के लिए मेरे अंदर खुद कूट कूट के भरी होनी चाहिए और उसके लिए मुझे चाहिए अपने आप से बहुत अच्छा संबंध और इन सब का जो सागर है, जो स्रोत है, निराकार परमात्मा जिसको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, तो उसके साथ जब संबंध जुड़ जाता है तो जो उसके पास है वो ऑटोमेटिकली सब मेरा हो जाता है. सो आई गेट फिल्ड इनसाइड एंड देन आई एम एबल टू गिव टू एवरीबडी. अब जब हम अपने साथ संबंध जोड़ना शुरू करते हैं तब अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होता है.
0: खुद में विश्वास,
1: आज खुद में विश्वास नहीं है, आज हमारे खुद की रिस्पेक्ट हम नहीं करते हैं डेफिनेटली. और उसका प्रूफ यही है कि हमें औरों को रिस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है और जब कोई और हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं. अगर सेल्फ एस्टीम बोई अंदर अगर खोखलापन है तो जैसे ही दूसरा कोई हमें छोटी सी ऐसी बात कहेगा तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे. जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूँ और उस रिस्पेक्ट से अपने आप को देखते हैं कि आई एम नॉट व्हाट आई हैव अचीव्ड इन लाइफ बट आई एम व्हाट आई एम हियर इनसाइड, तो फिर कोई और मुझे हर्ट नहीं कर सकता. आई टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट, और ट्रस्ट मतलब मैं जो सोचूंगी
0: सही सोचूंगी
1: और वो ही बोलूंगी और वो ही करूंगी. तो ऑनेस्टी विद द सेल्फ, अपने आप से धोखा करना बंद कर देंगे. जब अपने आप से धोखा करना बंद करेंगे औरों से धोखा अपने आप बंद हो जाएगा और दूसरे मेरे साथ धोखा करने वाले हैं,
0: दूसरों की उम्मीद भी बंद हो जाएगी. हाँ.
1: दूसरे मेरे साथ धोखा करने वाले हैं ये डर से भी मुक्त हो जाएंगे. तो व्हेन आई स्टार्ट ट्रस्टिंग माई सेल्फ, मेरा औरों को विश्वास करना बहुत ईजी और मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, इस विश्वास के साथ चलना भी बहुत ईजी. ये सारा दिन डर रहना कि मुझे धोखा तो ना दे दे, मुझे छोड़ के तो ना चले जाए, ये सिर्फ उसी आत्मा के अंदर होगा जो अपने आप को बहुत धोखा देती है. सोचती कुछ और है, करती कुछ और है. जिस दिन वो बंद हो गया धोखा देना, थिंग्स गोइंग टू बी वेरी इजी. लेकिन उसके लिए अपने साथ वो रोज समय निकालना पड़ता है जिसमें हम अपने आप से बैठकर कहें कि सेल्फ काउंसलिंग करते हैं. वी सॉ ड्यूरिंग दिस होल जर्नी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए टॉक टू योरसेल्फ, क्योंकि अपने आप की जो हम काउंसलिंग कर सकते हैं वो शायद कोई भी और नहीं
0: और
1: कर
0: सकते. अपने आप से जब हम बात करने लगते हैं, काउंसिल करते हैं, तो आंसर्स भी मिलने लग जाते हैं.
1: आंसर सारे यही हैं. सारे आंसर्स यही हैं, क्योंकि सोल का, आत्मा का पूरा रोल इस सीडी के अंदर रिकॉर्डेड है. यू नो, तो अगर मेरे को कल कुछ काम है या कोई प्रॉब्लम है, मुझे अगर उसका आंसर चाहिए कि कल उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आप मुझे नहीं बता सकते क्योंकि आपकी वो सिचुएशन नहीं है। हाँ, आपके अनुभव से मैं कुछ ले सकती हूँ प्रेरणा, लेकिन फाइनल डिसीशन कि मुझे क्या करना होगा हैज टू बी माइन। तो इफ आई कैन बी साइलेंट, आई कैन एक्चुअली सी कि मेरा रोल कैसे इवॉल्व होने वाला है, क्योंकि सारा रोल तो यहाँ पर रिकॉर्डेड है। तो इसलिए साइलेंट हो जाए तो उससे क्या होगा, इंट्यूशन पावर, क्योंकि व्हाट आई कैन सी मतलब इंट्यूशन, मुझे ऑलरेडी फीलिंग आ जाएगी कि ऐसे करना है, सोल्यूशन आ जाएगा। क्यों? माइंड साइलेंट, लेकिन माइंड में क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे, ये जब ऊपर की लहरों में सारी डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो सोल्यूशन है लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो अंदर का जो ट्यूटर है उसकी तरफ नहीं देखे, और बाहर के सब ट्यूटर्स की तरफ देखते हैं, तो एडवाइस मिलेगी बट नॉट नेसेसरी दैट इट विल ऑलवेज बी राइट फॉर मी। वो अपनी तरफ से बिल्कुल राइट बताएंगे,
0: वो उनके लिए सही होगा। हाँ।
1: लेकिन मैं जिस सिचुएशन में हूँ वो सिर्फ अंदर के ट्यूटर को पता है कि वो कैसे करना है। तो दैट इंट्यूशन पावर विल ऑल्सो डेवलप, रिस्पेक्ट फॉर हु एम आई एंड ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, ये जब बन गया तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक हम कहते हैं मुझे सबकी जिम्मेवारी उठानी है,
0: लेकिन उससे पहले आपने कहा ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली, कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ या मैं जो करने जा रही हूँ वही सही है। हम 50 बार सोच रहे होते क्या मैं करूँ या नहीं करूँ, ऐसे करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो अगेन,
1: क्योंकि हमारी निर्णय शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि निर्णय शक्ति बुद्धि का काम है और ये कमजोर हो गई है, और मेडिटेशन से ये वापस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इट विल बी लाइक दिस, आप एक सेकेंड में डिसीशन लेंगे और आपका डिसीशन एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि एक तो आपका कनेक्शन उस सर्वशक्तिवान से भी जुड़ा है, और जब उस ऑल माइटी अथॉरिटी की पावर आपके साथ है, आप हर कर्म करते हुए यू विल हैव दिस क्लियर।

0: मतलब सोल कॉन्शियसनेस, तो आत्मा अभिमानी जब हो जाएंगे तो इंटेंशंस प्योरिफाई होते जाएंगे, ग्रीड, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ये सब कुछ तो हटता जाएगा। तो जिस कर्म के पीछे की इंटेंशन ठीक होगी, कर्म का रिजल्ट
1: अपने आप
0: ठीक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक है। और जब हम ये डेवलप कर लेंगे तो अपने कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ये इजी हो जाएगा। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं, लेकिन अपनी मन की स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। हम कहते हैं आई एम डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ यू, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ यू, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ यू, सो दैट्स नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम अपने साथ ये समय बिताना शुरू करते हैं तो मुझे क्लैरिटी आ जाती है कि ये इनर प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ये सारा मेरे कंट्रोल में है। तो हर संकल्प की जिम्मेवारी
1: मैं खुद उठा सकता हूँ, और इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क हियर, कि मैं जानते हुए अगर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैं अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ वो कर्म करने जा रहा हूँ, सो आई थिंक वो उसका रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए।
0: तो तीन चीजें जो संबंधों में चाहिए, विश्वास, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबसे अच्छी बहुत बढ़िया से जुड़ जाएगी। और जब वो अपने साथ हो जाएगी तो औरों के साथ करना बहुत इजी हो जाएगा।
1: परमात्मा से रिश्ते की बात करते हैं, ये वो रिश्ता है जिसको हम सब बहुत ज़्यादा तलाश रहे थे। अगेन, खुद से बात करना, यानी मैं अपने आप को, क्योंकि मैं देख तो पा रहा हूँ कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस में हम इतना है कि मैं अपनी बॉडी का एहसास तो है, परमात्मा वो पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको हर बार मैं इमेजिन ज़रूर करूँ जब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ये बातचीत है उसका जवाब मैं, मुझे लगता है कि क्या मुझे मिलेगा, और वो जो तलाशना है, या वो जैसे कहा आपने कि वो कहीं वो विश्वास या वो रिश्ता, एक बार हमने पहले बात की थी कितनी देर लगेगी, तो आपने कहा था कि जहां पहचाना वहीं रिश्ता बन गया, लेकिन हाँ उसमें जो दृढ़ता है, सुदृढ़ता है, वो उसमें समय लग सकता है। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि किस आस्पेक्ट को लेके हम उस रिश्ते को और स्ट्रांग करें।
0: एक्चुअली जो समय लगता है वो आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने में नहीं लगता है, वो एक क्षण लगेगा। समय जो लगता है वो लगता है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाने में, क्योंकि अभी हम जब बैठते हैं याद करने या संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम अभी तक वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो शरीर के भान में जब होंगे तो शरीर से संबंधित सारी बातें याद आएंगी, मन उन्हीं की तरफ चलता रहेगा, तो हमें लगता है बट आई एम गिविंग टाइम, आई एम सिटिंग टू डू मेडिटेशन, तो क्यों नहीं मुझे अनुभव हो रहा। तो सेकेंड स्टेज पहले नहीं अचीव हो सकती है, पहले फर्स्ट स्टेज को करना पड़ेगा। तो इसलिए सोल कॉन्शियसनेस ये फर्स्ट स्टेप है। जब तक हम इसको नहीं ठीक से प्रैक्टिस करते हैं, हमें थोड़ा सा समय लगेगा, अनुभव अभी भी होगा लेकिन हमें थोड़ा सा लगेगा कि आज तो लगा, यू नो मोस्टली पीपल फील आज तो बहुत अच्छी तरह से अनुभव हो रहा था, अब फिर अगले दिन फील करेंगे आज तो बिल्कुल अनुभव नहीं हुआ, बिकॉज दैट डिपेंड्स मोर ऑन माई कॉन्शियसनेस कि मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ या सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस अर्थात अपने आप को उस स्वरूप में अनुभव करके मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा स्वरूप में जब टिक गए, ताकि यहाँ की दुनिया की जो सारी बातें, जो सारे संकल्प थे वो फुल स्टॉप। ये नहीं कि बैठे हैं मैं आत्मा हूँ, वो आज क्या बोला उन्होंने, ऐसे क्यों बोला, नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ,
1: कि वहाँ ये हुआ, वहाँ से वो हो गया, then you come back, नहीं मैं point of light हूँ, फिर again आप,
0: so you are going on the seesaw, मैं आत्मा हूँ लेकिन ऑफिस में क्या हुआ, मैं आत्मा हूँ लेकिन मेरे बच्चों ने ऐसे क्यों कहा, सो यू नॉट रियली सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियस मतलब फिर उसको आत्मा के अलावा और कोई संकल्प नहीं आएगा, आत्मा के स्वरूप के अनुभव के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो मॉर्निंग में जब हम बैठते हैं इसका अनुभव करें, इसका प्रैक्टिस करें, लेकिन उसको सिर्फ मॉर्निंग तक नहीं रिस्ट्रिक्ट करें, उसको सारा दिन हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारा दिन अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो उसी के इम्प्रेशंस बनते जाएंगे। सी दिस इज लाइक अ शूटिंग व्हिच इज टेकिंग प्लेस द होल डे, कि सारा दिन हर एक को मिले, हर एक संकल्प क्रिएट किया, संकल्प किया कर्म में आया, कर्म का इम्पैक्ट रिकॉर्ड होता गया। अब जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो सारी सीडी जो रिकॉर्ड हुई होती है वो प्ले करती है ना। अब अगर सीडी में सारे बॉडीली रिलेशंस, बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें वो ही रिकॉर्ड किए और फिर बैठ गए, सीडी प्ले हो गई, उसमें सारी वही बातें रिवाइंड

0: हो रही है और हम बीच में बोल रहे हैं नहीं लेकिन मैं आत्मा हूँ, यू नो, देन दैट कॉन्फ्लिक्ट विल बी देयर एंड देन आई विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट. तो इसलिए सारा दिन में एक कॉन्शियस अटेंशन रखना ये बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. उससे फिर वो जब मॉर्निंग में हम बैठेंगे वो अनुभव बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोल कॉन्शियसनेस के थॉट्स सारा दिन में क्रिएट किए थे तो उसके इम्प्रेशंस वो सीडी में रिकॉर्ड हो जाएंगे. क्योंकि जनरली जब भी हम साइलेंस में बैठते हैं ना ये सीडी रिवाइंड हो जाती है अपने आप और प्ले होनी शुरू हो जाती है, ब्लैंक नहीं रहता है. तो इसलिए सारा दिन में इस सीडी पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो सारा दिन कर्म करते, इसलिए हम कहते हैं हर एक घंटे में एक बार, हर एक घंटे में एक मिनट जो करें दैट्स फॉर दिस, कि बार बार रुके, अगेन रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं एक शक्ति हूँ, दिस इज माई क्वालिटी, पीस, प्योरिटी, नॉट एंगर, नॉट अग्रेशन. सो वाई एम आई यूजिंग इट, यू नो, बिकॉज हर क्षण जब हम इनको यूज कर देते हैं, गुस्से को, संशय को, झूठ, हर क्षण, तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो हमने कितनी लीकेज सारी कर दी. फिर कहे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो सिर्फ सोचने की बात नहीं लेकिन कर्म की क्वालिटी क्या है सारा दिन. क्योंकि अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो मेरा सारा दिन रोल कैसा होना चाहिए,
1: शांति का.
0: तब हम कहेंगे कि रियली आप सोल कॉन्शियसनेस में सारा दिन कर्म कर रहे थे. ये नहीं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ओम शांति, और फिर गुस्सा, फिर किसी के साथ कोई खिटपिट, नहीं. सोल कॉन्शियसनेस मतलब सोल की जो क्वालिटीज है उसको सारा दिन की एक्टिविटी में वो दिखाई देनी चाहिए. आई शुड एक्सपीरियंस दोज क्वालिटीज, देन आई एम इन दैट कॉन्शियसनेस. क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होगी वही तो कर्म में आएगा. डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की तरह बिहेव करूंगा, मदर हूँ मदर की तरह, आत्मा हूँ आत्मा की तरह. तो उसका कॉन्शियस अटेंशन रखेंगे तो मॉर्निंग में जब बैठेंगे वेरी सिंपल, और फिर परमात्मा से वो संबंध, क्योंकि परमात्मा के साथ जो संबंध है दैट इज सो ब्यूटिफुल, बिकॉज दैट्स द ओनली रिलेशनशिप जहाँ हमें अनकंडीशनल लव मिलता है, वो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं. अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड पूरा पूरा ट्रस्ट, ऐसा ट्रस्ट जो कभी टूटता नहीं है, जो दुनिया में बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि परमात्मा हर्ट नहीं होते, क्योंकि उन्हें हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. तो परमात्मा सिर्फ देते हैं, देते हैं, देते हैं. He doesn't have anything that he needs from us. तो जब हमारा ऐसा कोई संबंध जुड़ता है जो हमें सिर्फ देता ही रहे, देते रहे, और यही हम ढूंढ रहे थे कि किसके साथ मैं ये संबंध जोड़ू, माँ बाप के साथ जोड़ू, पत्नी के साथ, पति बच्चों के साथ, कौन ऐसा जुड़े जो मेरे को देता रहे. कोई दे नहीं पाया तो फिर वो अंदर पेन आने लगा. जब वो मिल रहा है संबंध फिर हम उसके लिए कह देते हैं टाइम नहीं है. दैट्स चीटिंग विद माई सेल्फ, यू नो, द सोर्स इज देयर रेडी टू गिव एंड आई एम सेइंग आई डोंट हैव टाइम.
1: एंड अगेन रिलेशनशिप विद माई ओन सेल्फ, द इन रियलिटी हु एम आई, उसके साथ जो रिश्ता है. सिस्टर शिवानी, ये पूरा जो हमारा सफर रहा है रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखने का, सचमुच बहुत सुंदर रहा है. और उसमें आज जो हमने एक बार फिर उस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है, मेडिटेशन एक्चुअली एक बहुत अहम हिस्सा है, वही फाउंडेशन है. सो हम थोड़ा सा उसमें फिर जाने की चाहें.
0: कुछ क्षणों के लिए हम वापस वही अभ्यास करेंगे कि मन संकल्प करेगा, इंटेलेक्ट बुद्धि उसका दृश्य निर्माण करेगी, विजुअलाइज करेगी, क्योंकि हम सीडी को रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो इट विल बी थॉट्स प्लस पिक्चर विजुअलाइजेशन, और जैसे ही वो विजुअलाइजेशन होंगे तब वो अनुभव ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा. तीनों पर अटेंशन रख के देखें एंड इफ सम अदर थॉट कम्स तो स्टॉप इट देन एंड देयर, यू नो, उसको बैठने ना दे और उसकी तरफ ही ना झुक जाए कि हाँ अब तो मेरा लिंक टूट गया. नहीं, स्टॉप, कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स, क्योंकि हमारा मन हमारी बात मानता है. तो लेट्स गिव इट द इंस्ट्रक्शन देन. कुछ क्षणों के लिए अपने बाकी सभी संबंधों से किनारा करते हुए उस सबसे मीठे संबंध की तरफ ध्यान करें, अपने आप को देखें. सबको देखते हुए इतने व्यस्त हो चुके थे कि अपने आप को देखना ही भूल गए. चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें. कि मैं कौन हूं इस शरीर को चलाने वाले, हर संकल्प की रचना करने वाले, हर भावना को महसूस करने वाले, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने आप को देखें भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है, ये मैं हूं, मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूं। शांति मेरी अपनी नेचर है, शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से कुछ समय के लिए किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को, दैट पॉइंट ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अपवर्ड्स, ऊपर जा रहा है, इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है, जस्ट पीस एवरीवेयर अराउंड मी। शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं, इतना प्यार देते जो मैं खुद से प्यार करने लग जाती हूँ, जो अपने आप को पहचानना शुरू कर देती हूँ। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं, कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है, जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए, भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है, सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे पुनः इस दुनिया की तरफ आ रही हूँ, इस कर्म क्षेत्र पर अपने कॉस्ट्यूम में धीरे धीरे पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ जाती हूँ। लेकिन इस स्मृति के साथ कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ और मैं किसकी हूँ,
1: ओम शांति। सिस्टर शिवानी, ये जो अनुभव आज हमने किया और खुद से कैसा रिश्ता बने और परमात्मा या शिव बाबा से रिश्ता कैसे बनाए, ये पूरा ये कैसी जर्नी है, कैसा अनुभव है, सचमुच अनुभव ही किया जाना चाहिए। पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। रिश्ते हम बाकी आत्माओं के साथ जब भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी का एक्सचेंज होता है, लेकिन जब हम खुद से बना रहे हैं तो एक नया एस्पेक्ट सामने आता है, और जब हम उस परमपिता परमात्मा से बनाते हैं, उस शिव बाबा से बनाते हैं, तो हम सब कुछ उससे ले रहे हैं। एक एक्सचेंज ना होकर यहाँ ऐसा लगता है कि हमें मिल रहा है, तो क्यों ना इस रिश्ते को सबसे अधिक मजबूत करें। रिश्तों को नई पहचान देने का ये प्रयास। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9899 3 4 4 5 9 9 3 4 4 6 9 8 7 3 6 6 5 5, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इस पूरी श्रृंखला में हमने रिश्तों को नई पहचान दी है और एक खूबसूरत मोड़ देकर आगे चलना सीखा है। आगे और भी बहुत सी बातें होंगी, फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। ओम शांति।
2: ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजयोग मेडिटेशन प्रत्येक सेवा केंद्र पर निःशुल्क सिखाया जाता है। यह कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत के बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 0999 3 4 4 5 5, 0999 3 4 4 6, और 0987 3 6 6 5। आप ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। जिंदगी है, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हमारे चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि हमें रास्ता मिल गया है। अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में हमने बहुत से मुद्दों को उठाने की कोशिश की है जो हमारे लिए कहीं अड़चन बन जाते थे, कहीं ऐसा लगता था कि इनसे पार नहीं पाया जा सकता। तो आज भी कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए है ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। शिवानी जी, हमने पिछली बार अगर आपको याद होगा तो एक कॉल आई थी हमारे पास जिसको हमने डिस्कस किया था कि एक मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की प्रॉब्लम थी
1: शिखा
0: जी, और इतना अच्छा उसका रिस्पांस आया क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों ने कहा कि हम फेस करें, लेकिन लगता था कि प्रॉब्लम है या नहीं और कैसे इसके बारे में बात की जाए। तो सोल्यूशन हमें अपने ही अंदर तलाशने हैं, ये बात समझ में आई, और नेगेटिविटी को किस तरह से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है ये भी लोगों को समझ में आ रहा है। तो आज जो मुद्दा हम उठाएं वो भी वो मुद्दा है जिसके लिए हमें बहुत से कॉल्स आए हैं, और वो है रिश्तों की बात। क्योंकि रिलेशनशिप्स जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं, हम में से हर कोई ये जानता है कि रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का या प्यार का रिश्ता नहीं, मेरा और आपका रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता, बॉस और सबॉर्डिनेट का रिश्ता, उसमें जो ट्रस्ट की कमी आ गई है, जो फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके लिए क्या करें?
1: आई थिंक औरों पे ट्रस्ट करना इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि शायद हम पहले खुद पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, यू नो। तो मुझे जो चीज़ मैं खुद करूँ तो मुझे लगता है दूसरे भी वही करते होंगे। खुद की इंटेग्रिटी, अगर हम खुद अंदर से भरपूर हैं, वी आर फिल्ड एंड यू नो वी आर कॉन्फिडेंट, तो फिर हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी। ट्रस्ट करना तब मुश्किल हो जाता है जब इनसिक्योरिटी होती है, एंड उसमें भी जो एक बिलीफ सिस्टम फिर आ जाएगा कि वो है कि ये धोखा देंगे, ये गलत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से वो धारणा बन चुकी है कि मेजोरिटी तो सब लोग धोखा ही देते हैं, मेजोरिटी तो सब लोग गलत ही कर रहे हैं आजकल,
0: दुनिया तो ऐसी ही है,
1: ऐसी, मतलब ये जो बिलीफ है ना, तो ये थॉट हमें अच्छी वाली लाने नहीं देगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि हम ब्लाइंडली यू नो वी जस्ट नॉट केयरफुल और हम ब्लाइंडली सबकी चीज सबके ऊपर सौंपते, लेकिन एक व्यक्ति को हम इवेल्युएट जब एक बार कर लेते हैं, और एक्चुअली हमें स्टार्ट ऑपोजिट चीज से करना चाहिए। हम नॉर्मली करते हैं कि हम परखते रहेंगे, फिर जाकर बहुत समय बाद हम कहेंगे अब हम उनको ट्रस्ट करते हैं। वी कैन ट्राई टू डू इट द अदर वे अराउंड,
0: कंप्लीट फेथ,
1: हम पहले कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं,
0: लेकिन मुझे लगता है उससे हम अपनी इमोशन हटा दें क्योंकि हाँ, वो बहुत हर्ट करता है, यू नो, एक एक बात, बिकॉज आई बिलीव इन दैट। मैं अपना ही एग्जांपल ले लेती हूँ, यू नो, हर बार हम इतना, क्योंकि ये डिस्कशन ऐसा है कि जिसमें पर्सनल मैं इन्वॉल्व ना करूँ ऐसा नहीं हो सकता। इट्स लाइक आई हैव बीन लाइक दिस, यू नो, कि मैं कंप्लीट फेथ पे ही जिंदगी जीती हूँ। एक बार प्रोग्राम में कहीं बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था, नहीं पर एक आंख खुली रखनी चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि नहीं, वो भी कहीं गलत होगा, कंप्लीट आंख बंद करके ही फेथ करो। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसको नेगेट करते जाते हैं तो हर्ट साथ में जुड़ता जाता है। पहला धोखा पहला हर्ट देगा, फिर आप दोबारा हिम्मत करके हर्ट विश्वास करते हैं, दूसरा धोखा मिलता है, तो कहीं इमोशन को हम हटा देंगे।
1: अगर हमने रियली बहुत अच्छी तरह से किसी को ट्रस्ट किया था, जेन्युइनली अंदर से पूरी तरह से, तो धोखा मिलने का चांस पहली बात बहुत कम है। क्योंकि व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इज कि अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं, यू विल ऑलवेज गेट ट्रस्ट इन रिटर्न, दैट्स लाइक मैंडेटरी, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। सिर्फ ये है कि हमें, जब हमें किसी से धोखा मिलता है तो हम अपनी वाली स्थिति हम नहीं चेक कर पाते, हम ये देख लेते हैं कि उन्होंने हमें धोखा दिया, लेकिन उनके धोखा देने का कारण क्या। अगर हमने रियली अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट ट्रस्ट किया है किसी पे, द पर्सन जस्ट कैन नॉट डू विदाउट ट्रस्टिंग यू बैक, यू नो, इट इज लाइक इट्स टोटली विद यू, टोटली फॉर यू, वो बिल्कुल, मतलब कैसे रुक सकता है आपको ट्रस्ट करे बिना। तो इट विल हैव टू स्टार्ट विद ट्रस्टिंग द पर्सन, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अभी मैं इनको पहले इवैल्यूएट कर लूं, परख लूं, फिर अगर लगे कि ये ठीक है तो
0: यहाँ एक सवाल ये उठने लगता है कि डू वी रियली अंडरस्टैंड व्हाट रियल फेथ इज, सही तरह से विश्वास क्या, कैसे किया जा सकता है?
1: सबसे पहले ये सोच कि सामने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, एक दुकानदार हो, लाइक वी अगेन डिस्कस, थॉट इज ट्रांसमिटिंग, यू नो। तो इट्स एज सिंपल एज अगर मैं एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाऊँ और मेरे मन में ये विचार चल रहा हो, ये तो मुझे चीट करने वाला है, ये तो मुझे चीट करने वाला है, मुझे ध्यान से चलना चाहिए, मुझे ऐसे चलना, आई एम क्रिएटिंग दैट वाइब्रेशन, एंड वो वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचेगा ही. एंड दूसरी तरफ अगर मैं ये थॉट क्रिएट करूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरे से गलत नहीं कर सकता, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, आई एम ऑनेस्ट इन माई डीलिंग विद पीपल, तो ये मेरे साथ क्यों गलत करेगा. बट देन दिस हैज टू बी मेंटेन्ड विद एवरीबडी. आप ये नहीं कर सकते हो कि आप 10 लोगों के साथ गलत करो और फिर मैं आपके सामने आकर ये सोचूं कि मैंने आपके साथ गलत नहीं किया तो आप मेरे साथ गलत क्यों करेंगे. इफ आई एम क्लीन इन माई डीलिंग विद एवरीबडी, देन देर इज नो वे दैट एनीबडी शुड रिबाउंड एंड डू एनीथिंग रॉन्ग विद मी. लेकिन उसके लिए मुझे वो थॉट रखना पड़ेगा कि ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, देर इज नो रीजन. एंड ट्रस्ट, सिंपल ऑटो रिक्शा, सिंपल शॉपकीपर, आप सब्जी लेने जा रहे हैं, जैसे बहुत सिंपल बातें होती हैं, जैसे मैं सब्जी लेने जाती हूँ, पहले होते थे कितने का है भैया, ये कितने का है, वजन आपने ठीक से किया नहीं किया, चेक करो, नहीं इसको फिर ऐसे करो, नो बॉन्डिंग, नथिंग. नाउ देयर इज अ फिक्स्ड पर्सन जिससे आई हैव टू टेक, एंड आई नेवर आस्क हिम व्हाट इज द रेट ऑफ एनीथिंग, बिकॉज एंड आई हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि क्योंकि एंड स्पेशली अभी के समय पर, क्योंकि बहुत कम लोग उनको ट्रस्ट कर पाते हैं, बहुत कम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो जब उन्हें कोई ऐसा किसी को भी मिलता है जो उनके ऊपर इतना ट्रस्ट कर लेता है, वो उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ना चाहते, वो तोड़ेंगे ही नहीं, बिकॉज दैट ट्रस्ट इज वेरी वैल्यूएबल टू देम.
0: इट्स सो रेयर,
1: इट्स वेरी रेयर, सो इट्स वेरी वैल्यूएबल एंड इट इज सो प्रेशियस कि मैं 5 रुपए के लिए उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगी आपकी. तो देन यू नो समटाइम्स जो मेरे साथ हो, वो कहेंगे आपने पूछा भी नहीं वो कितने का, मैंने कहा वो राइट ही देगा, वो राइट ही दे रहा है, और अगर उसने 5-10 रुपए ज्यादा ले भी लिए आज, नहीं तो कल मुझे कहीं और से अगर पता चली गया, इट्स हिज लॉस. मेन चीज ये है कि दूसरे को ये रियलाइज करना पड़ेगा, इट्स हिज लॉस, उसने 10 रुपए कमा लिए, विश्वास खो दिया. बट फॉर मी, जस्ट बिकॉज ये सोच के कि कोई एक धोखा देने वाला है, आई कीप डाउटिंग एवरीबडी आई मीट.
0: लेकिन जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपके 10 रुपए का उसने धोखा दिया, विल यू कंटिन्यू बीइंग विद हिम? आई जस्ट वांट टू आस्क.
1: नो, आई विल जस्ट हैव टू बी वन स्टेप मोर केयरफुल.
0: या एंड अनदर, विल यू गेट हर्ट?
1: नो, बिकॉज ही डिड नॉट टेल मी ट्रस्ट मी. सी व्हाई आई विल नॉट गेट हर्ट, ये मेरा डिसीजन था. उसने नहीं कहा मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो, उसने ये नहीं कहा कि आप बिना पूछे लो, ये मेरा डिसीजन था. उसने ये नहीं, उसने रेट बताने से मना नहीं किया, ये मेरा डिसीजन था. तो अगर ये मेरा डिसीजन है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन. आई प्लेड माई पार्ट, ही प्लेड हिज पार्ट. आई प्लेड माई पार्ट ऑफ नॉट आस्किंग, ही प्लेड हिज पार्ट ऑफ टेकिंग मोर मनी. फ्रॉम टुमारो आई विल बी केयरफुल, बट आई विल नॉट गेट हर्ट, नॉट विद हिम. Because he's fine with what he did.
0: Achha, aur,
1: but I will not stop trusting other people just because one person turned out to be a little different. Lekin jab majority time soch aise chalti hai ki nahi ye galat hi kar rahe hai. Matlab aap dekhiye, aap morning se start kijiye. Agar maid late aa jaye, kyun late aaye, wo genuine bhi koi reason hoga to nahi doubt. Auto rickshaw wala doubt, shopkeeper se mile doubt. Inhi logo par itna doubt karte hain. तो जो अपने कोलीग्स, ये तो मेरे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता, इसको तो आगे बढ़ना है, ये तो मुझे नीचे खींचना चाहता है, ये तो मेरे पीठ पीछे गलत बोलता ही होगा. वी आर क्रिएटिंग सो मच ऑफ दैट थॉट. ये भी हो सकता है कि ऐसा हो रहा है कि आपके पीठ पीछे कोई बोल रहा है या कोई कुछ गलत कर रहा है, बट देन हाउ एम आई गोइंग टू चेंज इट? यू सी, इफ आई कीप चर्निंग अबाउट इट एंड वही एनर्जी मैं और ट्रांसमिट करूँ, तो वो मिसट्रस्ट और स्ट्रांग होता जाएगा. I will have to still keep that thought कि नहीं ये ठीक है, ये अच्छे हैं. I will have to recognize the goodness in everybody because everybody is so beautiful.
0: And another thing is like maybe we have to continue giving chances. That's what I wanted to ask. Should we continue giving chances even if we
1: actually we are nobody to give a chance to anybody. Who are we? Who has given me the authority to give you a chance? You are what you are. ठीक है, आपको जैसे रहना है आप रहिए, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है आपको चांस देने का, आपको फॉरगिव करने का. आई एम नोबडी. ठीक है, आई ओनली हैव अ चॉइस कि मुझे आपके बारे में कैसा सोचना है. दैट्स ऑल, आई जस्ट हैव दैट मच चॉइस. आई डोंट हैव द पावर टू चेंज यू, आई डोंट हैव द पावर टू मेक यू लाइक आई वॉन्ट यू टू बी. आई जस्ट हैव द पावर टू चूज माई थॉट. नाउ मेरे पास चॉइस है कि आपके बारे में सोचूं कि आप बहुत अच्छे हैं, या आपके बारे में सोचूं कि नहीं आप तो धोखा दे सकते हैं, आपके बारे में सोचूं कि आप मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, या ये सोचूं कि आप मेरे साथ गलत ही करेंगे, आपके बारे में सोचूं कि आप सच बोल रही हैं इस टाइम, या सोचूं कि आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं. दैट्स ऑल द चॉइस आई हैव. एंड जस्ट डिपेंडिंग ऑन दीज चॉइसेस दैट आई मेक इन एवरी थॉट आई एम बिल्डिंग और ब्रेकिंग रिलेशनशिप.
0: वंडरफुल. लेकिन अगर हम ये जो हमने अभी जो मुद्दे उठाए जो एग्जांपल्स या जो बातें ली जो कोट किया वो लोग थे जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं.
1: डेफिनेटली.
0: लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते हैं
1: राइट
0: जिनको हम जो हमारे परमानेंट है हमारे अपने हैं
1: राइट
0: वहां जो ट्रस्ट ब्रेक होना और उसके बाद दोबारा अपने आप को तैयार करना इवन इफ मेरी उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा मैं एहसान नहीं कर रही कि मैं आप पे दोबारा ट्रस्ट कर रही हूँ. मैं मान लेती हूँ इस बात को. वैसे ये अभी तक मैं ये नहीं मानती थी. मुझे लगता था कि नहीं आई एम ट्रस्टिंग यू अगेन
1: बट वी से दैट लाइक अ फेवर.
0: That's what I'm
1: you know,
0: saying,
1: it's like अगर आपके बच्चे ने या आपके कुलीग ने किसी ने कोई गलती कर दी है और हम कहते हैं यू मेड दिस मिस्टेक बट चलो आई एम गोइंग टू ट्रस्ट यू अगेन. डोंट इफ यू डोंट वॉन्ट टू. आप किस पे फेवर कर रहे हैं? यू आर ट्रस्टिंग बिकॉज यू वॉन्ट टू ट्रस्ट. डोंट वॉन्ट टू ट्रस्ट डोंट ट्रस्ट. एंड अगर आप बार बार इस तरह से रब इन कर रहे हैं देन यू आर रियली नॉट ट्रस्टिंग. ये आप सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं जी हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं हम आप पर बहुत विश्वास. ये कोई बोलने की चीज है ही नहीं. ये तो आपकी हर थॉट और हर एक्शन में दिखाई देगा कि आप किस पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं. और अगर हमें बार बार उस व्यक्ति को अपनी उसकी गलती याद दिलानी पड़े वो आपने ऐसा किया था उस दिन अब फिर से अपना विश्वास तोड़ना मत. मतलब वो टूटा हुआ है ऑलरेडी. कुछ भी नहीं है. हम अभी भी उसको चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं. हम सबसे पहले अपने पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट मतलब क्या कि आपने एक बात कही लेकिन करी दूसरी. एंड आई विल से यू ब्रोक माई ट्रस्ट. यू नो यू से समथिंग टू मी बट एक्चुअली इट्स नॉट द ट्रूथ. तो आई से यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट. व्हाट अबाउट माई ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ. मैं अपने आप से सारा दिन में कितना कुछ कहती हूँ और करती कुछ और. आज सुबह डिसाइड किया गुस्सा नहीं करना शाम तक आकर गुस्सा कर दिया. किसको धोखा दिया?
0: खुद को.
1: खुद को कहा कि टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है लेकिन सारा दिन टेंस्ड रहे. किसको धोखा दिया? अपने आप को. हम अपने आप को सारा दिन इतना धोखा दे रहे हैं अपना नुकसान सारा दिन इतना कर रहे हैं तो हम दूसरे के साथ लॉयल होना फिर थोड़ा सा इसलिए क्रिटिकल हो जाता है. जब हम अपने आप से सच नहीं बोल पाते हैं तो औरों से सच बोलना ऑब्वियसली वो बहुत एक ऊंची मंजिल हो जाएगी. लेकिन जितना हम अपने आप के साथ यू नो वी कम बैक टू आवर सेल्व्स एंड वी आर फिल्ड एंड देयर इज नो इनसिक्योरिटी वी आर लाइक स्टेबल तो फिर औरों पे ट्रस्ट करना इज इट देयर इज नो एफर्ट. एक्चुअली मिसट्रस्ट करने में फिर आपको एफर्ट लगेगा. बिल्कुल एफर्ट लगेगा बिकॉज इट्स समथिंग लाइक विच वी हैव फेल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे जैसे आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं I have felt कि अब किसी के ऊपर mistrust करना बहुत मुश्किल हो गया है. In the process, once in a while, it does happen कि आपने जो trust किया दूसरे ने बिल्कुल उसका you know he just didn't live up to your expectation. But that's fine. That will be 1 in 100. उस 1 in 100 के लिए जो 100 में आपने विश्वास किया एक ने धोखा दे दिया. लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं एक दो लोगों ने अगर धोखा दे दिया तो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है जी आजकल दुनिया ऐसी है
0: दुनिया धोखा देती है. इनफैक्ट सरबजीत गांगुली नोएडा से हैं और एक एमएनसी में काम करते हैं और इनका जो मेल हमें आया था और वो ये कह रहे हैं कि मेरे टारगेट्स क्योंकि आजकल जब मार्केटिंग में होते हैं तो टारगेट्स होते हैं फिर उसके बाद उसके हिसाब से आपको काफी कुछ यू नो चीजें मिलती हैं कुछ इस तरह से ये बातें होती हैं. तो ही सेज कि मैंने सारी मेहनत की बॉस पे अपनी पूरी तरह से ट्रस्ट करके और बॉस पे मेरा ट्रस्ट मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी लेकिन जब बात आई कि टारगेट्स अचीव हो गए हैं तो मेरे टारगेट्स ही चेंज कर दिए गए.
1: ओके
0: और मेरा जो मेरी मेहनत का पूरा फल मेरे बॉस को मिला और मुझे कुछ भी कंपनसेशन या व्हाटएवर
1: मॉनेटरी
0: जो भी चीजें थी वो नहीं मिला गया. अब इतने डिस्ट्रस्ट में इतने डिप्रेशन में मुझे कोई विश्वास नहीं रह गया. मुझे मुझे जिंदगी से ही विश्वास उठता जा रहा है क्योंकि जब मैंने उस बॉस को उसके लिए कितना काम किया उस पर इतना विश्वास किया तो अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं नौकरी छोड़ दूँ?
1: ट्रू ये हो सकता है ना. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो होता होगा. तो शायद हमें अपने आप से पहली बात पूछना पड़ेगा कि क्या हमने ट्रस्ट किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए किया था. यू नो हम वैल्यूज को मॉनेटरी या इस तरह की चीजों के साथ इवैल्यूएट या यू नो कंपेयर नहीं कर सकते.
0: लेकिन देखिए एक बात है ट्रस्ट तो उन्होंने किया कि भाई मैं जो कर रहा हूँ जो मैं अपना टारगेट पूरा कर रहा हूँ तो उसका, क्योंकि बॉस को पता है तो
1: वो
0: उसका,
1: ठीक है, वो ठीक बात है। आज उन्होंने वो ट्रस्ट को बिट्रे कर दिया आपके, लेकिन आपने अपनी पूरी सिंसियरिटी से अपने काम को कर दिया था। अब ये सिचुएशन हो गई है कि दूसरे ने आपका सारा क्रेडिट ले लिया, नाउ व्हाट कैन यू डू? टू ऑप्शन, डिसिल्यूजन पूरी
0: व्हाट
1: तरह
0: इज
1: से, यू
0: दिस,
1: नो, गिव अप, सोच लें कि आगे से इस तरह से लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपना फायदा सोचना चाहिए, दूसरों पर विश्वास करके देखा क्या हुआ। गुड, इफ दैट्स माई थॉट, दैट्स माई डेस्टिनी। आगे जीवन में जितने भी लोगों के मैं संपर्क में आऊं, चाहे वो ऑफिस में, वो मेरा एक दृष्टिकोण जो उनके प्रति बन जाएगा कि विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी एक ने धोखा दिया था, तो वो मेरा जो आगे संबंध बनते जाएंगे वो बहुत अच्छे फाउंडेशन पे नहीं खड़े होंगे। तो बहुत आवश्यकता है कि अभी तुरंत अपने थॉट को
0: चेंज
1: चेंज
0: करें।
1: करना पड़ेगा। आई पुट इन माई बेस्ट एफर्ट, मेरे बॉस ने उसको नहीं अप्रिशिएट किया या उसका क्रेडिट ही खुद ले लिया, नाउ व्हाट कैन आई डू? अगर तो मेरे लिए वो सिचुएशन बिल्कुल अपने मेरे कंट्रोल के बाहर की चीज है, देन आई चेंज माई जॉब। अगेन इट्स अ चॉइस, आई कैन चेंज माई जॉब। सेकेंड थिंग इज,
0: वो भी एक्चुअली हमने टेंशन की बात की थी, वो भी सिचुएशन से भागने वाली
1: हाँ,
0: बात
1: तो
0: नहीं।
1: एक्चुअली दैट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन वहां रहकर डिसिल्यूजन रहने से, वहां रहकर एक नेगेटिव वाइब्रेशन बिल्डअप करने से और सारा दिन ये सोचने से कि मैं छोड़ दूं, मैं छोड़ दूं, तो फिर छोड़ दीजिए, यू नो, बट दैट्स नॉट द ऑप्शन। क्योंकि अगर आप जब अपने नेक्स्ट ऑफिस में जाएंगे,
0: वो नेगेटिविटी लेके जाएंगे और मिस्ट्रस्ट
1: और हो
0: लेके
1: सकता है
0: जाएंगे।
1: वहां भी और आपको इस तरह से लोग मिले, तो द ऑप्शन विल बी टॉक टू योर सेल्फ, आई पुट इन माई बेस्ट एफर्ट, आई हैव डन थिंग्स सिंसियरली, और एंड आई हैव द सैटिस्फैक्शन कि वो टारगेट अचीव
0: हो
1: हो
0: गया।
1: चुका है। तो सबसे पहली चीज, कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने आप को पहले स्टेबलाइज कर दीजिए, अपनी काउंसलिंग करके पहले स्टेबलाइज कर दीजिए। जब तक वो इनर स्टेबिलिटी नहीं होगी, डोंट टेक द नेक्स्ट स्टेप, चाहे वो बॉस से जाके बात करने की बात है, चाहे वो जॉब चेंज करने, कोई भी इस तरह का डिसीशन डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में कभी नहीं लेना। पहली बात, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपनी सिंसियरिटी को अप्रिशिएट कीजिए, और दूसरे की इनसिंसियरिटी की वजह से अपनी सिंसियरिटी को मत गवा दीजिए कि दूसरा
0: कि मैं तो
1: सामने
0: करूंगा
1: वाला,
0: नहीं, क्या फायदा
1: हाँ,
0: काम करने
1: फायदा
0: का।
1: क्या हुआ? सी, दिस इज अ वेरी डीप थिंग
0: विशेष
1: एंड इट
0: सर्कल
1: कम्स सो इजिली टू पीपल कि मैंने किया, फायदा क्या हुआ, इससे अच्छा मैं आगे से
0: काम ही नहीं
1: करूंगा ही
0: करूंगा।
1: नहीं। इसका मतलब कि आपके पास एक इतनी वैल्यूबल चीज थी, इतनी वैल्यू थी उस चीज की, लेकिन जस्ट बिकॉज सामने वाले ने उसकी वैल्यू को नहीं समझा, आप अपनी वैल्यूबल चीज को गवा देंगे। लेकिन जिसने वैल्यू नहीं समझी, वो प्रॉब्लम तो उसकी थी। इफ यू आर वेयरिंग डायमंड्स राइट नाउ एंड आई डोंट रिकॉग्नाइज बिकॉज आई डोंट हैव द नॉलेज, तो मुझे वो डायमंड और वो पत्थर में शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, कनुप्रिया, क्या पत्थर पहन के बैठे हुए हो? पत्थर है ये, कोई काम के नहीं है आजकल। एंड मैं दो बार, चार बार आपको कहूँ और चार लोग मेरे साथ ज्वाइन कर लें कि कनुप्रिया पत्थर पहने हुए हैं, फेंको इसको, ये नुकसान कर रहे हैं। इफ यू रिमेम्बर एंड इफ यू आर अवेयर दैट दे आर डायमंड्स, विल यू थ्रो देम अवे? इवन इफ द होल वर्ल्ड इज टेलिंग यू, फॉरगेट वन और टू पीपल। तो ये अपनी विशेषता की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक जो डिसइल्यूजमेंट, यू नो, ये जो हो रही है, ऑनेस्टी आजकल काम नहीं करती है, सिंसियर होने का फायदा नहीं है, लोग अप्रिशिएट नहीं करते। क्या हमारी विशेषता इसलिए ताकि लोग अप्रिशिएट करें?
0: क्योंकि तुम्हारी ताकत है बेसिकली। ओह यस, दैट्स अ गुड
1: इट्स
0: वे।
1: माई स्ट्रेंथ। आई, इफ नोबडी अप्रिशिएट्स, फॉरगेट वन और टू पीपल, आई से लेट द होल वर्ल्ड नॉट अप्रिशिएट, यू नो, लेट्स लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, पूरी दुनिया नहीं अप्रिशिएट कर रही, फिर भी वो आपकी विशेषता है। आप जिस दिन उसको अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं ना, तब सारे अप्रिशिएट करना बंद करते हैं। बट अगर आपको ही नहीं पता चला कि आपके पास डायमंड्स है, देन यू माइट थ्रो इट अवे, देन द लॉस इज योर्स। तो दूसरे की कोई एक गलत बात के लिए अपनी अच्छाई को खत्म कर देना, ये अपने आप से सबसे बड़ा धोखा है। वो क्या हमारे से धोखा करेंगे?
0: हम अपने आप को
1: हमने ही अपने आप को इतना बड़ा धोखा दे दिया। उन्होंने तो जो किया वो तो
0: दैट्स
1: बहुत
0: अगेन
1: छोटी बात है.
0: एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट कि दुनिया ये बोलती है आपको जाती है कि इतने ट्रस्टवर्दी नहीं बनो, तुम इतनी ट्रस्टवर्दी क्यों हो. आई हैव गॉन थ्रू इट.
1: राइट
0: ऐसे
1: राइट.
0: विश्वास नहीं करते हैं. दुनिया पे विश्वास, दुनिया को समझना सीखो, दुनिया ऐसी है, यू
1: बिल्कुल
0: नो. सो इट
1: बिल्कुल.
0: लाइक यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर रॉन्ग, यू नो,
1: नो
0: समवेयर.
1: यू विल. दैट्स वाई वो जो अपना कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रखना पड़ेगा. एंड आस्क योर सेल्फ अगेन, मुझे डाउट करके ज्यादा अच्छा लग रहा है या विश्वास कर. दिट्स ऑल अबाउट दैट, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू आर फीलिंग.
0: यू नो अगेन
1: यू नो
0: हैप्पीनेस
1: द
0: इज नॉट.
1: जर्नी,
0: यस
1: द जर्नी, द जर्नी इज आई मीट यू, देन आई मीट अनदर पर्सन, 10 मिनट के बाद आई मीट अनदर पर्सन. और मेरी हर डीलिंग, हर ट्रांजैक्शन, हर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तब इंजॉयबल है इफ इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, इफ इट इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट. एंड आजकल हम ज्यादातर डिस्टर्ब्ड क्यों रहते हैं, क्योंकि हम हर एक जिससे मिल रहे हैं उसको डाउट करते हैं. एंड हर एक पे डाउट करते करते करते बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन आई रीच होम, हाउ कैन आई बी हैप्पी.
0: यस डेफिनेटली.
1: आई हैव जस्ट यू नो ट्रांसमिटेड सो मच ऑफ नेगेटिव एनर्जी टू पीपल. इन रिटर्न
0: ऑल द
1: मुझे इतनी
0: नेगेटिव.
1: सारी नेगेटिव एनर्जी मिल गई है. घर पहुंच गए रात को 8 बजे और कहे जी बहुत भारी लग रहा है, खुशी नहीं है, पता नहीं वैसे कुछ हुआ भी नहीं लेकिन मूड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा. कैसे अच्छा होगा, सारा दिन हर स्टेप पे क्या किया. एंड ये अपने आप से पूछना है कौन सी चीज मेरे लिए ठीक है. डोंट सी व्हाट पीपल आर से, डोंट सी व्हाट द मेजोरिटी इज से. जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज व्हाट मेक्स मी फील गुड. इट्स ऑल दैट फील गुड फैक्टर. दैट फील गुड फैक्टर इज वेरी इम्पोर्टेंट.
0: डेफिनेटली. एंड यू नो शिवानी, एक्चुअली when we talk about relationships, again we talked about a, you know, we took a question jo ki ek employee
1: or in ke case pe jo inhone likha, it would be nice ki wo apne aap ko jab stabilize kar le to ek bar jaakar baat bhi karke aaye.
0: ye strength होता ये है कि जहाँ धोखा मिला आप अंदर, क्योंकि इतने व्हाट आई यूज्ड टू डू, इतने हर्ट हो जाते हैं, देन आई नेवर यूज्ड टू यू नो इंटरैक्ट.
1: लेकिन वो हर्ट वाली स्टेज में वैसे भी जाना नहीं चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए, बिकॉज वो एक नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज है. आई अंडरस्टैंड आई विल हैव टू पुट माई सेल्फ इन योर पोजिशन फर्स्ट एज द एम्प्लॉय. एंड ये सोचूं कि पहली बात इवन गिव माई सेल्फ द अदर ऑप्शन कि हो सकता है मैंने ठीक से नहीं समझा, हो सकता है कि ये चीटिंग नहीं थी, हो सकता है इसके पीछे कोई और बात है जो मेरे सीनियर्स को पता है जो मुझे पता भी नहीं है, या हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने ये किया है, कुछ भी है. वाई नॉट गो एंड हैव अ डायलॉग. एंड जब अपनी इंटेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इंटेंशन, आपसे बात करने से पहले मेरा भाव क्या है. अगर मेरा भाव ये है कि आपको जाकर मुझे बताना है कि आपने गलत किया,
0: चाहे प्यार से ही बताना,
1: लेकिन
0: इट
1: वोंट वर्क. दैट भाव, जो भावना पीछे है, दैट्स गोइंग टू डू ऑल द वर्क. तो इंटेंशन बिहाइंड एवरीथिंग वी डू. तो अब जब आप बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपके मन में उनके प्रति एक बहुत रिस्पेक्ट, एक डिसरिगार्ड नहीं, अभी डिसरिगार्ड है. उन्होंने धोखा दिया, आई कैन नॉट रिस्पेक्ट. आई विल हैव टू से हो सकता है कोई बात है. टिल आई फाइंड आउट, लेट मी नॉट कम टू अ कंक्लूजन. लेट मी गिव द अदर पर्सन अ चांस टू पुट अक्रॉस
0: बेनिफिट ऑफ डाउट
1: हिज पॉइंट. एंड फिर भी अगर बात करने के बाद भी लगे कि उनकी इंटेंशन कुछ राइट नहीं थी, टॉक इट आउट एंड बिल्ड द रिलेशनशिप. Tomorrow it will not happen again. And जो सामने वाला व्यक्ति है वो बहुत अप्रिशिएट करेगा आपके इस
0: पूरे जेस्चर
1: एफर्ट को. यू नो कि आप आए, आपने बात की, और आपके बात में या आपसे उसको कोई नेगेटिविटी जब नहीं मिलती है, ही विल जस्ट यू नो बी फॉर यू
0: टोटली. वो भी कहीं ना कहीं गिल्टी.
1: हाँ, गिल्टी तो हमेशा होगा, और इसीलिए जो गिल्टी है वो बहुत ज्यादा आपके सामने अग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अंदर कुछ खालीपन है तो उसको भरने का सबसे इम्पोर्टेंट, यू नो, सबसे सहज तरीका होता है बाहर से बहुत, यू नो, आई एम राइट, आई विल ऑलवेज कीप ऑन प्रोजेक्टिंग इट लाइक दैट, बिकॉज एक्चुअली इंटरनली देर इज समथिंग विच इज अ लिटिल मिसिंग. तो ऐसे टाइम पर उसको चाहिए कि कोई आकर उसे एक्सेप्ट कर ले. तो जब अगर ये जाकर उनको उस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे पहले इंटरनली, और फिर जाकर उनको उस तरह से बात करेंगे, मिरेकल कैन हैपन.
0: यस
1: इट विल हैपन.
0: अगेन यू नो लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट मिरेकल्स, वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग डेस्टिनी, वी आर एबल टू डू इट विद आवर पॉजिटिव थॉट्स.
1: एंड अभी आप देखिए, ये एक बिलीफ इनकी डेस्टिनी चेंज कर सकता है. दैट्स व्हाट एवरी टाइम दैट साइकिल इज एप्लीकेबल. लेकिन हम कह देंगे जी मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे साथ धोखा हो गया. मैंने तो कितनी मेहनत की थी, लेकिन लोग ही आजकल ऐसे हैं कि धोखा दे जाते हैं. फिर एस्ट्रोलॉजर के पास हम जाएं, जी मेरा भविष्य क्या है आगे, मैं नौकरी बदलूं. मतलब so much out of control. Yes, जबकि हर चीज हमारे control में, and we are giving away the control.
0: Good, and so like finally we are understanding that destiny is within us, you know, within our thoughts. So wonderful. In fact, trust is something, you know, which we are lacking. Okay, हम ये life के examples ले रहे हैं, रिश्तों की बात करेंगे, खासकर husband wife के relationship में trust की बात बहुत जरूरी है, लेकिन वो हम अपनी अगली कड़ी में करेंगे. आज जो बातचीत रही वो सचमुच काफी clarity के साथ हमें नजर आ रही है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
1: थैंक यू.
0: आपके पास भी अगर कोई ऐसा ही सवाल है, कहीं ऐसा लग रहा है कि विश्वास कम हो रहा है, जिंदगी में बहुत सी जिन मूल्यों पर हम खड़े रहना चाहते थे वो कहीं तलाश नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा है जो कम है, तो भाई आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो इसी के साथ वक्त है कि आपसे इजाजत लें, लेकिन आपको बता दें कि जो जिस विश्वास पर हमारा और आपका रिश्ता है, उसी विश्वास को एक बार फिर पति पत्नी के और बाकी रिश्तों में भी तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी अगली कड़ी में, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. तो अभी दीजिए इजाजत, मुलाकात करेंगे अगली कड़ी में. नमस्कार.

0: ना पाए।
1: ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाथ रे।
2: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
3: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माई हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूँ। डू आई वॉन्ट देन, नाउ वट हेज हैपन, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट वेन, वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: भारतेंदु हरिश्चंद को आधुनिक युग के हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। वे आधुनिक भारत के महानतम हिंदी लेखकों में से एक हैं। भारतेंदु के साहित्य में आमजन की पीड़ा, समाज के मध्यम वर्ग की बेचैनी और देश के विकास की आवश्यकता बड़ी बुलंदी से दर्ज होती है। भारतेंदु सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। एक ओर उनकी लेखनी से ऐसे रसपूर्ण सवैये निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे, तो दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी रचनाएं देश के मंगल का मंत्र फूंकने लगी। कभी उनकी कविताएं भक्तिमालाएं बनकर इष्ट के

0: चरणों में अर्पित होती तो कभी उनकी रचनाओं में धार्मिक आडंबरों का माखौल उड़ाया जाता। उनके व्याख्यानों में स्त्री शिक्षा और समाज सुधार की गुहार लगाई जाती। बड़े ही सरल भाव से नए और पुराने में सामंजस्य बिठाकर वे अपनी रचनाओं में अद्भुत माधुर्य पैदा कर देते थे। भारतेंदु की लेखन सामग्री जीवन के हर पहलू को छूती हुई गुजरी और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देश की उन्नति का कारक सिद्ध हुई।
1: आओ बेटा आओ, आओ जरा राम तो भजले।
2: जी गुरुजी। जी गुरुजी।
1: तो उठा बेटा एक तारा।
2: जी गुरुजी।
3: तो हो जाए गुरुजी।
1: तो राम भजो राम भजो राम भजो भाई,
4: राम भजो राम भजो राम भजो भाई,
1: राम भजो राम भजो राम भजो भाई,
4: राम भजो राम भजो राम भजो भाई।

0: विश्वनाथ,
1: जय जय भोलेनाथ,
0: जय जय बाबा विश्वनाथ,
1: जय जय बाबा विश्वनाथ।
0: मैं महंत और मेरे दोनों चेले बच्चा नारायण दास
1: जय हो,
0: और बच्चा गोवर्धन दास
1: जय हो।
0: पहचान तो लिया होगा आपने।
1: अरे वही अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक वाले।
0: हाँ।
2: जो नाटक बाबा भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख गए।
0: सवाश बच्चा।
1: हम उसी नाटक के पात्र।
0: हाँ तो उस नाते से हरिश्चंद्र हुए हमारे
1: बाप।
0: अबे मूरख, जनक भी तो कह सकता है।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, गुरु जी।
0: हाँ, तो बच्चा गोवर्धन दास का तय हुआ था रे हमरे बीच?
2: यही कि आज अंधेर नगरी नहीं बल्कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में।
0: हाँ।
2: तो बाबा भारतेंदु की कथा सुनाएंगे।
0: हाँ। आजा बेटा एक तरह लेके, जरा सुर तो छेड़ दे। हाँ चलो चलो शुरू करते हैं।

0: तो काशी नगरी में पैदा हुए हमारे जनक हरिश्चंद्र, गंगा मैया के किनारे विराजे बाबा विश्वनाथ, और यही है उनकी नगरी काशी।
1: और गुरुजी ये भी तो बता दीजिए, एक संपन्न वैश्य कुल में बाबू गोपाल चंद्र के घर भाद्र शुक्ल 5 संवत 1907 को बाबू हरिश्चंद्र का जन्म हुआ।
0: हाँ, हरिश्चंद्र 7 वर्ष के रहे होंगे जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़की।

0: बचपन के संपन्न और सावंती वातावरण के बावजूद उनमें राष्ट्रीय चेतना जाग चुकी थी।
1: दौलत की दमक से वे अंधे न हुए थे कि गुलामी के अंधेरों को देख न सकें।
2: काय भैया, बहुत दिना बाद देखे।
3: हाँ, बाहर बहुत घूमत रहे, जगन्नाथ जी गए, हमने कहा हरिश्चंद्र का गुहार है भगवान, ये अंग्रेजन से बचाओ हमका।
0: और भी बहुत सी जगह देखे होंगे।
3: हाँ, बहुत घूमे हम, चुनार, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, हरिद्वार, अमृतसर, लाहौर, आगरा, सारे शहर घूमे।
2: अरे उधर भी अंग्रेजन का यही हाल है का?
3: अरे कछु पूछो ही मत, सब जगह एक ही हाल है।
0: अरे बुजुर्ग कहते रहे कि कंपनी बहादुर का राज बहुत ही जालिमाना था।
3: तो महारानी विक्टोरिया का कौन कम है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ।

0: क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज,
1: क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज,
0: क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज,
1: क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज।
2: वाह भैया वाह भैया, क्या बात कही है,
3: वाह भैया, कैसा उम्दा खाका खेचा है अंग्रेजन का।
4: क्या क्या बढ़िया बढ़िया, बहुत।
5: अरे आप खाका की कह रहे हैं, हम अपनी लेखनी से अंग्रेजन की खाल खेचत हैं। लो एक और सुनो।
6: अरे वाह वाह वाह, चलो चलो आ जाओ।

0: क्या बात कही है।
1: पहले हमारे देश पर कब्जा जमाया, अब हमारी भाषा को नष्ट करने में लगे हैं, अंग्रेजी की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं।
2: अपनी भाषा को तो बचाना ही होगा।
0: अरे बिन निज भाषा के तो मूक जानवर सा है आदमी।
3: हाँ सही बात है।
1: हाँ, निज भाषा के बिना समाज की उन्नति नहीं हो सकती।
0: नहीं हो सकती।
1: अरे अंग्रेज तो अंग्रेजी को बढ़ाएंगे ही।
0: हाँ।
1: हमें अपनी भाषा को बचाना और बढ़ाना होगा। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कुसूल।
0: आज चना मसालेदार चना
4: गर्मा गर्म।

0: चुरमुरु चुरमुरु बोले,
1: चुरमुरु चुरमुरु बोले,
0: चन्ना चुरमुरु चुरमुरु बोले,
1: चुरमुरु चुरमुरु बोले।
2: ओ बाबू खाने को मुंह खोले भैया,
1: खाने को मुंह खोले
2: बाबू खा।

0: तो बच्चा लोग गाने में मजा आया कि नहीं?
1: अरे गाने में तो बहुत मजा आया गुरुजी। हाँ। नाटक की याद हो आई? हाँ। कब से नहीं खेला?
2: एक दो झलक नाटक की मिल जाए तो मजा आ जाए।
0: हाँ, तो जैसी तुम लोगों की इच्छा, पर पहले भार तेंदु जी जो कमाल दिखाए हैं उसकी बात करेंगे।
1: जैसी गुरुजी की इच्छा। क्या कहते हो गोवर्धन दास?
2: जहाँ में तुम राजी वहाँ में हम भी राजी।
0: सिर्फ 34 साल की जिंदगी रही उनकी, इतनी छोटी जिंदगी में बड़ा बड़ा कमाल किए। वो हिंदी का पहला मौलिक नाटक भी लिखे।
2: और भी तो नाटक लिखे होंगे अंधेर नगरी के अलावा।
0: अरे बच्चा बहुत से लिखे, चंद्रावली, हिंसा ना भवती, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी।
1: और भी कुछ लिखे रहे?
0: अरे वे आशु कवि रहे, कुछ सूझा और कविता बन गई, किसी ने कहा और कविता बन गई।
3: अरे क्या बात है, अभी तक हरिश्चंद्र बाबू नहीं आए, शाम ढली जाती है।
4: अरे फिकिर ना करो, शाम को राम कटोरा मोहल्ला में आए बिना भैया को चैन कहाँ।
3: अरे बनारस में राम कटोरा मोहल्ला के रंग जैसा रंग और कहाँ मिलेगा।
4: लो लो लो, लो देखो भैया इधर ही आ रहे, आ रहे इधर। जय राम जी की भैया।
5: अरे जय राम जी की, जय राम जी की। और सुनो।
3: बस आप ही की बात कर रहे थे।
4: हम इनसे कह रहे थे भैया कि आपकी शाम राम कटोरा मोहल्ले से बाहर कटे ये हो ही नहीं सकता।
5: ये भी खूब कही। पहले ये बताओ कि पंचरत्नी तैयार है कि नहीं?
3: एकदम तैयार है, कब से आप ही का इंतजार था।
5: तो लाओ भाई, पेश करो, जरा तरंग बने तो बात बने।
4: हाँ, ये लीजिए।
5: वाह, इसकी तो खुशबू से ही तरंग बन जाए, ऐसी खुशबू है।
3: तो भैया इसी बात पर कविता बन जाए एक।
5: हाँ हाँ, अभी लो। तो बोलो किस पर कविता बनाऊं?
4: वो उधर देखिए, उधर देखिए, वो देखिए, वो जो बाई जा रही है ना।
5: हाँ।
4: उसके मुंह पर चेचक के दाग है।
5: हाँ।
4: उस बाई पर कविता बनाइए जरा।
5: अरे अभी लो। तो पेश है एक शेर, सूखे आईना पे दिल।
4: वाह,
5: सूखे आईना पे दिल जो जा जा के फिसलता है।
4: सूखे आईना पे जो दिल जा के फिसलता है,
5: खुदाई दाग चेचक से जरा ठहराव मिलता है।
3: वाह वाह, क्या बात है भैया, इसी शेर पर हो जाए एक और दौर पंचरत्नी का।
1: पर गुरुजी, अंधेर नगरी गजब का नाटक है।
0: हाँ बेटा, तब का लिखा नाटक आज तक जवान है। अरे कुछ नहीं बदला हालात में, और कोई नाटक हिंदी में दिखा दो ऐसा अगर कोई है तो।
2: हमको तो उनकी भाषा बहुत भाती है।
0: हाँ बेटा, एक बात तुम लोगों को बतावे, हम हास्य व्यंग तो उनके खून में था, हंसते हंसते चोट कर जाते थे वे।
1: हाँ गुरुजी, हंसते हंसते चोट कर जाते थे। हाँ, तो हो जाए इसी बात पे।
0: हाँ बेटा, तो उठा एक तारा, जय भोलेनाथ, बम।

सभी

0: गजब की चोट करते थे भैया।
1: अरे वे कविता लिखे, नाटक लिखेगी, पत्रिका निकाले, सब में चुटीलापन बना रहता था।
2: उन्होंने मैगजीन भी निकाली थी।
1: हाँ बच्चा, हरीशचंद मैगजीन नाम की मासिक मैगजीन निकाली थी। गजब के पत्रकार थे। आज की पत्रकारिता पर भी उनकी छाप हर कहीं है।
0: वाकई कमाल की चीज थे।
1: हाँ बेटा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों पर नाटक लिखे, विधवा विवाह पर भी लिखा और बेमेल विवाह पर भी लिखा, नई रोशनी के बाबुओं की मिट्टी पलीत की और पोंगा पंडितों की भी भद उड़ाई।
2: गरीबों के लिए सुना है उनके मन में खूब दया थी।
0: सुना है दोनों हाथों से लुटाते थे, लूट सके तो लूट
1: और नहीं तो क्या बेटा। उनके दर से कोई खाली हाथ ना गया। पैसे को लेकर उनका एक मजेदार किस्सा है।
3: अरे सेवक राम
4: जी। मालिक।
3: हाँ, ये पकड़ो नोट और जरा सूंघ कर हमें बताओ कि इनमें से सुगंध आती है या दुर्गंध।
4: मालिक, पैसे से भी कभी दुर्गंध आई है क्या?
3: हाँ, हमें आती है दुर्गंध, हमें पैसे से दुर्गंध आती है।
4: आपका तो सगरा काफी अनोखा है।
3: सही कही। अच्छा देखो
4: जी,
3: ई पकड़ा हमने ये नोट आग पर। आई कि नहीं दुर्गंध?
4: अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बबुआ? ये असली का नोट है, ये नकली चूरन वाला नोट नहीं है।
3: हाँ, अब तुम देखो लक्ष्मी में कितनी दुर्गंध है।
4: देख ली, अब और नोट ना जलाइएगा आप।
3: इसी लक्ष्मी ने हमारे परिवार को बर्बाद किया है।
4: नोट के अंदर के चमड़े की झिल्ली जलने से बहुत तेज बदबू उठ रही है, अब और नोट मत जलाइएगा आप।
3: अरे कुछ नहीं धरा इस लक्ष्मी और माया में, असली धन तो प्रेम है आपस में।
4: सच्ची कही बात आपने मालिक, बिल्कुल सच्ची कही।
3: हाँ, लक्ष्मी बाटो घटती है और प्रेम बाटो बढ़ता है।
4: सच्ची कही।
1: तो देखा बच्चों, लक्ष्मी बाटो तो घटती है और प्रेम बाटो तो बढ़ता है।
0: सही कहा गुरुजी, बिल्कुल सही।
1: हाँ तो बच्चा नारायण दास
0: जी, गुरु
1: ऐसे आदमी रोज रोज पैदा नहीं होते।
0: 16 आने सच्ची बात।
1: हाँ बेटा, सबके सुख दुख में शरीक। अरे सड़क किनारे ठुठुरते भिकमंगे को अपनी शाल उड़ाकर आगे बढ़ जाएं, ऐसे मलंग थे वे।
2: ये सच है ना गुरुजी कि उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी पत्रिका निकाली थी?
1: हाँ बेटा सच है ये। तब एक पत्रिका निकालना मुश्किल था, पर उन्होंने 2-3 निकाली और 2-3 और निकालने का विचार रखते थे वे।
0: पता नहीं गुरुजी उस जमाने में कैसे कर गए ये सब।
1: अरे धुन का पक्का हो अगर आदमी तो क्या नहीं कर सकता, वरना पत्रिका निकालना और बेचना बहुत टेढ़ी खीर था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
5: अरे बड़ी कठिनाई से भैया एक ग्राहक बना पाया हूँ।
6: गनीमत है, हम तो एक भी ना बना पाए।
5: लगे रहिए, कोई ना कोई मिल ही जाएगा।
6: अरे कल एक मिला था, बोला अखबार पढ़कर सुना जाया कीजिए। बताओ ये कोई बात है?
5: अनपढ़ों के बीच पढ़े लिखे हैं ही कितने जिन्हें अखबार बेचें।
6: अरे पढ़ा लिखा पर होने से क्या होता है, खरीदने को पैसा भी तो हो।
5: अव्वल तो पैसा नहीं और जो पैसा हो तो इच्छा नहीं।
3: बहुत देर से तुम लोगों की बात सुन रहा हूँ, बताओ इसका हल क्या है? क्या बंद कर दे छपाई?
5: सवाल ही नहीं उठता।
6: सवाल ही नहीं उठता।
3: मैं जानता था तुम्हारा यही जवाब होगा, इसीलिए लगे रहो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
0: गुरुजी अब तो 2-4 झलकी हो जाए अंधेर नगरी की, मन बड़ा कुलबुला रहा है।
2: हाँ हाँ गुरुजी, नारायण दास ठीक कहता है।
1: तो ठीक है बच्चा, ले भाई अब शुरू होता है नाटक। तो बच्चा नारायण दास, ये नगर तो बहुत सुंदर है, देख कुछ बिच्छा इच्छा मिले तो ठाकुर जी का भोग लगे।
0: गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है जो है सो है? पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो।
1: बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और बच्चा नारायण दास पूरब की ओर जा, ठीक है
7: जी गुरुजी।
1: हाँ तो देख, कुछ सीधा सामग्री मिले तो शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो।
2: गुरुजी मैं बहुत सी बिच्छा लाता हूँ, यहाँ लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए।
1: बच्चा बहुत लोभ मत करना है, देखना
8: लोभ पाप का मूल है,
9: लोभ पाप का मूल है,
8: लोभ मिटावत मान,
9: लोभ मिटावत मान।

0: बच्चा ये नगरी कैसी है?
1: बाबा जी इस नगरी की चाल यही है, यहाँ की सब चीज टके शेर बिकती है।
0: क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है?
1: अंधेर नगरी।
0: और राजा का नाम क्या है?
1: चौपट राजा।
0: बाबा बाबा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। अंधेर

0: अब बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज लक्का शेर मिलती है, तो मैंने उसका विश्वास नहीं किया था। ये कौन सी नगरी है और उसका कौन सा राजा है जहाँ टका शेर भाजी और टका शेर खाजा मिलता है?
1: अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा।
0: तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टका शेर भाजी और टका शेर खाजा हो। सेत सेत

0: हाँ तो बच्चा यहाँ एक क्षण भी नहीं रहना अब।
1: मैं तो यही रहूंगा।
0: हैं? देख बच्चा पीछे पछताएगा फिर। हाँ
2: मजा आ गया गुरुजी।
0: अरे ऐसे मूर्ख राजा के राज में कब कौन सी आफत आन पड़े कौन जाने भाई।
1: बिना गीत के कहाँ मजा आएगा झलकी का, गुरुजी हो जाएगी।
0: हाँ बच्चा, तो बच्चा उठा एक तारा, हो जाओ शुरू।
2: हो जाओ भैया।

0: सिर चढ़ चढ़ी बोले,
1: खली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ी बोले,
0: साचे मारे मारे डोले,
1: साचे मारे मारे डोले,
0: छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ी बोले,
1: छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ी बोले।
2: तो भाई लोगों, ये हुए चंद टुकड़े नाटक के। नाटक ठहरा हरिश्चंद का तो थोड़ा लंबा, आपको बस झलकी भर दिखाई है।
3: तो गुरुजी का आज्ञा है, समेटे अपना डेरा डंगल।
2: जे कहीं ना तुमने बात।
4: निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
5: जीरो वन जीरो टू बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: It says, if we could look into each other's hearts and understand the unique challenges each of us faces, if we could look into each other's hearts and understand the unique challenges each of us faces, I think we would treat each other much more gently, with more love, patience, tolerance, and care. अभी ऊपर की सबसे पहला तीसरा वर्ड है could. If we could look into each other's hearts.
1: Which means if we could ever understand the journey of that soul. It's simple.
0: हाँ,
1: एक सिंपल चीज देखते हैं. सपोज मैं यहाँ से चल के जा रही हूँ और मैं लिंप कर रही हूँ, ठीक है, तो वो लिंपिंग टेढ़ा चलना अकॉर्डिंग टू यू विल नॉट बी द डेफिनेशन ऑफ राइट वॉक, राइट, जो हम कहते हैं ना हमारे अनुसार वो सही नहीं कर रहे, यही तो हमारी डिस्टर्बेंस का मेन कारण है, तो आप कहेंगे ये बिल्कुल सही चलने का तरीका नहीं है. And which is according to the normal definition of right, क्योंकि हम बार बार जब justify भी करते हैं ना कि normal भी तो ऐसे नहीं चलता ना कोई भी, तो ऐसे कैसे चल सकते हैं, तो ये wrong है, ये गलत है, इसको चलना नहीं आता, जान पूछ के तो नहीं ऐसे चल रहे, मुझे तंग करने के लिए तो नहीं ऐसे चल रहे,
0: distract attention करने के लिए तो नहीं कर रहे,
1: attract करने के लिए तो ऐसे नहीं चल रहे,
0: victim अपने आप को पिचारी बताने के लिए,
1: पिटी के लिए तो ऐसे नहीं चल रहे, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए तो ऐसे नहीं चल रहे,
0: टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स के लिए,
1: ओ बाबा टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स तो नहीं ऐसे, सी जस्ट सी, एक सिर्फ थोड़ा सा टेढ़ा चलने से कितनी सारी थिंकिंग हो रही है अंदर. नाउ If you could actually know the reason why I'm walking like that. जब तक आपको reason पता नहीं है तो कितनी negative thinking, कितनी disturbed thinking, कितना मेरे प्रति गलत सोचना कि जान पूछ कर रहे हैं, attention seeking के लिए कर रहे हैं, सिर्फ एक अलग style create करने के लिए कर रहे हैं, कितनी सारी thoughts, only why? Because you don't know the actual reason. This is the meaning of that. It's such a beautiful line. कि if we could see into the heart of the other person, कि वो ऐसे जो हैं, वो क्यों हैं? अब जैसे अगर आपको पता चले कि चोट लगी है, पैर मुड़ चुका है, इसलिए ऐसे चल रहे हैं, तो ये सारी thoughts फिर सारी thoughts खत्म हो जाएंगी.
0: नहीं, अपने आप को भी बुरा लगेगा
1: कि हमने ऐसा क्यों सोचा
0: इसके बारे में.
1: वेरी ट्रू.
0: और वाकई जाके देखो तो बेचारा लंगड़ा है, दर्द में है, और मैं इतनी बातें कर रहा हूँ कि वो अटेंशन सीकर रहा है, विक्टिम बता रहा है, हम क्या क्या कर रहा है, मतलब.
1: और फिर जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली तो लिंपिंग इसलिए है कि चोट लगी है, पैर मुड़ चुका है, तो
0: पैरालिसिस हुआ होगा.
1: अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे?
0: अब हम बोले अपने आप को भी बुरा लगेगा,
1: पहले गिल्ट फील होगा कि हमने गलत सोचा, और
0: कम्पैशनेट हो जाएंगे ना, कि
1: कम्पैशनेट भी हो जाएंगे कि अच्छा इस वजह से ऐसे चल रहे हैं, और कुछ
0: और क्या, अगर कहीं हम उस तरफ जा रहे हैं तो हम कहीं छोड़ देंगे, बोल के आपको हम लिफ्ट दे देते हैं.
1: परफेक्ट. अब आप हेल्प करेंगे.
0: हाँ.
1: सी कहाँ थे और कहाँ आ गए जस्ट विद द नॉलेज कि एक्चुअली वो ऐसे क्यों चल रहे हैं. यही तो वो लाइन है कि इफ वी कुड लुक इन टू द हार्ट ऑफ द अदर पर्सन एंड नो द जर्नी ऑफ वॉट दे आर गॉन थ्रू, वी वुड बिकम मोर टॉलरेंट, मोर काइंड, मोर जेनरस,
0: एंड वी विल बी मोर, विल टेक मोर केयर.
1: वही आपने कर दिया कि अगर नहीं पता था क्यों टेढ़ा चल रहे हैं तो इतनी नेगेटिव थिंकिंग, डिस्टर्ब थॉट्स, एंड व्यक्ति ही गलत है. फिर पता चल गया तो अपनी थिंकिंग गलत लगी, दूसरे के प्रति कंपैशन हुआ, और तीसरा उनको हेल्प करना भी चाहा.
0: एक दिन एक स्कूटर पे आदमी जा रहा था, तो एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा था, तो स्कूटर वाले ब्रेक मार के उसको गाली दी और पूछा कि अंधा है क्या. वो टर्न करके बोला, हाँ बाबा मैं अंधा हूँ. कितना उसको लगा होगा, बोले देखो एक्चुअली अंधा था वो.
1: हर आत्मा जो चल रही है, जिसके लिए हमने कहा कि वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं, वो हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो हमें जान पूछ के तंग करने की कोशिश कर रहे हैं.

0: रहे हैं, वो हमें हर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो तो खुद ही लंगड़ा रहे हैं, वो आपके साथ माइंड गेम्स
1: को कंट्रोल करने की कोशिश करे वो लंगड़ा रहे।
0: जो किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करे वो क्यों किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? लेट्स थिंक नाउ, वी रिफ्लेक्ट, यू नो, हमारे पास सारे आंसर्स हैं। अगर मैं आपको कंट्रोल करने की कोशिश करूं, आप मेरा कहना माने, आप मेरे कहे अनुसार चले, मैं जो कहूं वो सही है, आप वैसा करें, इट्स अ सेंस ऑफ
1: मैं वो कहूं,
0: मैं जो कहूं वैसा आप चले, क्योंकि मैं जो कहती हूं वही सही है, आपको वैसा ही चलना चाहिए, उसमें आपका ही फायदा है, दिस इज अ सेंस ऑफ
1: कि आई नो बेटर देन यू
0: एंड इट्स अ सेंस ऑफ
1: सुपीरियर फीलिंग
0: एंड इट्स अ सेंस ऑफ
1: कंट्रोलिंग अदर्स।
0: इट्स अ सेंस कि जब आप मेरे अनुसार चलेंगे तब आई एम पावरफुल, आई फील पावरफुल ना, लोग मेरा कहना मानते हैं। सी, हर आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी पावर है, शक्ति है। जब हम शक्तिशाली महसूस करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट? ईच वन ऑफ अस वॉन्ट्स टू बी पावरफुल। जैसे प्यार हमारा ओरिजिनल क्वालिटी है तो हमें अच्छा लगता है जब हमें प्यार अनुभव हो, लेकिन आज अपनी ओरिजिनल क्वालिटी प्यार नहीं अनुभव हो रही थी तो कब अच्छा लगता था? जब कमी किसी और से प्यार मिले, सम्मान रिस्पेक्ट हमारी ओरिजिनल क्वालिटी थी, नई अनुभव हो रही थी, तब अच्छा लगता था जब कोई और हमें रिस्पेक्ट दे, और अगर किसी और ने रिस्पेक्ट नहीं दी तो हमें रिस्पेक्ट की कमी महसूस होती थी। दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। पावर हमारी ओरिजिनल क्वालिटी थी। पावर एक्चुअली तब अनुभव होगी जब हम अपने ऊपर कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन वो नहीं हो रहा था तो हमें पावरफुल कब फील होता था? जब दूसरे लोग हमारे कंट्रोल में चलते हैं। एवरी क्वालिटी ऑफ द सोल, आत्मा को वो सातों क्वालिटीज अनुभव करनी ही करनी है, उसको चाहिए वो। सिर्फ फर्क ये हो रहा है, जब अपने अंदर से नहीं महसूस हो रही तो वो उसको बाहर से महसूस करने की कोशिश करती है। तो आत्मा जब खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी, अपने मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म इंद्रियां कंट्रोल में नहीं, तो द सेंस ऑफ पावर केम फ्रॉम कंट्रोलिंग अदर पीपल। एंड इफ यू सी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर ऑन दिस जर्नी ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल अदर पीपल। वो हम पोजीशन से कंट्रोल करने की कोशिश करें, रिश्ते के नाते कंट्रोल करने की कोशिश करें, हम बड़े हैं एज में इसलिए कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन जब लोग मेरे कंट्रोल में हैं तब आई एम पावरफुल, और अगर लोग मेरे कंट्रोल में नहीं तो आई फील अब तो मेरे कोई कंट्रोल में ही नहीं है, वेरी पावरलेस। एंड जब लोग मेरे कंट्रोल से बाहर जाना शुरू करते हैं, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कोई हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल मीन्स को किसी न किसी तरह वो ट्राई कर रहे हैं, मैनिपुलेट कह लो उसको। मैनिपुलेट करना भी मतलब क्या करना, कि वो आत्मा कुछ ऐसा ऐसा करेगी जिससे आपकी मन की स्थिति उसके अनुसार चले। मैनिपुलेट कर रहे हैं वो आपको, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी अपने मन की स्थिति उसके अनुसार नहीं चलती है। हर आत्मा की, ये कोटेशन इतनी ब्यूटीफुल है, हर आत्मा की जीवन में हमें नहीं पता क्या क्या हुआ, उसके बचपन में उसके साथ क्या हुआ हमें नहीं पता, शायद उसको रिजेक्शन मिला हो पेरेंट्स से, किसी को बहुत क्रिटिसिज्म मिला हो पेरेंट्स से, किसी को बहुत ही कंट्रोलिंग पेरेंट्स मिले हो जो बहुत डोमिनेट करते हैं उसके ऊपर।
1: जरूरी थोड़ी पेरेंट्स ही ऐसे हो, तुम खुद ही पैदा हुए ऐसे, दैट आई वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड।
0: चलो, अगर
1: जन्म से आप लेके आए होंगे
0: संस्कार भी लेकर आए हो, संस्कार भी लेकर क्यों आए हो, कभी ना कभी कुछ अनुभव हुआ होगा ना।
1: मतलब आपका ये है कि कोई कंट्रोल करे मुझे तो मैं आगे जाके
0: कंट्रोल करे, एक्सप्लोइट करे, अब्यूज करे, उस क्षण मुझे ऐसा फील हुआ होगा कि आई एम बीइंग ओवरपावर्ड बाय अदर पीपल, आई एम वेरी वीक, ये मेरे अंदर प्रोग्रामिंग में फिट हो गया। जब मेरी प्रोग्रामिंग में फिट हुआ, आई एम वेरी वीक, अब मुझे मैं पावरफुल हूं ये मैं कैसे प्रूव करूं अपने आप को? बाय कंट्रोलिंग समवन एल्स नो, उसके अलावा हाउ विल आई बी एबल टू प्रूव टू माई सेल्फ कि नो आई एम पावरफुल?
1: व्हाई कांट आई से यस आई एम वीक एंड आई कांट फाइट दिस?
0: आई कांट फाइट व्हाट?
1: व्हाटएवर इट इज इन लाइफ।
0: वीकनेस किसी आत्मा का संस्कार नहीं है. हर सी वी हैव
1: आपने कहा ना कहीं जब मुझे कोई कंट्रोल कर गया होगा पहले एक्सप्लॉइट कर गया होगा. फाइन आई वॉज एक्सप्लॉइटेड
0: तो वो दर्द तो हो गया ना यहाँ पे प्रोग्रामिंग में.
1: तो उस वजह से दूसरे के साथ करने की क्या जरूरत है?
0: दूसरे के साथ हम इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं. सी दैट इज ओनली वॉट इज ट्राइंग टू टेल अस कि अगर हमें समझ में आ जाए कि यात्रा क्या थी, आत्मा के साथ क्या क्या हुआ था, तो फिर उसका प्रेजेंट बिहेवियर हमें अजीब नहीं. कोई जान पूछ के आके नहीं कंट्रोल करता, हाँ ना अभी मैं इनको कंट्रोल करूंगी, ऐसा कोई नहीं कर रहा है. नोबडी इज मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग डेलिबरेटली. जो वो कर रहे हैं उनको वही करने का तरीका सही लगता है. उनको ये भी नहीं पता चलता कि वो जान पूछ के कुछ कर रहे हैं. उनके हिसाब से जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं. बट हमें अब अपने आप को कैसे उनसे प्रोटेक्ट करना है? हमें सी पावर टू टॉलरेट मीन्स वॉट, सहन करने की शक्ति हमारे अंदर तब आएगी जब हम सामने वाली आत्मा के बिहेवियर को सिर्फ ना देख, बिहेवियर के पीछे की इंटेंशन और उसके पीछे के दर्द को समझने की कोशिश करें.
1: इंटेंशन तो बैड ही है लेकिन दर्द को देखेंगे तो फिर टॉलरेट करने का सवाल ही नहीं पैदा. तो फिर तो समझ गए
0: इंटेंशन भी एक्चुअली बैड नहीं है. इंटेंशन बैड नहीं है. बहुत बहुत कम लोग होंगे जो इंटेंशनली गलत कर रहे होते हैं. दैट्स अ वेरी स्मॉल नंबर. मोस्ट ऑफ दी अदर थिंग्स जो हमें गलत दिखाई दे रहे हैं,
1: मोस्ट ऑफ दी अदर पीपल आर मजबूर
0: अपने संस्कार के परवश,
1: संस्कार की वजह से वो मजबूर हैं कि दे कैन नॉट डू अदरवाइज.
0: यस, वो अपने वो ऐसे प्लान करके इंटेंशनली नहीं कंट्रोल कर रहे.
1: मुझे एकदम गुस्सा आ जाता है
0: yes.
1: तो मैं आपको हर्ट करने के लिए, रुलाने के लिए, तताने के लिए नहीं करता. वो मेरे अंदर का संस्कार है.
0: भाई
1: तो ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है भाई साहब, साफ क्यों नहीं बोलता एकदम, फिर मैं चिढ़ जाता हूँ. बट मेरा उसके अंदर इंटेंशन है क्योंकि कि आएगा तो वो ऐसा बोलेगा तो मैं उसको रुलाऊंगा और आप जाके वहां रोने लगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है.
0: एग्जैक्टली, दिस इज इट.
1: अच्छा टेल मी स्ट्रेट ना, व्हाई झूठ क्यों बोलते हो?
0: बस लेकिन अगर मैं अब रोने लगू और उदास हो जाऊं, मतलब ऐसे बोल दिया मुझे गुस्सा कर दिया,
1: आप सोचेंगे कि मैं घर से सोच के आया था कि आज आपको रुलाऊंगा, ऐसा तो था नहीं.
0: ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा. सिर्फ ये है कि जैसे गुस्सा एक बड़ी विजिबल एनर्जी है ना, गुस्सा ना दिख जाता है कि कोई गुस्सा कर रहा है. लेकिन उसको भी हम में से मेजोरिटी लोग काफी पर्सनली लेते हैं. मुझे गुस्सा कर दिया, मेरे साथ ऐसे बात कर दी, अभी आपने क्या कहा, मैं जान पूछ के आपके साथ ऐसे बात नहीं की, मुझे
1: ना प्लान किया ना सोच
0: किया. प्लान तो कोई नहीं कर दिया.
1: जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कि इसका उसकी प्लानिंग है, इंटेंशन है, और क्या क्या वो वर्ड पहले मैंने यूज किया था भूल गया.
0: हर्ट करने के लिए, मैनिपुलेशन.
1: तो मैनिपुलेट करने के लिए तो प्लान करना पड़ता है. तो यहाँ कहाँ, ये तो एक दिस पर ऑफ द मोमेंट आ गया,
0: संस्कार के परवश,
1: हीट ऑफ द मोमेंट खट
0: निकला. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हीट ऑफ द मोमेंट निकला तो वो क्या निकला, वो आपका संस्कार निकला ना. अब मैं अपने नजरिए से देखू कि अगर आपने आए, मैंने कुछ किया गलत, जैसे आपने कहा चलो झूठ बोला, मैंने अगर झूठ बोला या झूठ नहीं बोला, आपको लगा झूठ बोला तो और भी तकलीफ होती है कि मैंने तो झूठ बोला ही नहीं था एक्चुअली, आपको लगा मैंने झूठ बोला, हीट ऑफ द मोमेंट आपने कहा, रिएक्ट कर दिया. सपोज अब मैं ये थिंकिंग करूं, जब आए मुझे गुस्सा किया, मैंने सच बोला था फिर भी गुस्सा किया, जान पूछ कर मुझे तंग करते हैं, चाहते हैं कि मेरा काम खराब हो जाए, इनको मालूम है इनके गुस्सा करने से आगे मेरे से काम होने वाला नहीं है, ये मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं मेरा काम गलत करने के लिए. इज ऑल दिस राइट?
1: मेरा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ.
0: बट इज ऑल दिस ट्रू?
1: नहीं,
0: इज नॉट ट्रू. ना
1: इज नॉट ट्रू. बट फॉर आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज किसी को ये मालूम करना है कि मैं अपने बेटे के लिए कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं. तो अगर कोई मुझसे आके डायरेक्ट पूछे कि भाई साहब फिल्म इंडस्ट्री में ना कभी ऊपर नीचे होता रहता है, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट सी कर लो जहां से एक मंथली इनकम आए, तो अगर वो नहीं पूछ के बोले देखो मैं तो अपने लिए अपना काफी इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं और ऐसा ऐसा है, आपको भी करना चाहिए, तो नाउ दे वांट टू नो कि सडनली मैं बोलू हाँ हाँ मैंने तो किया है. अब इतना सोच के, इतना घुमा के कोई बात करे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग.
0: ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, ऑनेस्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये भी तो एक विशेषता है ना।
1: अब मैं वो चाहता हूँ क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ।
0: हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अंदर विशेषता है वो सबके अंदर होनी चाहिए।
1: मुझे क्या मालूम है विशेषता, मैं समझ रही।
0: अच्छा एक मिनट, अच्छा ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपकी विशेषता है, मेरे अंदर नहीं है सपोज, ठीक है, लेकिन मैं इतना गुस्सा नहीं करती, आप
1: गुस्से की
0: करते
1: बात
0: हैं।
1: नहीं है।
0: हर एक के अंदर अलग अलग
1: आपको
0: होगा।
1: कुछ मेरे से जानकारी करनी है तो इतना घुमा के बोझ तो मेरे पिताजी ने तो किया
0: डायरेक्ट
1: था, मेरे
0: ऑनेस्ट
1: माता जी ने।
0: कम्युनिकेशन मेरी क्वालिटी नहीं है।
1: ओके
0: मैं पीसफुल हूँ, आप क्यों नहीं पीसफुल हो जाते एक सेकंड में? आप इतना गुस्सा क्यों करते
1: अभी
0: हैं?
1: उस दिन क्या हुआ, हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो यहाँ पर एक टीम आई थी, कोई अपनी पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, जो भी उनका मीटिंग थी, जो भी उसमें फंक्शन था, गाना वाना जो भी था, भागते भागते आ रहे हैं, हम आपको देखते हैं। मैंने बोला कैमरा इज ऑन, मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब रुक जाओ। तो आपने क्या किया, बोले प्लीज लेट देम कम, आओ बैठो। हाँ जी हम आपका प्रोग्राम देखते हैं मैम, और बड़ा अच्छा लगता है सुबह अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी से, हमने बहुत सीखा। आपने उनको 1-1.5 मिनट दिया, वो भी खुश, हम भी खुश, सब चले गए। उस दिन अगर मैं आप नहीं होते, मैं उनको डांट देता था, आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो, आप अपने आपके फंक्शन में मैं आके बीच में बोलूं कि एक्सक्यूज मी कैसे लगता है। सपोजिंग आप स्पीच दे रहे हो माइक पे और आप बोल रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट बिकता है, मैं बोले हेलो हेलो हेलो आई लाइक यू, आई सेड दिस इज माई बिजनेस लाइक दैट इज योर्स। तो मैं दूसरे एंगल से देखता। आपने क्या किया, उसको 1.5 मिनट में निकाल दिया। अब वो मेरे में विशेषता नहीं है ना।
0: कोई बात नहीं ना, यही तो हमारी जर्नी है कि हम दो लोगों के अंदर अलग अलग विशेषताएं हैं, इसी तरह हम दो लोगों के अंदर कमजोरियां भी अलग अलग होनी है, कमजोरियां भी अलग अलग होनी है ना। तो अगर डायरेक्ट सीधी बात करना आपकी विशेषता है, हो सकता है वो मेरी विशेषता नहीं होगी, तो मुझे अजीब लगेगा सीधा सीधा पूछना आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, मैं नहीं पूछ सकती, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है ऐसे सीधी बात
1: लोग मुझे
0: करने
1: बोलते
0: का।
1: हुए बड़े ब्लंट हो जी।
0: हाँ तो फिर अब अच्छा
1: मैं तो
0: अभी ब्लंट, तो अभी आप देखो उस विशेषता को भी
1: हाँ,
0: जिसके अंदर वो विशेषता नहीं होगी उसको
1: हाँ,
0: वो विशेषता भी अजीब लगेगी, ऐसे सीधा सीधा बोल दे।
1: हो तुसी कमाल कर दो, ब्लंट हो जी बड़े,
0: सीधा सीधा
1: ऐसे कोई बात करते हैं कि मुंह पे ही पूछ लिया आपने तो।
0: बस दिस इज व्हाट डिफरेंसेस, वी आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट। अब क्योंकि मैं इतना डायरेक्टली नहीं पूछ सकती कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया, मेरे से नहीं पूछा जाता ऐसे सीधा सीधा, तो मैं पर मेरे को जानना भी है, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करना चाहिए, आपने किया क्या, ये
1: आप क्यों नहीं कर देते,
0: क्यों नहीं, मतलब दो चार ऐसे ऐसे बात करके ताकि मुझे वो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर वो विशेषता नहीं है, मैं इसको जान पूछ के नहीं कर रही।
1: बट दीज आर द थिंग्स ना, मेरे बारे में दिमाग में चलते, ये आया या आई मुझसे पूछने के लिए कि मेरी बेटी के लिए मैंने कुछ किया नहीं किया, क्यों इसको इतनी इंक्विजिटिवनेस है, क्यों जानकारी
0: जानना
1: करना
0: चाहती
1: है, और
0: हूँ
1: जानना भी तो सीधा क्यों नहीं पूछा,
0: सीधा नहीं बोलना
1: क्यों
0: आता।
1: मेरे ऊपर बड़ा एहसान करके कि आई विल शो यू हाउ टू इन्वेस्ट दिस दैट दैट करके इतना अच्छा। अगर मैं बोल दूं कि ये किया तो आई विल शो यू, आप तो शो नहीं करे, आप तो सुन के अपना मतलब सीधा किया भाग गए।
0: मैं उसी के लिए आई थी ना, सीधा पूछना मुझे नहीं आता, मैंने दो तीन तरह से बात करके पूछ लिया, काम हो गया मेरा, मैं जान पूछ के नहीं
1: दिस
0: किया।
1: इज नॉट मैनिपुलेशन,
0: नो दिस इज नॉट मैनिपुलेशन,
1: दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्सन,
0: दिस इज अ संस्कार ऑफ दैट पर्सन कि वो जानना चाहते हैं लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, तो वो कुछ ऐसा ऐसा करेंगे। और आप देखो नॉर्मली भी कुछ लोगों के अंदर संस्कार होता है, सपोज उन्हें कहीं जाने वाले हैं वो, ठीक है, जैसे बहुत बार लोग मिलते हैं उनका प्रोग्राम फिक्स्ड है, वो कहीं जाने वाले हैं, उनकी डेट फिक्स्ड है, उनकी टिकट बुक्ड है, उनका सब कुछ हो गया है, उनसे पूछो आप जाने वाले हैं वहां पे, हाँ सोच रहे हैं, बना रहे हैं प्रोग्राम, चले जाएंगे थोड़े दिन में, वो नहीं बताएंगे कि डेट क्या है, कब जा रहे हैं। अब इनिशियली
1: शायद भी
0: शायद हाँ बन रहा है प्रोग्राम, देखते हैं शायद हो जाएगा। फॉर मी इनिशियली आई वुड फाइंड दिस स्ट्रेंज, ऐसे मतलब जब सब कुछ फिक्स्ड है, पता है, तो बताने में क्या जाता है, लेकिन देन व्हेन यू सी फ्रॉम द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, नहीं है कॉन्फिडेंस अपनी इन्फॉर्मेशन रिवील करने का, या कोई वहम है कि नहीं बताना चाहिए, एक संस्कार है कि मुझे अपने बारे में सब नहीं बताना है, व्हाट एवर।
1: बिना मतलब के भी लोग झूठ बोलते हैं, बिना मतलब, जैसे एक वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स हु केम टू माई हाउस, बाहर से आया तो मेरा फोन बजा, तो उसको मैंने बोला तुम्हारे लिए फोन है, भाई कब आए, बोले कल ही आए, आए आगे 10 दिन हुए, आदत है। और उसको दूसरे को फोन किया कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैंने बोला तुम निकले नहीं, निकले नहीं आज से आधे घंटे, कोई बात नहीं।
0: अच्छा, अभी तो आपने एक लाइन यूज़ की, आदत है, आदत है ना, ठीक है। अब इस लाइन को हमें
1: झूठा है नहीं बोल रहा, उसको इस तरह की झूठी बात करने की
0: आदत है, वो ठीक है, आदत है बोलना ठीक है, रादर देन थिंकिंग जान पूछ के मुझे झूठ बोला, डेलिबरेटली मुझसे छुपाया, मुझे तंग करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दी।
1: तो फिर ये मेरे बारे में भी बोल सकते हैं, फिर मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ और सोचता ये उल्टा है।
0: yes.
1: तो फिर उल्टी सोच का अपने आप को भी लेबल देना पड़ेगा।
0: दिस इज द डिफरेंस। अभी पहले आपने थोड़ी देर
1: वो अगला बंदा बोलेगा कि मेरे में वीकनेस है कि मैं सच नहीं बोल सकता,
0: वो ये भी नहीं, वो ये नहीं बोलेगा,
1: सपोज वो बोले वीकनेस नहीं, वो बोले मेरा तरीका ही नहीं है, मुझे वह मैं नहीं बताता मैं ट्रैवल का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है वो है वो, लेकिन मेरे में तो वो बोल सकता ना कि आप मुझे क्यों
0: आप लेबल लगा रहे हैं, मेरे बारे में क्यों गलत सोच रहे हैं। अब जिसके अंदर ये वहम है ना कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, उसके पीछे भी रीजन है उस आत्मा के पास, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में या इस जन्म में उस आत्मा ने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन किसी को दी होगी और उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। यस दैट इज
1: या किसी नहीं, मैं किसी और चीज में तो या कुंडली वाले ने बोला होगा
0: ये
1: भी प्लीज कभी भी ट्रैवल कर दो तो किसी को बताना मत।
0: दैट थॉट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जर्नी अगर आप उसके झांक कर देख लो कि उसके साथ क्या हुआ है जीवन के अंदर, क्यों वो जैसा है, ऐसा वो क्यों है, then you will become more tolerant, kind
1: and caring. If we could look into each other's hearts and understand the unique challenges each of us faces, I think we would treat each other much more gently with more love, patience, tolerance.
0: Perfect hai na, bahut hi beautiful sentence hai. Aur ye ab hame sara din har ek ke sath use karna hai. Jab hame kisi ka aisa sanskar dikhta hai na, hum kehte hain ajeeb hai. पहले मैं ऐसे बोलती थी, अजीब है, कैसे अजीब तरह से बात करते हैं, अजीब व्यवहार है, सीधा सीधा नहीं बोलते हैं, अजीब है, हम सबको अजीब, गलत, रॉन्ग, बुरे ये वर्ड से लेबल कर देते हैं, बिकॉज वी कांट अंडरस्टैंड कि वो ऐसे क्यों है। ये लाइन हमें सिखाती है कि वो आत्मा भी किसी चैलेंज से गुजरी है, वो चैलेंज ने उसको दर्द दिया, उस दर्द ने ये संस्कार बनाया और ये संस्कार के थ्रू आज वो आत्मा बिहेव कर रही है। वो कुछ भी मेरे साथ जान पूछ के डेलिबरेटली मैनिपुलेट करने के लिए नहीं कर रही है।
1: नाउ आई कैनॉट टेल एनीबडी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यू और बिहेव आई मीन डील विद यू, क्योंकि फिर वो भी बेचारा मजबूर है ना।
0: वो सी वन थिंग वी हैव टू जस्ट ऑलवेज रिमेम्बर कि कोई जो हमारे साथ
1: मजबूरी इन द सेंस उसको मजबूर उसको मालूम नहीं है,
0: उसको
1: अदर पर्सन थिंक्स दिस इज राइट,
0: दिस इज राइट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें ये याद रखना होगा, वो आत्मा वो चीज हमारे साथ नहीं कर रही है, हम उसको पर्सनली लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा किया। सी जैसे अभी आपने बोला मैंने ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट गुस्सा कर दिया, राइट तो ये जो आपने कहा मैंने गुस्सा कर दिया, विच मीन्स आप जैसा बिहेव करेंगे इट विल कम आउट थ्रू द फिल्टर ऑफ योर संस्कार ना। तो मुझे ये लगता है कि मुझे क्यों गुस्सा किया, ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया, वो मेरे साथ इन्होंने ऐसा नहीं किया है, उनका वो संस्कार है, छोटा सा भी स्टिम्यूलस आएगा तो जिस आत्मा का जो संस्कार होगा और वो जिस चैलेंज की वजह से क्रिएट हुआ होगा वो आत्मा उस संस्कार के थ्रू ही ट्रिगर करके बिहेव करेगी।
1: ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा सिस्टर, एंड उसका जवाब इतना अच्छा मिला। दिस एपिसोड हैज टॉट मी अगेन समथिंग।
0: थैंक यू
1: सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। ओम शांति।
2: इफ वी लुक एट द जर्नी ऑफ एवरी सोल एंड अंडरस्टैंड द यूनिक चैलेंजेस each one faces, we would treat everyone much more gently, with love, patience, tolerance and care. Each soul is carrying sanskars created in many lives. In each life, the soul gets a new body, new parents, environment, situations faced, and conditioned responses to them. All these factors create different sanskars of the soul. Souls on the journey of many lives could have experienced pain, abuse, trauma, betrayal, rejection, failure, authority, recognition, attachment, and many other experiences. What each soul is today is a result of the vast spectrum of experiences on this long journey. Every soul wants to experience its original qualities. When we are not able to experience it within, we feel nice when we get it from outside, even if it is temporary. We feel love when others love us, feel good when others respect us, feel powerful when others obey us. Instead of radiating our qualities in our relationships, we keep seeking from others for our fulfillment. Powerful soul means a soul whose mind, intellect, sanskars, and therefore sense organs are in its own control. When a soul does not experience its true power, it tries to fulfill its sense of power by controlling others. To understand the other soul's behavior, go beyond the behavior to understand their sanskar and the pain behind that sanskar. People do not intentionally want to hurt us or manipulate us. Their behavior through their recorded sanskar is what comes naturally to them.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999 559-660.

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। आज हम देखते हैं कि आज के समय में लोगों को बोलने से पहले सोचने और समझने की क्षमता कम ही हो गई है, शब्द ही जबकि व्यक्ति की दौलत है। तो आज हम चर्चा करते हैं शब्दों की पूंजी पर। एक गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, एक की उम्र 12 साल तो दूसरे की 8 साल थी। एक दिन खेलते खेलते बड़ा लड़का गेंद उठाने कुएं के पास गया तो उसका पैर फिसल गया और कुएं में गिर गया। छोटे लड़के ने देखा कि मदद के लिए उनके आसपास कोई नहीं है, तब उसने कुएं के पास बड़ी बाल्टी रस्सी कुएं में डाल दी और बड़े लड़के से उसे पकड़ने को कहा। फिर छोटा लड़का उसे खींचने लगा। काफी देर की मेहनत के बाद अपनी भरपूर ताकत झोंक कर छोटे ने बड़े लड़के को किसी तरह बाहर निकाल दिया। दोनों ने सोचा कि गांव में जाकर यह बात सबको बताएंगे तो सब नाराज होंगे, लेकिन हुआ उल्टा। सभी ने उनकी बात को मजाक समझ लिया और 8 साल का छोटा सा लड़का 12 साल के बड़े लड़के को कुएं से खींचकर कैसे बाहर निकाल सकता है, यह तो असंभव लगता है। गांव के ही एक समझदार बुजुर्ग को बच्चे की बात पर यकीन था। सभी ने बुजुर्ग से पूछा, आपको क्यों लगता है कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं और छोटा लड़का ऐसा कर सकता है? बुजुर्ग बोले, छोटा लड़का ऐसा कर पाया क्योंकि उस समय उसके आसपास कोई यह कहने के लिए नहीं था कि बच्चे तुम यह नहीं कर सकते। यहां तक कि खुद उस लड़के ने भी अपने आप से ऐसा नहीं कहा कि इस परिस्थिति में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो देखते हैं अच्छे शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है। तो हम जैसे ऊपर देखे, अभी हम देखते हैं कि घटना का जो तात्पर्य है, यहाँ की शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्द इतना प्रेरित कर सकते हैं कि व्यक्ति असंभव को भी संभव कर दे। ये शब्द ही है जो प्रेम का बीज बो देते हैं। तो वेमेंस में हम देखते हैं कि भी बढ़ा देते हैं, यहाँ पर जहाँ अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बात आपको सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। वहां कोई एक नकारात्मक शब्द पूरी बात को ही बिगाड़ देता है। अच्छे शब्द छोटे होते हैं और बोलने में आसान भी, लेकिन इनकी जो प्रतिध्वनि लंबी होती है और कभी कभी तो अंतहीन होती है। अच्छे शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है। मनुष्य को जीवन में केवल दो शब्द ही जो है नष्ट करते हैं, अहम और वहम। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मौजूद हूँ, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है शब्दों की पूंजी। जैसा कि हम देखते हैं, महान व्यक्ति अपने शब्दों पर हमेशा कड़ी नजर रखता है। शब्दों द्वारा ही सम्मान व अपमान होता है, इसलिए सदा शब्दों को तौल कर बोलें। अक्सर सुनने में आता है, किसी ने कहा मेरी जुबान जो है वो फिसल गई, इसलिए मैं अपने बोले हुए शब्दों को वापस लेता हूँ या अपने कहे हुए शब्दों पर माफी मांगता हूँ। जिस व्यक्ति के शब्द जितने गरिमामय होंगे, उसका व्यक्तित्व भी उतना ही सम्माननीय और गरिमापूर्ण बनकर उभरेगा। महान व्यक्ति अपने शब्दों पर हमेशा कड़ी नजर रखता है, क्योंकि एक छोटा सा भी नकारात्मक या अनुपयुक्त जो शब्द होते हैं वो लोगों में घमासान करा सकता है और उसकी जो छवि है उसको दागदार कर सकता है। सकारात्मक शब्द लोगों के अंदर, लोगों में जो है उत्साह भर देते हैं, उन्हें चोटी पर पहुंचा सकते हैं। यही है शब्दों की ताकत। हर शब्द का मोल होता है। शब्द सदा कसौटी पर होते हैं। विनम्रता भरी शब्दों में वह ताकत होती है जो बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं। हर

उत्प्रेरक और प्रभावी बनाता है। हाँ, तर्क किया जा सकता है कि हम हर समय मंच पर तो नहीं होते हैं जो सही ही बोले, परंतु हर वक्त चाहे कहीं भी हो अपनी छवि की कसौटी पर जरूर होते हैं, जिसका हमारे शब्द भाषा की जो गरिमा है भाषा से सीधा संबंध है। शब्दों के बारे में कहा गया है कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द बने औषधि, एक शब्द बने घाव। शब्द संभाले बोलिए, शब्द खींचते ध्यान। शब्द मन घायल करे, शब्द बढ़ाए मान। शब्द मुख से छूट गया, शब्द न वापस आए। शब्द जो हो प्यार भरा, शब्द ही मन में समाए। शब्द में है रंग भाव का, शब्द है मान महान। शब्द जीवन रूपी में रूप है, और शब्द ही दुनिया जहान। शब्द ही कटुता रूप दे, शब्द ही बैर हटाए। शब्द जोड़ दे टूटे मन, और शब्द ही प्यार बढ़ाए। तो आपने देखा, शब्दों की अगर हम भाषा के साथ अपने शब्दों पर भी ध्यान दें तो शब्दों की महत्ता अधिक होती है। हमारे शब्द हमारी मान, हमारी मर्यादा और हमारे हर व्यक्तित्व को वो प्रस्तुत करता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और मैं ब्रेक के बाद फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है शब्दों की पूंजी। जैसा कि हम देखते हैं, शब्द जो है, शब्द भी एक तरह का भोजन है। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है ये आ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोईया कोई नहीं है। शब्द का अपना एक स्वाद है, बोलने से पहले स्वयं चख लीजिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका जीवन सुंदर बन जाता है। अच्छे शब्द मन को आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। जब हम भगवान की याद में बोलते हैं तो हमारे बोल में ईश्वरीय शक्ति भर जाती है, जिससे सुनने वाले को सुकून मिलता है और वह बदलने लगता है। शब्दों के द्वारा ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। शब्द हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। शब्दों की शक्ति अतुल्य है। अच्छे शब्दों का प्रयोग व्यक्ति का जीवन बदल देता है। जितनी ज्यादा अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे उतने ही ज्यादा आप अच्छे शब्द मन में आपके आएंगे। सही बात सही समझ के साथ केवल अच्छे शब्दों के माध्यम से ही की जा सकती है। तो हमारे पास भले ही अधिक संपत्ति ना हो, लेकिन शब्दों की पूंजी जरूर होनी चाहिए। शब्द है जो वही है शब्दों की पूंजी। और यदि किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति की मौन की धारणा अगर है, उसने मौन रखा है, तो हम देखते हैं कि तो भी उसे शब्दों का ज्ञान तो है ही, अर्थात शब्दों को जन्म देने की क्षमता तो उसमें है ही। शब्द यदि सत्य से जुड़े हैं तो व्यक्ति हल्कापन महसूस करेगा, और यदि शब्द झूठ से जुड़े हैं तो अपनी याददाश्त, जो उसकी याददाश्त शक्ति है, वो तेज रखनी होगी। अतः शब्द ही व्यक्ति की दौलत है, इसे कोई भी चुरा नहीं सकता। इसलिए अपने शब्दों को दूसरों के कल्याण अर्थ उपयोग करें। इसका प्रभाव हमारे पास खुशी के रूप में लौट कर आएगा। तो यही है शब्दों की पहचान और शब्दों की पूंजी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

जो मिला खो गया, क्या मेरे पास है दर्द ही